FM बैंड 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 अगस्त 2026। इस समय पूर्वाहन के 8:55 होने को हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आज सुबह 9:10 पर हम आपको सुनवाएंगे दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान और 9:20 से कार्यक्रम वंदना।

9:40 से हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम साजों पर धुन, जिसमें आप फिल्मी धुनों का वाद्य यंत्रों पर आनंद ले सकेंगे।

शाम के ठीक 5 बजे आप सुन सकेंगे युववाणी कार्यक्रम और ठीक 5:30 बजे से पणिहारी कार्यक्रम।

शाम 7:30 बजे आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत, और रात्रि 8:15 बजे से फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भटके हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाने की देशवासियों से अपील की। जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन सम्मेलन की शुरुआत। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता को विवाद समाधान का सशक्त माध्यम बताया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उदयपुर में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक गुरुवार को संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत की स्थापना करके लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। ये विधेयक छात्रों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता को मजबूत करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए एक वीडियो में उन्होंने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं

0: बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
1: राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध बजरी खनन करने वालों पर अब कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल जयपुर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने संबंधित जिला कलेक्टरों को, नोडल अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को अवैध खनन नेटवर्क ध्वस्त करने की जिम्मेदारी सौंपी। बैठक में AI आधारित ऑनलाइन डैशबोर्ड, ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट इमेजरी और थर्मल कैमरों के जरिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश भर में आज से खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे अभियान शुरू हो रहा है। राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार महावीर प्रसाद ने बताया कि सर्वे राज्य के सभी जिलों की तहसीलों और राजस्व गांवों में ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभियान के तहत 4,62,00,000 से ज्यादा खसरों की नियमों के अनुसार गिरदावरी की जाएगी। 2,86,00,000 कृषि योग्य खसरों को सर्वे के लिए चिन्हित किया गया है। बाकी खसरों में सरकारी भूमि, गैर कृषि भूमि, ई गिरदावरी की जाएगी। राज्य खसरा गिरदावरी मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन गिरदावरी की सुविधा दी गई है। गिरदावरी से प्राप्त आंकड़े, फसल उत्पादन के आकलन, नीति निर्माण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्राकृतिक आपदा राहत सहित विभिन्न योजनाओं के लिए आधार बनेंगे। देश भर में आज से स्तनपान सप्ताह शुरू हो रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से इस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सप्ताह का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए परिवारों, समुदायों और स्वास्थ्य प्रदाताओं के बीच स्तनपान को लेकर जागरूकता फैलाना है। नवजात शिशु के स्वस्थ विकास के लिए स्तनपान सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। इस मौके पर मंत्रालय ने स्वास्थ्य पेशेवरों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों से स्तनपान के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का आह्वान किया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि मध्यस्थता, संवाद, सहमति और विश्वास पर आधारित विवाद समाधान की प्रभावी व्यवस्था है। साथ ही मीडिएशन न्याय तक आसान और तुरंत पहुंच सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम बन रहा है। ये बात उन्होंने जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कही। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल, वाणिज्यिक और आधारभूत संरचना से जुड़े विवादों के समाधान में मध्यस्थता की भूमिका लगातार बढ़ रही है। उन्होंने ऑनलाइन मध्यस्थता में प्रशिक्षित विशेषज्ञों की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान समय में मध्यस्थता केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने कहा कि संवाद और मध्यस्थता से वर्षों पुराने विवादों का स्थायी समाधान संभव होता है।
2: संवाद और मध्यस्थता की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हार जीत से आगे बढ़कर समाधान की बात करती है। यह केवल एक कानूनी या प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि हमारे समाज की वह सांस्कृतिक शक्ति है जो सदियों से हमें आपस में जोड़े हुए है। आज हमारी अदालतों पर मुकदमों का भारी बोझ, न्याय में देरी से आम आदमी का समय, पैसा और मानसिक शांति तीनों छिन जाते हैं। ऐसे समय में मध्यस्थता एक वैकल्पिक मार्ग नहीं बल्कि समय की सबसे बड़ी मांग बन चुकी है।
1: सम्मेलन में भारत और विभिन्न कॉमनवेल्थ देशों के न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, विधि विशेषज्ञ, नीति निर्माता और मध्यस्थ भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज से दो दिन के उदयपुर और राजसमंद दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास और विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेंगे। आज उदयपुर के दूध तलाई में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ करने के साथ चंदन वन में पौधरोपण करेंगे। इसके बाद झाडोल क्षेत्र के बीड़ा गांव में 10वीं ग्राम विकास चौपाल में शामिल होकर ग्रामीणों से संवाद करेंगे। दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री उदयपुर में नारी शक्ति रैली को हरी झंडी दिखाएंगे और नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके बाद राजसमंद में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की स्थापना के 39 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े शामिल होंगे। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में राजस्थान की अरुंधति चौधरी ने महिला 70 किलोग्राम मुक्केबाजी स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में उन्होंने इंग्लैंड की रोजी रसेल को 4-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में अरुंधति ने न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन को 3-1 से पराजित किया था। आज रात भारतीय समय के अनुसार 9:30 बजे होने वाले फाइनल में उनका मुकाबला इंग्लैंड की चॉन्टिल रीड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भटके हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाने की अपील की। जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन सम्मेलन की शुरुआत। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता को विवाद समाधान का सशक्त माध्यम बताया। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज उदयपुर में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। अब आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान।

ऋषि वाल्मीकि ने श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता को अपने आश्रम में पाकर स्वयं को धन्य माना। श्री राम ने ऋषिवर से किसी ऐसे ठौर का पता बताने का निवेदन किया जहां वे लोग कुछ समय के लिए निवास कर सकें। ऋषि के उद्गार इन शब्दों में फूट पड़े, जिनके हृदय में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, शोभ ना हो, जो राग विराग, छल कपट, दंभ और माया से परे हों, हे रघुनाथ, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो पराई स्त्री को अपनी माता के समान आदर देते हों, जिन्हें पराया धन विष से भी घातक लगता है, जो दूसरों की संपत्ति देख हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति जिन्हें विशेष रूप से दुखी करती है, उनके हृदय आपके निवास के लिए उपयुक्त भवन स्वरूप हैं। इस विनय के बाद ऋषि वाल्मीकि ने चित्रकूट पर्वत को निवास के सर्वथा योग्य बताया, जहां सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थीं। ये ऐसा मनोरम स्थान है जहां तरह तरह के पशु पक्षी विचरण करते हैं, जहां अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया पतित पावनी गंगा की धारा ले आई थीं, जहां अत्रि समेत अन्य ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। हे राम, चित्रकूट को अपना निवास स्थान बनाकर उसे गौरव प्रदान कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान FM बैंड 103.7 MHz पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम वंदना।

0: कार्यक्रम वंदना जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से

5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582 240 168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

अभी आप सुन रहे थे वंदना FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 9:40 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम साजों पर धुन। आज की सुरीली महफिल की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म मेरा नाम जोकर के एक बेहद खूबसूरत गीत से। बोल हैं जाने कहाँ गए वो दिन। इस गीत की मधुर धुन को पियानो से सजाया है राजीव सिक्का ने और सैक्सोफोन पर उनका बखूबी साथ दिया है नरेंद्र टोनी ने। तो लीजिए सुनिए वाद्य यंत्रों की ये शानदार जुगलबंदी।

पियानो पर राजीव सिक्का और सैक्सोफोन पर नरेंद्र टोनी की जुगलबंदी में अगला गीत सुनिए जमीर फिल्म से। इस गीत के बोल हैं तुम भी चलो। 1975 में आई इस फिल्म के संगीतकार थे सपन चक्रवर्ती।

पियानो पर राजीव सिक्का और सेक्सोफोन पर नरेंद्र टोने की जुगलबंदी में 16वां साल फिल्म का एक गीत की इस धुन को अभी आपने सुना। अगली धुन सुनिए पिया का घर फिल्म से। गीत के बोल हैं, ये जीवन है।

कार्यक्रम साजों पर धुन के अंतर्गत पियानो वादक राजीव और सैक्सोफोन वादक नरेंद्र टोनी की जुगलबंदी में गीतों की धुनें अभी आपने सुनी। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

FM बैंड 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। दिन के 10 बजे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए गाने पुराने जमाने के।

किशोर कुमार और सपना की आवाज़ों में जांबाज फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, जिसे लिखा इंदिवर ने और संगीतबद्ध किया कल्याण जी आनंद जी ने। अगला गीत सुनिए मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है नगीना।

0: मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में नगीना फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना। गाने पुराने ज़माने के जारी रहेंगे इस अंतराल के बाद।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

बेताब फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन ने। अगला गीत सुनिए बेवफा सनम, फिल्म से सोनू निगम की आवाज़ और निखिल विजय का संगीत।

सोनू निगम की आवाज़ में बेवफा सनम फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में ना खुदा फिल्म से।

नाखुदा फिल्म के इस गीत के साथ कार्यक्रम गाने पुराने ज़माने के अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। दिन के 10:30 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए गाने नए तराने नए।

सलमान खान की आवाज़ में हीरो फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम गाने नए तराने नए जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

सिद्धार्थ महादेवन और शिल्पा राव की आवाज़ों में धूम 3 फिल्म का यह गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनिए कॉकटेल फिल्म से नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाज़ों में, जिसे लिखा इरशाद कामिल ने।

इरशाद कामिल का लिखा है गीत अभी आपने सुना कॉकटेल फिल्म से। आवाज़ें थी नीरज श्रीधर की और कविता सेठ की। अगला गीत सुनिए सुखविंदर सिंह और मीका सिंह की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है इश्कियाँ।

ए आर रहमान, जावेद अली, मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में रॉक स्टार फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम गाने नए तराने नए का आखिरी गीत सुनिए हनी सिंह की आवाज़ में, सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म से।

सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म के इस गीत के साथ कार्यक्रम गाने नए तराने नए का सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

0: मैटिनी शो प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी आवाज मौजूद है जिसने क्रिकेट कमेंट्री की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया और इनकी आवाज के हम सब दीवाने रहे हैं। हमारे बीच हैं पद्मश्री सुशील दोषी। ये है इस बातचीत का पहला भाग। आइए स्वागत करते हैं सुशील जी का।
1: धन्यवाद यूनुस और सभी श्रोताओं को एक बार फिर से नमस्कार। ये आवाज तो आप बरसों कमेंट्री में सुनते रहे होंगे और मुझे खुशी है कि एक बार फिर से आपसे मुखातिब हो रहा हूं और अच्छा लग रहा है। जीवन की कहानी की यात्रा किस तरह गुजरी इन तमाम चीजों पर बातचीत होगी, तो जिगर थाम कर बैठिए, बहुत लंबी बातचीत होगी अब।
2: क्या बात है, क्या बात है। मैं ना सर बहुत रोमांचित हूं और एक चीज और है कि आपके सामने बैठने पर थोड़ा घबराया हुआ भी हूं कि इतना विराट और लंबा अनुभव आपका रहा है। मुझे लगता है यात्रा इंदौर से शुरू करते हैं, अपने बचपन के बारे में बताइए।
1: नहीं देखिए, वैसे तो गरीब परिवार से हम थे, 15 रुपए महीने के मकान में किराए से रहते थे।
2: कौन सा मोहल्ला था वो?
1: वो इतवारिया बाजार, जिसे अब हुकमचंद मार्ग इंदौर जी कहते हैं, वहां रहते थे। और 4 भाई हम लोग और माता पिता, मैंने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी संघर्षरत थे। वहां से शुरुआत की यात्रा और टाटपट्टी वाले स्कूल में पढ़े
2: जी जी,
1: मास्टरों की रोज मार खाई और मुर्गा बने।
2: हाँ,
1: लेकिन ऐसा नहीं कि अगर दिल में इच्छा हो ना तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, और माता पिता का आशीर्वाद रहा तो फिर आप सही दिशा की तरफ प्रवृत्त भी हो सकते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपने कहा कि परिवार जो है वो थोड़ा अभावों के रास्ते पर था और जैसे स्कूलों में आपने पढ़े, सब आज के बच्चों को तो पता भी नहीं है कि मुर्गा कैसे बनाया जाता है, मास्टर जी कैसे मुर्गा बनाते हैं। ये जो बचपन था, इस बचपन में किताबें बहुत सारी थी। मैंने ये जाना है कि आप लाइब्रेरीज में ब्लेड लेके जाते थे।
1: अब क्या बताएं, देखिए उस समय पैसे तो थे नहीं
2: जी,
1: तो क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी थी, तो हम करते ये थे कि लाइब्रेरीज जाते थे और बहुत कम बड़ी पत्रिकाओं में फोटो आते थे। एक पत्रिका में कभी बड़ी मुश्किल से क्रिकेटर का किसी का फोटो, और मैं एल्बम में क्रिकेटर्स के फोटो इकट्ठे किया करता था
2: जी,
1: और पैसे थे नहीं कि पत्रिकाएं खरीद सकें। तो मैं और मेरा एक दोस्त है, विनय उसका नाम था, मेरे साथ पढ़ता था, तो हम दोनों जाते, ब्लेड ले जाते और चुपके से वो फोटो काट कर घर ले आते।
2: वाह,
1: एक दिन पकड़े गए।
2: अरे बाप,
1: पकड़े गए तो मेरे दोस्त को आप ये समझिए कि उसने 2 चपत लगाई और अब कहा कि इस तरह के काम करते हो, शर्म नहीं आती। तो हम वापस आ गए और बड़ा छोटा मुंह हो गया। लेकिन देखिए पुराने दोस्त कैसे होते हैं, उसने ये कहा कि यार घर पर मत बताना कि आज हमको चपत पड़ी है, क्योंकि घर पर बताएंगे तो ये काम जो हम कर रहे हैं ना, ये कल से नहीं कर पाएंगे
2: जी।
1: तो देखिए कई बार मैं सोचता हूं कि आज जब पद्मश्री मिल गया या जिंदगी में आप हम व्यावसायिक तौर पर इतने आगे बढ़ गए, इतना नाम कमाया, लोग इज्जत कर रहे हैं, शोहरत प्राप्त हो गई, सब कुछ है, लेकिन हम उस दोस्त को कैसे भूल सकते हैं जो कि पद्मश्री मिलने के बाद भी उसका हक भी तो कुछ है उस उपाधि पर, जिसने हमें ऐसे वक्त जबकि दुनिया हमारे साथ नहीं थी वो हमारा साथ देने को तैयार थे। तो ऐसे ऐसे दोस्त हुआ करते थे
2: जी,
1: बचपन की ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो आज भी मुझे भावुक कर देती हैं
2: जी। बहुत प्यारी बात है, इंदौर बहुत प्यारा शहर है, संस्कारों वाला शहर है, पारंपरिकता और आधुनिकता को साथ लेके चलता है। जिन दिनों में आप पढ़ रहे थे, क्रिकेट मैच के बारे में जानने का जरिया सिर्फ अखबार थे, कमेंट्री अंग्रेजी में सुना करते थे?
1: बिल्कुल, और मैं आपको बताता हूं कि जैसे आप लोग बाथरूम में जाते

0: और गाने गुनगुनाते हैं ना,
1: जी
0: मैं बाथरूम में जाता था तो कमेंट्री गुनगुनाना था।
1: ओ
0: मतलब आप समझिए कि लोग, अब अंग्रेजी में कमेंट्री आती थी, हिंदी में तो आती नहीं थी। FPS सिस्टम का खेल, यानी कि फुट पाउंड सेकंड,
1: बिल्कुल
0: 22 यार्ड से जो खेल शुरू हुआ, लोग कहते थे हिंदी का इसमें क्या काम, मतलब तो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो अंग्रेजी में ही कॉमेंट्री करते थे, और उनकी शैली में जॉन ऑर्लट हो,
1: हाँ,
0: एलन मैगिलबरी हो, या ऐसे बड़े बड़े कॉमेंटेटर्स जिनके हम नाम जानते हैं,
1: और बैरी
0: उनकी,
1: टोन एकदम वो
0: हाँ, उनकी मोटी आवाज में वैसे ही निकाल कर मैं
1: जी
0: वैसे ही कमेंट्री करता था। लोग बड़े प्रभावित होते थे। और स्कूलों में भी कोई मैच चलता था ना, मैं एक झाड़ के नीचे बैठकर कमेंट्री करने लग जाता था।
1: वाह
0: तो
1: वाह
0: ये एक वहां से शौक हुआ। और बचपन से मुझे पता नहीं था कि मैं कमेंटेटर बनूंगा,
1: जी
0: लेकिन कहीं से कहीं बुनियाद जो पड़ी ना मेरी, शायद वहीं से पड़ी होगी, क्योंकि वही चीज आगे जाकर विकसित हो गई।
1: बिल्कुल। तो पिताजी का क्या रवैया था?
0: नहीं देखिए, गरीबी के बावजूद, देखिए मैं पढ़ने में सबसे कमजोर, दुबला पतला, 48 किलो, जब मैं कॉलेज में भी जाता था ना, 48 किलो ही वजन था। तो मेरे प्रति उनको एक अलग से ज्यादा प्यार था। हमारे दूसरे तीन भाई हैं, तीनों भाई एमटेक आईआईटी से,
1: जी
0: मतलब इतने विद्वान और पढ़े लिखे, हमेशा प्रथम श्रेणी में आने वाले, मैं सप्लीमेंट्री लाकर पास होने वाला। उसके बावजूद भी वो इस कारण पिताजी प्यार करते थे कि ये कमजोर है, इसको हमारी मदद की जरूरत है।
1: ओके
0: और दूसरी बात ये कि उनको लगा कि ये, अगर इसको हिंदी में और इसमें ज्यादा शौक है, तो उनको लगा कि मैं क्रिकेट की तरफ प्रवृत्त हूं, तो क्रिकेट मेरी किताबों में, वो भी एल्बम में चिपकाते थे खुद बैठकर,
1: अरे गजब।
0: और बड़ी मदद की। और उस समय तो पता नहीं था, लेकिन एक बार मुझे याद है कि 1959-60 में ऑस्ट्रेलिया की रिची बेनो की टीम भारत आई। वो
1: हाँ
0: ऑस्ट्रेलिया की टीम जो थी, रिची बेनो की, वो विश्व विजेता टीम थी, और
1: बिल्कुल
0: दुनिया में उसका कोई जोड़ी नहीं था। बड़े बड़े खिलाड़ी, रिची बेनो, लिंडवाल और नॉर्मन ओनील, नील हार्वे जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी, जिनके फोटो में एल्बम में इकट्ठे किया करता था, तो वो आए हुए थे। और मैंने पिताजी से जिद पकड़ी, मैं 13 साल का था, 8वीं कक्षा में पढ़ता था,
1: जी
0: मैंने जिद पकड़ी कि मुझे बम्बई टेस्ट मैच देखना है। और पिताजी, पता नहीं क्यों, मैं पिता होता तो कभी भी अपनी बेटे की ये बात स्वीकार नहीं करता,
1: जी
0: लेकिन वो, उन्होंने कहा कि बेटे की जिद पूरी करनी है, तो वो
1: वाह,
0: मुझे बंबई ले गए टेस्ट मैच दिखाने।
1: इंदौर से बंबई आए
0: इंदौर
1: आप
0: से
1: लोग?
0: बंबई ले गए, पैसे थे नहीं, जैसे तैसे टिकट कैसे जुगाड़ किया होगा, यहां से बंबई, बंबई कहते थे जब, बंबई जाने का, बंबई गए। उनको पता नहीं था कि अगर 50,000 लोग बाहर प्रतीक्षा करते हैं, तो 50,000 लोग अंदर भी बैठे हैं, और 50,000 लोग अंदर घुसने की प्रतीक्षा में बाहर खड़े हैं। तो उनको लग रहा था कि बंबई जाएंगे, टिकट दिलाएंगे। वो पिता थे, उनको ये बेटे में दिलचस्पी थी, क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो मुझे ले गए। और वहां जाकर हम पिता पुत्र 4 दिन तक स्टेडियम, ब्रेबोन स्टेडियम के
1: जी
0: चक्कर काटते थे, और टिकट का जुगाड़ हुआ नहीं। चौथे दिन एक पुलिस वाले को हम पर दया आ गई।
1: जी
0: उसने कहा कि अरे, मैंने आपको पहचान लिया है, और जुगाड़ नहीं हुआ क्या? तो बाबूजी, बाबूजी कहता था पिताजी को, उन्होंने कहा कि देखिए, मेरी तो कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बच्चे का दिल टूट जाएगा, हम बहुत दूर से आए हैं, इंदौर
1: जी
0: से आए हैं, तो जैसे तैसे ये मैच देख ले। तो उन्होंने कहा, एक काम करता हूँ, चाय पान के समय जो बाहर आता है ना रेला, चाय पीने और मूंगफली खाने, तो मैं जब वापस जाएगा रेला, तो मैं इस बच्चे को अंदर ठेल दूंगा, लेकिन आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, आपको अंदर नहीं जाने दूंगा।
1: अरे बाप
0: तब
1: रे,
0: देखे, आदरणीय पिताजी बाहर खड़े रहे, मैं 13 साल का था, इतनी संवेदना भी नहीं थी कि पिताजी बाहर खड़े हैं,
1: जी
0: मैं
1: जी
0: अंदर फुदकता हुआ चला गया खुशी में।
1: गजब।
0: और अंदर जाकर जो दृश्य देखा, मैंने देखा 50,000, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा है, कोई भारत माता की जय के नारे लगा रहा है, कोई तरह तरह के फोटोग्राफ्स लेके ऊंचे दिखा रहा है, प्ले कार्ड्स दिखा रहा है, और ढोल मंजीरे बज रहे हैं, तरह तरह की ड्रेसेस पहनकर लोग खड़े हैं। तब मेरी निगाह पड़ी कमेंट्री बॉक्स पर,
1: वाह
0: तो मैंने किसी
1: वाह,
0: से पूछा कि यार, ये कमेंट्री कौन कर रहा है यहाँ पर? तो उन्होंने कहा, बॉबी तेलियारखा और विजय मर्चेंट यहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं।
1: लेजेंड लोग।
0: मैंने जगह देखी तो मेरे दिल में एक हुक सी उठी कि यार, क्या जगह है, राइट इन लाइन विद द विकेट, बिल्कुल विकेट की लाइन में है, बर्ड्स आई व्यू, पक्षी जैसे मैच देख रहा है, सीधी लाइन में स्विंग और सीम और सब कुछ दिखाई दे रहा है, गजब की जगह। मन में एक विचार आया कि क्या कभी यहां बैठने का मौका मिलेगा। और देखिए, जंगली सपने भी कभी कभी कैसे सच होते हैं, कि मैंने अपनी जिंदगी का पहला टेस्ट मैच उसी ब्रेबोन स्टेडियम से, उसी कमेंट्री बॉक्स से सन 1972-73 में तब किया जब टॉनी लुइस की टीम भारत आई।
1: 12 बरस लग गए।
0: तो 12 बरस लग गए। आप देखिए कि कैसे ये काम हो। इसलिए जो कलाम साहब कहते हैं ना कि सपने देखो तो खुली आंखों से देखो।
1: वाह वाह।
0: अगर
1: वा, वा।
0: बंद आंखों से सपने देखोगे तो सपना टूटने के बाद वो बिखर जाएगा, लेकिन जब आप खुली आंखों से सपना देखोगे तो उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो शायद वही बात थी कि वो सपना मैंने देखा कमेंट्री बॉक्स का, वो जाकर अब पूरा हुआ। अब इसमें दो बातें हुई साहब, देखिए यूनुस जी, मैं कहना चाहता हूँ, एक तो ये कि खुली आंखों से सपना देखा, और दूसरी बात उस पिता का सहयोग जो 90 मिनट तक बाहर खड़ा रहा और वापस आने की प्रतीक्षा में इसलिए उसी जगह खड़ा रहा जो कि कहीं बच्चा गुम ना हो जाए वापस आने पे, इतनी भीड़ भड़के में।
1: जी जी।
0: मुंबई के बारे में कुछ जानता ही नहीं, ये वापस आएगा तो भीड़ में गायब हो जाएगा, तो वहीं खड़े रहे। और जब मैं वापस आया तो मुझसे ज्यादा खुश मेरे पिताजी थे
1: कितनी
0: कि चलो बच्चे ने मैच देख लिया। तो मैं हमेशा आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि दुनिया में दो ही ऐसे व्यक्ति होते हैं, माता पिता, जो कि आपसे किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में नहीं रहते, वो चाहते हैं कि उनसे भी बेहतर आप करें, ऐसे दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होता। तो जब भी आप बड़े हो जाएं, कॉलर ऊंचे मत करिए, माता पिता को कभी मत भूलिए।
1: क्या सुंदर बात कही है। और आपने कहा कि पिताजी को आप बाबूजी कहा करते थे, तो मुझे गुलजार साहब का गाना याद आया, बचपन के एक बाबूजी थे, अच्छे प्यारे बाबूजी थे, एक था बचपन। तो इस गाने की यहां पर जगह बनाते हैं।

0: सुशील जी, 1959-60 में हम हैं, जहां पर आप ब्रेबोर्न स्टेडियम में 90 मिनट मैच देखते हैं और पिताजी बाहर इंतजार करते हैं और आप एक रोमांच लेकर बाहर लौटते हैं। यहां से आगे की कहानी।
1: नहीं, उसके बाद तो क्या, फिर वक्त बीतता गया, क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी बढ़ती रही, जैसे आपने कहा
0: और पढ़ाई
1: कि
0: साथ में चलती
1: पढ़ाई
0: रही।
1: साथ में चलती रही। विज्ञान का विद्यार्थी था मेरा, हिंदी का विद्यार्थी नहीं रहा,
0: जी
1: लेकिन अपने खुद की खुशी से मैं बड़े बड़े उपन्यास, यानी कि जयशंकर प्रसाद का छायावाद, महादेवी वर्मा है ना, या सुमित्रा नंदन पंत, इन सबका खूब अध्ययन किया मैंने। और धर्मवीर भारती जी की किताबें पढ़ी, सारे उपन्यास उनके पढ़े, गुनाहों का देवता, ये सब महादेवी वर्मा की सारी किताबें पढ़ डाली। तो ये तमाम चीज़ों से मेरी हिंदी बराबर बनी रही, हिंदी के प्रति मेरा एक विचित्र तरह का प्रेम बना रहा, एक रिश्ता बना रहा, मुझे लगा कि हिंदी मुझे खींच रही है। तो यहाँ से मेरी हिंदी की बुनियाद पड़ी।
0: यहां
1: और
0: बीच में थोड़ा सा रुकूंगा, आगे चल के धर्मवीर भारती से एक नाता बना, उसका जिक्र थोड़ा सा फ्लैश फॉरवर्ड करके करते हैं,
1: हाँ जी,
0: जब
1: हाँ
0: वो धर्मयुग
1: बिल्कुल,
0: के संपादक थे।
1: नहीं बिल्कुल, धर्मयुग में मैं जब लिखना शुरू किया 1968 69 70 के आसपास, तब उनको लगा कि हिंदी, देखिए धर्मवीर भारती जी से हमारा कोई रिश्ता तो था नहीं, उनको लगा कि मुझे उस तमाम व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए, उस हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए जो हिंदी का काम कर रहा हो। उनके दिल में बस एक ही तमन्ना थी। तो जसदेव सिंह और मुझे उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया, उन्होंने काफ़ी लिखवाया भी, तब धर्मयुग घर घर में धर्मयुग जाता था, प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी, तो उन्होंने हमसे काफ़ी लिखवाया। और बाद में जब 1979 का, जिसका मैं जिक्र बाद में करूंगा, जब वापस आया ना, उन्होंने मुझे गले लगाया, घर बुलाया और कहा कि भाई आज तुमने हिंदी का नाम रोशन कर दिया।
0: वाह
1: तो
0: वाह
1: ये
0: वाह,
1: जो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलता कि धर्मवीर भारती जी जैसा व्यक्ति, जिनसे मिलने को लोग लालायित होते थे, वो मुझे स्वयं घर बुला रहे हैं, उस समय बहुत बड़ी बात होती थी।
0: बिल्कुल। तो हम वापस स्कूल के जमाने में चलते हैं, जहां आप धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत वगैरह को पढ़ रहे हैं, और हिंदी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रुचि है, लेकिन धारा विज्ञान के छात्र की है और रास्ता इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा है।
1: हाँ, उस समय क्या होता था कि गरीबी के दिन थे, मैंने आपको बताया, किताबें थी नहीं, पैसा था नहीं, हमको लगता था कि भाइयों के जो स्लाइड रूल है, उनकी जो किताबें हैं, उनके जो कपड़े हैं, वो हमारे काम आ जाएंगे। तो एक मुद्दा ये भी था कि पैसे खर्च नहीं होंगे और ये कमज़ोर है तो बड़े भाई पढ़ा भी देंगे इनको, और उन्होंने पढ़ाया भी खूब, मेरी खोपड़ी में बहुत कुछ घुसाने की कोशिश की इंजीनियरिंग की, जैसे तैसे मैं पास भी हुआ, लेकिन ये समझिए कि 5ों साल सप्लीमेंट्री लाकर पास हुआ मैं, बड़ी मुश्किल से पास हुआ, लेकिन इंजीनियर मैं बन गया। शक्ल सूरत से मैं लगता नहीं कि पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं इंजीनियर हूँ। तो
0: जी,
1: इंजीनियरिंग पढ़ने से एक बात हुई कि मुझे तकनीकी चीज़ें समझने में बहुत सहूलियत हुई। क्या होता है, जो शिक्षा होती है ना, ये आपके दरवाजे खोलती है,
0: बहुत सही।
1: तो ये आपको चीजों को ग्रहण करने में मदद देती है। तो इंजीनियरिंग पढ़ने से क्या हुआ कि गेंद का एरोडायनामिक्स बहुत आसानी से समझ में आ गया, कि कोई गेंद स्विंग होती है तो क्यों होती है, सीम के सहारे कट क्यों होती है, सीम पर पड़ती है तो उसका व्यवहार कैसा रहता है, पिच में नमी रहती है तब क्या होता है, तमाम चीजें समझने में बहुत आसानी हुई। तो इंजीनियरिंग कि पढ़ाई में भले ही मैं बहुत बड़ा विद्वान न रहा, लेकिन उससे बहुत सारी चीजें समझ में आई। और दूसरी बात ये कि जो आसपास के दूसरे कमेंटेटर्स होते थे ना, उन पर दबदबा रहता था कि भाई ये तो इंजीनियर हैं, ये
0: वाह,
1: गलत बात नहीं करेंगे। तो
0: क्या
1: ये भी
0: बात
1: एक जरा एहसास रहता था मन में कि
0: जी
1: भाई हम जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं।
0: जी आपके बचपन किशोर युवा वाले दिनों में इंदौर क्रिकेट का एक गढ़ था, कुछ बड़े क्रिकेटर वहां से आते हैं, उनसे किस तरह का कनेक्शन रहा या देखना रहा उनको?
1: नहीं बिल्कुल ठीक है, आपने कर्नल सीके नायडू साहब, उनसे मेरी मुलाकात, पद्म भूषण, जो
0: जी
1: अकेले पद्म भूषण क्रिकेट के, उस समय पहले वाले पद्म भूषण, उस समय तो उनके घर पे भी काफ़ी जाता था, उनके परिवार से काफ़ी रिश्ता था, और उनका आखिरी इंटरव्यू मैंने किया था, जो स्पोर्ट्स एंड पास टाइम में कवर स्टोरी के रूप में छपा था उस समय,
0: वाह,
1: इलस्ट्रेटेड वीकली में भी मैंने उनके बारे में लेख लिखा था। तो मैं हिंदी में लिखता था, मेरे बाबूजी जो थे वो अंग्रेजी में अनुवाद करते थे।

0: उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी,
1: वाह
0: अपने समय के भी काम थे। जिस गांव से वो आते थे, प्रतापगढ़ राजस्थान से, जहाँ मेरा जन्म हुआ, लेकिन बाद में मैं इंदौर आ गया, लेकिन वहाँ पर कोई अकेले बीकॉम रहे होंगे, तो उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी थी कि उसका मुझ पर भी बहुत प्रभाव पड़ा कि छोटे वाक्य ग्रामेटिकली सही वाक्य, व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य। उनका हमेशा ये कहना था कि हिंदी भी अगर बोलो या लिखो तो व्याकरण की दृष्टि से सही बोलो या लिखो। ये चीज़ मेरे मन में गहरे तक समा गई थी और इसी कारण मैं जब भी लिखा या बोला ना, जब भी मैंने कमेंट्री भी जब की तो मैंने व्याकरण को बड़ा ध्यान रखा और इसी कारण मेरी हिंदी जो लोग कहते हैं काफ़ी शुद्ध रही। तो अब लोग कह रहे हैं तो मैं मानता हूं कि शायद शुद्ध रही होगी।
1: जी, अपने बचपन के जमाने में फिल्मों से कैसा कनेक्शन था? क्योंकि इंदौर में मुझे याद है कि मैं एक दिन सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम साहब का इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने पूरी टॉकीजों का बताया, ये यहां थी, यहां अंग्रेजी फिल्में लगती थी, यहां हिंदी फिल्में लगती थी, यहां मॉर्निंग शोज होते थे। आपका फिल्मों से कैसा?
0: नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत। मैं तो शाम को 8-9 बजे के सेकंड शो देखने ही चला जाता था।
1: गजब।
0: कुछ मतलब पिक्चर तो एक आदत की तरह हो गया था कि कोई भी, याद बाद में जब शादी हो गई तब भी पत्नी को भी काफी शौक था फिल्मों के प्रति, तो हम लोग शाम पढ़ते ही हमारे कदम ऐसा लगता था कहीं जाकर देखें, ज्योति टाकेज या प्रकाश टाकेज या फिर एलोरा टाकेज, जहां अब तो रहे नहीं टाकेज, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन गई हैं, लेकिन वहां जाकर फिल्में देखने का बहुत शौक रहा। और सलीम साहब से तो मेरी मुलाकात भी हुई
1: जी,
0: कई बार मुलाकात हुई। एक इंदौर में एक समारोह में साथ में मिले थे और मुझे बहुत बहुत जीवंत व्यक्ति। जावेद साहब से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सलीम साहब से जरूर मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई। और एक बार मुंबई शहर में भी करसन घावरी साहब के बड़े मित्र हैं जो पुराने क्रिकेटर हैं, तो जब एक बार कमेंट्री के लिए आया तो घावरी साहब ने कहा कि यार अपन लोग बैठते हैं, सलीम साहब भी याद कर रहे हैं, इंदौर का लड़का कमेंट्री करने के लिए आया है। तो सलीम साहब के तो और क्या दिलकश आदमी,
1: वाह,
0: मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि कोई इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। और बिल्कुल उसी तरह से कि हमारे साथ बैठकर उन्होंने गाने भी गाए,
1: वाह वाह,
0: और क्या आवाज उनकी, बिल्कुल लंबा खींचते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता कहीं गला फटता ही नहीं है उनका। वो दुनिया के रखवाले वाला गाना उन्होंने सुनाया था,
1: क्या
0: तो वो कितना उसमें लंबी खींच जो आती है ना तान,
1: हाँ।
0: वो पूरा उन्होंने वैसा का वैसा सुनाया।
1: तो दो इंदौरी लोग मिल गए थे,
0: बहुत बहुत मजा आया। और मुझे लगता है कि इंदौरी लोग जब भी मिलते हैं ना आपस में, मालवा के लोग, इंदौर भोपाल के लोग, तो जब भी
1: आप मुझे शामिल कर रहे हो
0: तो बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता है कि कोई घर के लोग
1: जी
0: मिल गए और
1: इनके
0: साथ खूब बात करनी चाहिए, और ऐसी भाइयों की एक बढ़ोतरी हो गई है भाइयों में।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो सलीम साहब से ये जो मुलाकात का आपने जिक्र किया, इस मुलाकात की याद के नाम वो दुनिया के रखवाले सुनते हैं।

0: सुशील जी, बहुत आनंद आ रहा है आपके बचपन के गलियारों में हम घूम रहे हैं। एक चीज जो मुझे हमेशा लगती रही, आप एक बहुत नामी क्रिकेट कमेंटेटर रहे और हिंदी क्रिकेट कमेंट्री के संस्कार जैसे बुनियाद आपने गढ़ी है। आपने स्वयं कितना क्रिकेट खेला है ये जानना मेरे लिए बहुत दिलचस्प।
1: देखिए, स्कूल में टीम में था, स्कूल में जाकर क्रिकेट खेलता था। वैष्णव हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा हूँ इंदौर में, वहाँ जाकर खेलता था। और उस समय गरीबी के दिन थे, मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट का बल्ला खरीदने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतना शौक था कि क्रिकेट खेला। इतना समझ में आया कि जब मिड ऑफ की जगह मिड ऑन पर गेंद जाती है तो होता क्या है, बल्ला जो बल्ले का हैंडल हाथ में घूम जाता है, इस कारण मिड ऑफ का मिड ऑन में जाता। तो ये तमाम चीजों की समझ जब आप थोड़ा बहुत खेलते हैं ना तो आपको समझ में आता है।
0: यस,
1: तो ये जरूरी है कि आप थोड़ा बहुत खेलें। ऐसा नहीं होता, सब कुछ सैद्धांतिक रूप से काम नहीं होता है इसमें। थोड़ा महसूस करते भी आना चाहिए कि कोई चीज कितनी मुश्किल या कितनी सरल क्यों होती है। तो ये एक फायदा हुआ। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि ये रॉकेट साइंस नहीं है। क्रिकेट का खेल जो है ना, ये एक, अगर आप इंजीनियर हैं, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, हाई डिग्री ऑफ कॉमन सेंस अगर आप में है या क्रिकेटिंग सेंस आप में है, तो फिर आप इस खेल की बारीकियों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आजकल के कई क्रिकेटर्स ये बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास भाषा नहीं रहती है, वो कमेंट्री करते हैं तो वो कहने की कोशिश करते हैं कि साहब क्रिकेट तो हमको ही आता है, ये सब जो है ना बाकी के लोग। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए उनको पता नहीं कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, एक बहुत मामूली विज्ञान है जो अगर आप क्रिकेटिंग सेंस है तो आप उसको समझ सकते हैं।
0: जी,
1: तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूं कि भाई आप अपनी विधा पर

0: ध्यान दीजिए और साथ ही भाषा पर भी ध्यान दीजिए।
1: यस
0: और ऐसा मत करिए कि हिंदी में बोल रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं। अरे भाई, देश की भाषा है, अगर आप बोल रहे हैं तो एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपकी खुद की भाषा है, इसको
1: बिल्कुल
0: सही बोलिए। और सबसे बड़ी बात, व्याकरण की दृष्टि से सही बोलिए। क्रिकेट खेली नहीं जाती, क्रिकेट खेला जाता है। विकेट गीली नहीं होती, पिच गीला होता है। तो ये तमाम चीजें अगर आप सही ढंग से नहीं बोलेंगे तो देश की भाषा खराब होती है। और
1: यस
0: मैं तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी ये कहता हूं कि भाई, आपने देश के क्रिकेट की बागडोर या उसके राइट्स, आपने अधिकार बेचे हैं, भाषा को खराब करने के अधिकार नहीं बेचे हैं। तो ये एक देश की भाषा के प्रति उनको भी ध्यान रखना चाहिए। कोई विदेशी चैनल से इसका मतलब ये नहीं है कि देश की भाषा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखें। और क्रिकेटर्स का तो बड़ा स्वागत है, अगर वो क्रिकेट कमेंट्री के क्षेत्र में उभर रहे हैं या आ रहे हैं तो मैं तो चाहता हूं कि, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं मालूम रहती, वो बता सकते हैं। जैसे ड्रेसिंग रूम में क्या वातावरण चल रहा होगा, कप्तान क्या सोच रहा होगा, तीन स्लिप और एक गली रखे थे, शॉर्ट थर्ड मैन क्यों रखा है, शॉर्ट फाइन लेग का फील्डर अंदर रखा है तो बॉलर को लेग साइड में बॉलिंग नहीं करनी चाहिए अन्यथा चौका हो जाएगा। ये तमाम चीजें हमसे पहले वो समझते हैं, तो अपनी समझ को बरकरार रखें। लेकिन साथ ही भाषा के प्रति अन्याय नहीं करना चाहिए, देश की भाषा खराब करने का। ये नहीं समझे कि हिंदी भी कोई भाषा है क्या, कुछ भी बोल लेंगे चल जाएगा। क्योंकि अंग्रेजी में कभी आपने सुना है कि आई इज गोइंग
1: नहीं,
0: या फिर दे इज कमिंग, तो आप कितने भी बड़े आदमी हो, लोग आपको सहन नहीं करेंगे। लेकिन हिंदी में हर तरह की भाषा चल रही है, तो ये ठीक सहन नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूं कि जो इसको सहन कर रहे हैं ना, उनका भी अपराध उतना ही बड़ा है, क्योंकि गलत चीज को और खास करके भाषा के साथ अन्याय को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही, आपने बहुत बड़ी और जरूरी बात कही है। अब मैं उस जगह पर आ रहा हूं जहां पहली बार हिंदी में कमेंट्री की परंपरा शुरू होने का ऐलान होता है और सुशील जी उस रास्ते पर बढ़ने की कोशिश करते हैं।
0: नहीं, सच बात है, आपने तो भावुक कर दिया। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में चौथे साल में पढ़ता था
1: जी
0: और उस समय खबर आई कि पहली बार हर जगह से हिंदी कमेंट्री जरूरी है। और तब रणजी ट्रॉफी मैचों की भी हिंदी कमेंट्री, मध्य प्रदेश और राजस्थान का मैच था और 15 दिन पहले कहीं से घोषणा हुई कि वो हिंदी में कमेंट्री होनी है। बड़ी ढूंढ मचाई, सबने कहा कि बेवकूफ़ी की बात है, हिंदी जो FPS सिस्टम का खेल, 22 यार्ड से जो शुरू होता है, उसमें हिंदी का क्या काम। तो लोगों ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता। तो मैं पहुंच गया वहां पर स्टेशन डायरेक्टर के पास कि मैंने
1: आकाशवाणी इंदौर
0: मैं
1: में।
0: हाँ मैं समझिए कि ये मामूली रहन सहन था। और मैं वहां पहुंचकर मैंने स्टेशन डायरेक्टर से कहा कि मैं कमेंट्री कर सकता हूँ और आप मुझे मौका दीजिए। तो उन्होंने मुझे देखा, मुझे याद है उनकी मुस्कुराहट अभी भी याद है।
1: जी
0: उन्होंने कहा कि बॉय, सिंपली गेट आउट,
1: ओ
0: क्योंकि पुट ऑन सम ग्रे हेयर्स एंड देन कम। और उनका सोच
1: हो
0: बिल्कुल सही था। उस समय कॉमेंटेटर्स 50, 55, 60 साल के होते थे।
1: और आप 18 के थे।
0: मैं 18 साल का था, तो तजुर्बे का थोड़ा लेकर तो आइए ज्ञान, उसके बाद फिर बात करिए। तो वो ठीक कर रहे थे, उन्होंने मुझे वापस भेज दिया।
1: दिल टूटा।
0: मुझे अपमानजनक भी नहीं लगा, क्योंकि आदत थी, गरीब थे तो शायद अपमान की आदत थी। तो वापस चले गए, कोई बात नहीं, टहलते हुए वापस आ गए। फिर वो दिन आ गया जिस दिन कमेंट्री होनी थी, कोई मिला ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक पागल सा लड़का आया था जो कमेंट्री करने की कोशिश कर रहा था, उसको बुलाकर पूछते क्या वो कर सकता है। तो मुझे ढूंढकर फिर बुलाया, तो मैं गया वहां पर और उन्होंने कहा इमेजिनरी कमेंट्री करके बताइए जरा।
1: हाँ
0: अब मैं तो धारा प्रवाह अंग्रेजी में करता ही था, तो मैंने कहा किसकी शैली में बताऊं,
1: अरे
0: जॉन
1: गजब।
0: ऑर्लॉट की शैली में बताऊं, अलन मिगलबरी की शैली में बताऊं या ब्रायन जॉनस्टन की शैली में बताऊं। तो बोले अच्छा करके तो बताइए। तो मैंने अंग्रेजी में तीनों अलग अलग तरह की शैली में कमेंट्री करके बताइए। वो लोग इतने प्रभावित हुए, यार क्या गजब कमेंट्री करते हो तुम तो, लेकिन एक काम करो कि हमें तो हिंदी में कमेंट्री करनी है।
1: हाँ
0: अब मैं तो इसके लिए तैयार नहीं था, मुझे पता नहीं था। तो मैंने हिंदी में कुछ करने की कोशिश की, अच्छी नहीं की होगी निश्चित रूप से, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था, किसी की सुनी ही नहीं थी कभी। अच्छा हुआ नहीं सुनी थी, अगर सुनता तो शायद किसी की नकल करता, क्योंकि इतना बुद्धिमान तो था नहीं मैं, कोई नकल करने को मिल जाती तो नकल करता मैं। लेकिन जब नकल करने को नहीं मिली तो फिर अकल लगानी पड़ी।
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: उसमें यह हुआ कि फिर कमेंट्री की और उन्होंने कहा कि नहीं, चलो चला तो लेगा ये लड़का काम, तो

0: कमेंट्री की, और कमेंट्री की तो ये समझिए कि खाली प्याले में एक तूफान सा आ गया। लोगों ने कहा कि ये तो क्रिकेट की हत्या हो गई। किसी ने कहा कि ये जिंदगी भर कमेंट्री सीखें तो भी कमेंटेटर नहीं बन सकते, और मैं उन्हें दोष नहीं देता, शायद अच्छी नहीं की होगी निश्चित रूप से, क्योंकि एक तो उम्र भी कम थी और परिपक्वता भी नहीं थी, लेकिन कुछ था जो स्टेशन डायरेक्टर को प्रभावित कर गया। उसकी बात मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जब ये हुआ ना, इतनी ज्यादा आलोचना हुई, तो पिताजी नाराज हो गए कि देखिए अपने पास पैसा तो है नहीं और अब तुम नाम के बजाय बदनामी ज्यादा मोल ले रहे हो, या तो गंभीरता से काम करो और सोचो, अच्छा काम करो, क्रिकेटर करता क्या है उसके व्यवहार की तरफ दृष्टि डालो, उसके हाव भाव, उसका चाल चाल कैसी चलती, क्या करता है स्ट्रोक खेलते वक्त, ये सब सोच के फिर हिंदी में सोचो, अंग्रेजी में सोचना बंद करो, अंग्रेजी कमेंट्री का भूत अपने सिर से निकालो, और फिर अगर करना हो दिल से महसूस करके दिलों को छूने की कोशिश करो। जब उन्होंने ये कहा तो फिर मैंने सोचा कि जैसे स्क्वायर कट करता है तो क्या करता है खिलाड़ी, मैंने सोचा कि पहले शॉर्ट पिच गेंद आती है, ऑफ स्टंप के बाहर आती है, बल्लेबाज अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करता है, स्ट्रोक के लिए जगह बनाता है और फिर स्क्वायर कट कर देता है चार रन के लिए।
1: वाह वाह।
0: ऐसा जब सोचा ना तो मैंने देखा कि ये तो एक वाक्य भी बन गया,
1: रिदम आया,
0: शैली भी बन गई। शैली मतलब जो कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह की शैली बन जाएगी। आज मैं चार वाक्य बोलता हूं, लोगों को पता चल जाता है कि कमेंटेटर कौन है ये। तो ये जो पहचान बनी ना, इस कारण बनी कि हिंदी में मौलिक रूप से मैंने सोचना शुरू किया, और इसका ही फल है कि आज हिंदी में जितनी भी भाषा, जितनी भी शब्दावली बहुत सारी जो चल रही है, जैसे कि कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी के लिए मैं शंका का गलियारा मैं कहता था कि ये किसी ने भी कभी सोचा नहीं था।
1: बिल्कुल,
0: कई इस तरह के शब्द जैसे अपनी नजरों के ठीक नीचे खेल रहे हैं, ये तकनीकी शब्द लेकिन बिल्कुल सरल हिंदी में, तो बिल्कुल तकनीकी रूप से बिल्कुल सही खेल रहे हैं, नजरों के ठीक नीचे खेल रहे हैं, तो ये जो सिर बिल्कुल स्थिर रख रहे हैं जब खेलते हैं, ड्राइव करते हैं,
1: सीमा रेखा,
0: तमाम चीजें, ये सब तकनीकी चीजें हिंदी में कभी थी नहीं।
1: आपने सीमा रेखा जैसा शब्द भी गढ़ा।
0: क्यों याद दिलाते हैं। मेरी पत्नी का नाम रेखा है।
1: अच्छा,
0: तो क्रिकेट में तो उनकी इतनी ज्यादा दिलचस्पी रही नहीं। लेकिन वो क्या हुआ कि मैंने सोचा कि पहले मैं बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए ऐसा बोलता था। मैंने सोचा कि बाउंड्री लाइन भी क्यों बोलूं, सीमा रेखा, इसका हिंदी में अनुवाद करो, सीमा रेखा के बाहर चार रन के। ये जब बोला तो पत्नी ने आड़े हाथों ले लिया घर में आते ही।
1: अच्छा।
0: बोले, रेखा तो मैं हूं, ये सीमा कौन है?
1: क्या बात है, शानदार बात है। यहां ना एक गाने की जगह बन रही है, पर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, गाना थोड़ा आगे करेंगे, लेकिन एक दिलचस्प चीज मुझे समझ में आई कि आपने अंग्रेजी में कमेंट्री करके सुनाई थी, मैं वो थोड़ा सा सुनना चाहता हूं।
0: अब क्या वो इमेजिनरी कमेंट्री करते थे कि
1: जी जी, किसकी शैली में है वो भी बताइएगा।
0: नहीं, जॉन ऑर्लेट बोलते थे जैसे कि फ्रेडी ट्रूमन कमिंग इन फ्रॉम द वेक्सल एंड कम्स इन एंड बोल्स टू सुनील गावस्कर एंड गावस्कर फॉरवर्ड डिफेंसिवली बैक टू द बॉलर नो रन।
1: वाह, क्या ग्रेन्स, और वो जो रिदम है ना इस कमेंट्री का, ये टिपिकल अंग्रेजी रिदम है, इसको आपने नहीं अपनाया था। और इसकी बात आगे करते हैं, यहां गाना लेके आता हूं, इम्तिहान फिल्म का गाना जो आपकी जिंदगी से मेल खाता है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, सुंदर गाने की जगह बनी।

0: मैं वो बात कर रहा था कि अंग्रेजी कमेंट्री का एक माइलस्टोन तय था, एक पैमाना तय था कि ये ऐसी होती है। हिंदी कमेंट्री का आप अपना एक संसार रच रहे थे, वहां किस तरह की चुनौतियां आपके सामने थी?
1: नहीं देखिए, बहुत बड़ी चुनौतियां। एक तो कारण ये कि बहुत बड़ा वर्ग आपको सुन रहा है,
0: जी
1: 70% आबादी के प्रति आप जिम्मेदार हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी, राज सिंह डूंगरपुर ने मुझे बात बताई थी कि कभी भी कोई गलती करो ना, ये मत सोचो कि रेडियो कमेंट्री है, किसने देखा कि क्या हुआ था। आप अगर गलत भी कुछ बोल दिया तो उस पर टिके रहो, लोग ऐसा कहते हैं, कई हिंदी कमेंटेटर ऐसा सोचते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी को समझो, कि आप ईमानदारी से बात करो, कि अगर लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी सत्य की इतनी ज्यादा है कि आप गलती करो तो विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो। एक किस्सा है, कानपुर टेस्ट मैच में मुझे याद है कि प्रणव रॉय बोल्ड हो गए थे, क्लीन बोल्ड हो गए थे एक गेंद पर, और किसी कमेंटेटर ने कहा कि ऑफ स्टंप से मिडिल स्टंप की तरफ गेंद आई। तो मैंने कहा कि राज भाई, वो मुझे लगता है कि मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ आई, और बैट के बाहरी किनारे को भी छोड़ती हुई ऑफ स्टंप उड़ गया था। तो बोले यार चलो, राज सिंह जी ने तो वो बोला नहीं था, किसी तीसरे ही कमेंटेटर ने कहा था। लेकिन उन्होंने कहा एक काम करते हैं, लंच के समय अपन प्रणव रॉय से ही पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो हम लोग लंच के समय गए, राज सिंह जी कितने बड़े आदमी थे, देखिए मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट भी रहे। तो वहां जाकर प्रणव रॉय से पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ बाहर की तरफ निकल गई थी।
0: गजब।
1: तो देखिए, उस कमेंटेटर ने क्षमा नहीं मांगी, लेकिन राज सिंह डूंगरपुर ने ऑन बिहाफ ऑफ द कमेंट्री टीम उन्होंने कहा कि हम क्षमा चाहते हैं, हमसे ये गलती हो गई थी कि हम अंदर की तरफ आई और बैट और पैड के बीच में निकली, ऐसा हमने कहा था, लेकिन गेंद दरअसल बाहर की तरफ निकली।
0: उल्टा हुआ था।
1: हाँ, तो सत्य के प्रति उनकी जो आस्था थी वो मेरे दिल में घर कर गई, कि
0: जी
1: आज भी मुझसे कुछ गलती होती है तो मैं तुरंत स्वीकार कर लेता हूँ। और सच मानिए, लोगों को ये बात पसंद आती है
0: बिल्कुल।
1: कि आप अगर विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो, क्योंकि आपकी इच्छा तो झूठ बोलने की है नहीं, आपसे कोई गलती हुई, आप भी तो इंसान है ना, बैट्समैन से गलती हुई तो वो आउट हो जाता है, अंपायर से गलती हुई तो गलत आउट दे देता है, आप भी तो आखिर इंसान है, आपसे गलती हो सकती है, आप विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो।
0: क्या बात है। पहला बहुत ही बड़ा मैच जिसकी कमेंट्री करने का आपको मौका मिला था, वो यादें हमारे साथ बांटिए।
1: नहीं, 1972-73 का जो मैं
0: जी
1: आपको जिक्र कर रहा हूं,
0: ब्रेबोन।
1: ब्रेबोन स्टेडियम, तो वो तो मैं भूल नहीं सकता कि हमारे सामने ऋषि कपूर बैठे हुए थे, डिंपल कापड़िया, उस समय बॉबी फिल्म साइन ही की।

0: थी, तब तक फिल्म आई भी नहीं थी,
1: जी जी
0: दोनों दिख रहे, विनोद खन्ना को हमने देखा, फिर सामने बैठे थे डेविड, बिल्कुल गंजे,
1: वाह वाह, डेविड अब्राहम जी,
0: तो डेविड वो अपनी भीड़ के साथ नारे लगा रहे थे भारत माता की जय, और मतलब अद्भुत दृश्य था। विनोद खन्ना को देखा हमने
1: जी,
0: कि अपने मतलब इतने आकर्षक ये लोग, कि अब मैं भी छोटा था ना, 24-25 साल का ही था, तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती थी, पहला टेस्ट मैच करता था, और सच मानिए मुझे पता ही नहीं था कि मैं अच्छा कमेंटेटर हूं या नहीं, मुझे लग रहा है कि मौका मिल रहा है कर लीजिए, तो कोई एक सपना था कि अच्छे काम की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं माता पिता की सलाह से, तो उस काम की तरफ बढ़ गए। तो ये वो एक पहला मौका, बहुत बड़ा मौका था, और कुछ गलतियां मैं करता था, जैसे 39, जैसे मालवा के लोग बोलते हैं ना,
1: जी जी
0: है ना, 69 को,
1: हाँ,
0: तो वो शुरू शुरू में गलतियां होती थी, लोगों ने काफी प्रताड़ित भी किया फिर उसको, लेकिन सीखने की, देखिए हमेशा मैंने ये रखा कि सीखने की इच्छा रखी, गलतियां की तो सीखने की इच्छा रखो, कम उम्र थी, सीखने का मौका मिला, लेकिन धारा प्रवाह कमेंट्री करता था
1: जी जी,
0: और धारा प्रवाह तो कई बार मेरी पत्नी से लोग, उनकी सहेलियां पूछती हैं कि इतना धारा प्रवाह ये कमेंट्री करते हैं तो क्या आपके सामने भी बोल पाते हैं, उन्होंने कहा बेचारे बोल पाते होते तो वहां पर इतनी धारा प्रवाह कमेंट्री करने की जरूरत क्या पड़ती है। तो ये धारा प्रवाह का सिलसिला
1: जी
0: चलता
1: जी
0: रहा, तो एक रिदम था, सही शब्द सही जगह,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्रिकेट कमेंट्री में सबसे बड़ी बात सही शब्द सही जगह, तो चूंकि इसमें साहित्य बहुत काम आता है,
1: बिल्कुल,
0: आजकल के क्रिकेटर्स के साथ दिक्कत यह है कि साहित्य नहीं पढ़ते हैं, पढ़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो रोमन लिपि पढ़ते हैं, उनको पता नहीं हिंदी साहित्य तो पढ़ते ही नहीं है अधिकांश, उसमें 90% लोग जो आज कमेंट्री कर रहे हैं
1: जी,
0: टेस्ट क्रिकेटर्स जो कर रहे हैं उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हिंदी पढ़ें भाई,
1: बिल्कुल,
0: साहित्य पढ़ते हैं तो आपको क्या होता है कि संवेदनशीलता आती है, संतुलन की भाषा, संतुलन आप कैसे आएगा, जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, सहवाग की सबसे बड़ी बात क्या थी कि संतुलन, बॉडी बैलेंस, तो ये संतुलन कमेंट्री में भी बहुत होता, संतुलन कैसे आएगा, निष्पक्ष कमेंट्री कैसे आएगी, आज हम देखते हैं कि पक्षपातपूर्ण कमेंट्री होती है, भारत ऐसा कर देगा तो अच्छा हो जाएगा, भाई आप निष्पक्ष कमेंट्री के लिए बैठे हो,
1: बिल्कुल,
0: रिची बेनो ने भी कहा है कि आप निष्पक्षता बरती है, कमेंट्री हमेशा निष्पक्षता का काम है, आप किसी पक्ष के नहीं है, तो ये एक बात समझने की है,
1: बिल्कुल। बहुत मजा आ रहा है आपसे बातें करके सुशील दोषी जी, और अब मुझे लगता है कि ड्रिंक्स ट्रॉली जैसे आती है ना क्रिकेट में, वैसे यहाँ पर गाना आएगा,
2: ऐसा ही बड़ा हुआ गावस्कर, राहुल द्रविड़ तेंदुलकर,

जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग आज आपने सुना मैटिनी शो कार्यक्रम में। सुशील जी से बातों का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। अगले हफ्ते यानी 8 अगस्त को इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, तो जरूर सुनिएगा मैटिनी शो 8 अगस्त को दिन में 11 बजे। आपको बता दें इस कार्यक्रम के लिए संपादन और प्रस्तुति तेजसी कामले की। मिलेंगे अगले हफ्ते, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

0: विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश में विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसे 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने प्रधानमंत्री को हवाई अड्डे की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी। श्री मोदी आज राज्य में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाई जानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17,00,000 से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। श्री जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक में रजत, जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। तेजस्वी शंकर ने डेकथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने अब तक 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 23 पदक जीत लिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, इस कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: मदन मोहन की तर्ज पर लता मंगेशकर और साथियों को आपने सुना साहिर लुधियानवी के बोल थे, गजल फिल्म की ये प्यारी सी गजल आपने सुनी।
1: देख लिया कहां रहता हूं, जहां मौत जिंदगी पर हंसती है।
2: वो दिन दूर नहीं दीपक जब जिंदगी मौत पर हंसेगी।
1: लेकिन कब, कैसे
2: मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो।

सुमन कल्याणपुर और सखियों को आपने सुना फिल्म पूर्णिमा में। भरत व्यास के बोलों को शुरू में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुर का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज थी, फिल्म थी दिल एक मंदिर।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
5: अपनी आप रातों में
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
6: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
6: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
6: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
6: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और साथियों को आप सुन रहे थे। शैलेंद्र का लिखा गीत था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी, फिल्म थी दिल अपना और प्रीत पराई। आज कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं श्रोताओं अभिनेत्री मीना कुमारी पर फिल्माए गए गीतों को।

0: गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म पाकीज़ा से।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती FM बैंड 103.7 MHz पर। दिन का एक बजने वाला है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि भारत में मध्यस्थता

0: की परंपरा सदियों पुरानी है और यही हमारी संस्कृति तथा इतिहास का अभिन्न हिस्सा रही है। ये बात उन्होंने आज जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन मुख्य व्याख्यान में कही। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उल्लेख करते हुए कहा कि उसमें शासन के चार सिद्धांत साम, दाम, दंड और भेद बताए गए हैं, जिनमें साम यानी संवाद और समझाइश को पहली प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि यही सिद्धांत आज की मध्यस्थता व्यवहार का आधार है और विधि के शासन को प्रभावी बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि विश्वविद्यालयों का दायित्व केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से सशक्त बनाना है। ये बात उन्होंने आज बीकानेर में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के 40वें स्थापना दिवस समारोह और डॉ के एन नाग स्मृति व्याख्यान माला को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने विद्यार्थियों से यूपीएससी और आरपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि विश्वविद्यालय में इंडिया एआई मिशन के तहत 20 करोड़ रुपए की लागत से कृषि आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। समारोह में राज्यपाल ने श्री मेघवाल को विश्वविद्यालय की सर्वोच्च उपाधि डॉक्टर ऑफ साइंस प्रदान की। शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और समुचित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत हुई। इस वर्ष सप्ताह की थीम जीवन की सतत और स्वस्थ शुरुआत के लिए स्तनपान जो प्रभावी भी है और उसे सशक्त बनाए रखी गई है। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को नवजात शिशु के स्वस्थ विकास के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वैभव उपाध्याय ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बताया कि पहले 6 महीने तक माँ का दूध बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी होता है। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण में राजस्थान ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन ज्ञान संपदा के संरक्षण के राष्ट्रीय अभियान में राजस्थान का योगदान सबसे अधिक है। उपमुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि का श्रेय जनभागीदारी, संस्थागत सहयोग और समर्पित प्रयासों को दिया। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय और ज्ञान भारतम मिशन की टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही पांडुलिपि संरक्षकों, मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों, शोध संस्थानों और स्वयं सेवकों के सहयोग की सराहना की। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें आज कम कर दी हैं। कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2738 रुपए हो गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से कहीं कहीं तेज तो कहीं कहीं हल्की बरसात का सिलसिला बना हुआ है। राजधानी जयपुर में आज कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं राज्य के पश्चिमी हिस्सों में गरज और झोंकेदार हवाओं के साथ बरसात हुई। सबसे अधिक 60 मिलीमीटर बरसात डूंगरपुर के वेजा में दर्ज हुई। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मॉनसून दक्षिणी राजस्थान के भागों से होकर गुजर रहा है। इसके असर से आज और कल उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में तेज तो कहीं कहीं बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं जयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग में भी बरसात के आसार हैं। आज सिरोही और जालौर में बारिश का येलो अलर्ट है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी गई है। पीएमआरबीपी के लिए 1 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

ये परिंदों की आवाज और ये कौन सी खास जगह है श्रोताओं, जहां मीना कुमारी पर ये गीत फिल्माया गया, यानी स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वो आपको बताना है। और फिल्म पाकीज़ा का ये गीत था, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी। तो फिल्म पाकीज़ा जो थी वो अपने डायलॉग्स के लिए भी बहुत जानी जाती थी। इस फिल्म का कौन सा डायलॉग है जो आपको बहुत पसंद आता है, ये आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख कर भेज सकते हैं। हमारी श्रोता ने लिखा है कि आज सुरीला सफर ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी को समर्पित है। मीना कुमारी हिंदी फिल्मों की एक ऐसी महान अभिनेत्री थी जिनके अभिनय में भावात्मक गहराई और संजीदगी थी। वे अभिनेत्री होने के साथ साथ एक उम्दा शायरा और पार्श्व गायिका भी थी। फिल्मों में उनका योगदान अमूल्य है। वे केवल एक कलाकार नहीं बल्कि एक युग थी जिन्होंने अभिनय को भावनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति के साथ पिरोया यानी बनाया। उनका नाम आज भी भारतीय सिनेमा में आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। और इन्होंने कुछ गीत भी अपनी पसंद के भेजे हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि आज मीना कुमारी जी के फिल्मों के गीत से सजेगी महफिल सुरीला सफर कार्यक्रम की। एक और श्रोता ने लिखा है कि अभिनेत्री मीना कुमारी जी को परिभाषित करता ये गद्यांश नजर आ रहा है जिन्होंने अभिनय को अलग आयाम से

नवाजा। जी हाँ, मीना कुमारी जी की जो अदायगी थी श्रोताओं, वो बहुत ही अलग थी। वैसे उन्होंने बहुत कम समय काम किया फिल्मों में, लेकिन जो सिल्वर स्क्रीन पर उनकी एक पहचान बनी वो आज भी कायम है। मीना कुमारी की जो फिल्में थीं, कौन सी फिल्में आपको बहुत पसंद आती हैं और कौन सा किरदार पसंद आता है, ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की इमारत में कुछ गीतों के नगीने सजे हैं जो एक महान कलाकार की याद का दिन है। मीना कुमारी जी को शत शत नमन, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उन्हें नमन किया है इस कार्यक्रम में अपने जो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं उनके द्वारा। ये गीत आपको पहचानना है श्रोताओं, और बताना है इस गीत के गीतकार कौन हैं और मीना कुमारी जी के साथ कौन नजर आते हैं।

शंकर जयकिशन की तर्ज थी श्रोताओं लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत आपने सुना दिल अपना और प्रीत पराही फिल्म से। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, पहले फिल्म में गुलाम मोहम्मद साहब की तर्ज थी और इसमें शैलेंद्र की रचना थी। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि दर्द को अगर कभी कोई चेहरा मिला तो वो मीना कुमारी थी। उनकी आंखों की खामोशी और अभिनय की गहराई सीधे दिल को छू जाती थी। उन्हें यूं ही ट्रेजेडी क्वीन नहीं कहा गया, शरत और सफलता के बीच भी उनके जीवन का अकेलापन उनकी शायरी और अदाकारी में साफ झलक था। आज भी उनका नाम संवेदनाओं और दर्द की एक अमर दास्तान बनकर याद किया जाता है। लेकिन उनकी आप जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखेंगे श्रोताओं, तो वो इतनी खूबसूरत नजर आती हैं मीना कुमारी की, और उनका नृत्य भी जैसा कि आपने इस गीत में भी देखा बड़ा ही खूबसूरत है। तो मीना कुमारी ठीक है ट्रेजेडी क्वीन के रूप में जानी तो जाती हैं, लेकिन उनकी जो मुस्कुराहट थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप चाहें तो जरूर लिखें इस बात को, क्योंकि वो मुस्कुराते बड़ी खूबसूरत लगती थी। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि कुछ गीत जो हैं वो समझ में आ रहे हैं, इतने गीत तो याद नहीं आ रहे फिर भी, लेकिन अब देखना है कि इनमें से कौन सा गीत हमारे जो है वो लिस्ट से मैच होता है। एक और श्रोता लिखती हैं कि इनकी फिल्में केवल देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। वो हर पीढ़ी को ये सिखाती हैं कि महान अभिनय ऊंची आवाज या भव्य दृश्यों से नहीं बल्कि आंखों में उतर आए सच्चे एहसासों से जन्म लेता है। मीना कुमारी जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी शायरी, उनकी खामोशी और उनके अमर किरदार हमेशा ये एहसास दिलाते रहेंगे कि कुछ कलाकार समय से विदा होकर भी कभी विदा नहीं होते। और आप तो समझ ही चुके हैं कि मीना कुमारी एक मशहूर शायरा भी थी और मकबूल भी थी, तो वो किस नाम से शायरी किया करती थी? क्योंकि मीना कुमारी तो वो लिखती नहीं थी और उनका एक और नाम था, बल्कि यूं कहें कि दो नाम थे। तो ये नाम अगर आपको याद आए तो आप जरूर बताएं। एक और श्रोता लिखती हैं कि ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर वो पाकीज़ा की हसीन जिनकी अंदाज वो पाकीज़ा की हसीना जिनका अंदाज बयां दिल को छू जाता था, चांद सी उनकी सूरत और उनकी जो हर कोई जो अदा होती है, लगता नहीं कि दिल मेरा उजड़े दयार में। और कुछ फिल्मों के गीत भी इन्होंने लिखे हैं, झील सी आंखें, और उनके बारे में बहुत कुछ इन्होंने अपने शब्दों से बयां करने की कोशिश की है। इस गीत में, इस फिल्म में मीना कुमारी के जो अभिनेता हैं उनको आपको पहचानना है, यानी को स्टार।

अभिनेता सुनील दत्त के साथ ये फिल्म थी मैं चुप रहूंगी। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में राजन कृष्ण का लिखा ये गीत आपने सुना। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस फिल्म के बारे में, इस गीत के बारे में, जो इन गीतों के बारे में जो मीना कुमारी पर फिल्माया गया उसके बारे में लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं, दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म में उनका किरदार बहुत कम बोलता है, लेकिन करुणा के मन की पीड़ा मौन, समर्पण और त्याग उनकी आंखों से स्पष्ट झलकते हैं। बिना कुछ कहे भी राजकुमार सुशील के प्रति उनके प्रेम और समर्पण को स्क्रीन पर महसूस किया जा सकता है। जी हाँ, तो श्रोताओं, मीना कुमारी जी पर तो बहुत सारे डायलॉग हैं, आपको उन पर फिल्माया गया कौन सा डायलॉग सबसे अच्छा लगता है? एक और श्रोता ने लिखा है फिल्म के बारे में कि अजीब दास्तां है, लता मंगेशकर जी की आवाज और ऑन स्क्रीन उदासी और प्रेम की पीड़ा को अमर आवाज देता है ये गीत। इस गीत के बारे में इन्होंने लिखा है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझसे कोई ये पूछे कि मीना कुमारी जी की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, मेरा जवाब होगा मुझे उनकी सभी फिल्में बहुत अच्छी और लाजवाब लगती हैं। जी हाँ, मीना कुमारी जी ऐसी ही थी जो अपने आप में बहुत कह सकते हैं कि अलग पहचान की थी।

फिल्म का प्रसिद्ध गीत चलते चलते रिकॉर्ड किया जा रहा था, तब स्टूडियो में ये गीत सुनकर मीना कुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि ये गीत सिर्फ साहिबजान का नहीं बल्कि उनके अपने दिल की गहराइयों की आवाज, और उन्होंने संगीतकार गुलाम मोहम्मद को बधाई दी। तो ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं श्रोताओं जो मीना कुमारी जी के बारे में जुड़ जाती हैं। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि पाकीज़ा मूवी का गीत जो है वो अच्छा लगता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, पूरा जीवन इसी तरह खत्म हो गया, चाहे पाकीज़ा हो या साहब बीबी और गुलाम। तो साहब बीबी और गुलाम फिल्म की कुछ यादें आपके साथ हों तो आप उसे बांट सकते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं फिल्म मैं चुप रहूंगी, मीना कुमारी हैं इसमें, सुनील दत्त हैं इसमें, और तमाम इन्होंने डिटेल लिखी है उन गीतों की, उन उस फिल्म की। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी पर आज का कार्यक्रम है और मैं बचपन से ही मीना कुमारी जी का फैन रहा हूं। तो आपने कौन कौन सी फिल्में उनकी देखी हैं, और हमने आपसे पूछा भी था कि कौन सा वो प्यारा सा डायलॉग है जो मीना कुमारी पर फिल्माया गया और आपको बहुत पसंद है और इस गीत को आपको पहचानना है।

मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गीत था आजाद फिल्म से। आजाद फिल्म में उनके को स्टार कौन थे श्रोताओं? और अगर आप किसी जो खास उनके को स्टार रहे किसके साथ, यानी आप जोड़ी मीना कुमारी की पसंद करते थे या किन के साथ वो सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी, ये आप बताना चाहिए?

हैं तो बता सकते हैं। हमारी श्रोता लिखती हैं कि मीना कुमारी को अपने अभिनय के लिए कई बड़े सम्मान मिले। उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। बैजू बावरा, परिणीता, साहब बीवी और गुलाम और काजल जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। एक और श्रोता लिखती है, मीना जी की छोटी छोटी मगर नशीली आंखें बेहद खूबसूरत लगती थी। वो दर्द से भरी आंखें जैसे बहुत कुछ कह रही हों, उनको मेरा शत शत नमन। एक और श्रोता ने लिखा है, आपने मीना कुमारी पर फिल्माए गए गीतों में सबसे पसंदीदा गीत की चॉइस पूछी है, जो गीत दिल एक मंदिर फिल्म से है और हमें सबसे ज्यादा पसंद है, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पाकीज़ा का संवाद जो है वो आपके पांव मैंने देखे, बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पे मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। ज्यादातर श्रोताओं ने इसी डायलॉग के बारे में लिखा है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मीना कुमारी अपने कलामों में नाज नाम का इस्तेमाल करती थीं और उनके निधन के बाद उनकी कविताओं का संग्रह तन्हा चांद नाम से प्रकाशित हुआ। जी हाँ, नाज नाम से वो लिखा करती थीं। और हमारी एक और श्रोता लिखते हैं कि मीना कुमारी को हंसते हुए बहुत कम देखा गया है, अतः मुस्कुराहट पर टिप्पणी मुश्किल है। वैसे जो गीत हमने आपको सुनवाया आजाद फिल्म का, उसमें तो मीना कुमारी बहुत ही प्यारी नजर आती हैं और खिलखिलाती हुई नजर आती हैं। तो आपको बताना है कि जब वो छोटी थी यानी बाल कलाकार के तौर पर उनकी पहली कौन सी फिल्म थी, और फिल्म जो रिलीज हुई और रातों रात जिससे मीना कुमारी स्टार बन गई, ये फिल्म कौन सी थी। आपकी सहूलियत के लिए बता दें, 1952 में रिलीज ये फिल्म थी।

ये आवाज आपको पहचाननी है श्रोताओं की। इस गीत को किसने गाया? नूरजहां फिल्म का ये गीत था, शकील बदायूं का लिखा, रोशन की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि दिलीप कुमार जी को ट्रेजेडी किंग नायक के रूप में प्राप्त था, ये कह सकते हैं कि तमगा, कि मीना कुमारी जी को नायिका के रूप में प्राप्त था। जितनी आसानी से वो किसी किरदार को बखूबी निभाती थी, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। छोटी बहू, साहब बीवी और गुलाम फिल्म का दर्द उनकी भावना को जिस तरह से प्रकट करता है वो बहुत ही सराहनीय है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुछ चेहरे समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, कुछ चेहरे यादों की चांदनी बनकर हमेशा चमकते रहते हैं। मीना कुमारी उन्हीं विरली शख्सियतों में से एक थी। उनकी मुस्कान में मासूमियत, आंखों में अनकहे जज्बात और अदाकारी में ऐसी सच्चाई थी कि हर किरदार एक एहसास बन गया। शायद इसीलिए आज भी उनका नाम आते ही दिल में गजल सी नरमी और पुराने गीतों की मधुर गूंज उतर जाती है। अभिनेता राजकुमार के साथ मीना कुमारी की कितनी फिल्में हैं श्रोताओं? इस फिल्म में एक और मुख्य कलाकार हैं जो मीना कुमारी के साथ हैं, वो कौन है?

दिल एक मंदिर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, मीना कुमारी पर फिल्माया गया और इस फिल्म में दो कलाकार थे, राजकुमार और राजेंद्र कुमार। यही हमने आपसे पूछा था और हमारे श्रोताओं ने बताया भी है। और बतौर बाल कलाकार जो मीना कुमारी की फिल्म आई पहली, ये थी लेदर फेस, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं ने लिखा है। बेबी मीना के नाम से प्रसिद्ध हुई वो। 1946 में बच्चों का खेल, 1952 में बैजू बावरा फिल्म थी जिसके बारे में हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये फिल्म ऐसी थी जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। 1953 में रिलीज हुई परिणीता, ये भी व्यावसायिक रूप से सफल थी। और बैजू बावरा फिल्म में क्या किरदार था श्रोताओ मीना कुमारी का, ये आप जरूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज मीना कुमारी जी का जन्मदिन है, उनको अभिवादन करते हुए सुरीला सफर कार्यक्रम में ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के साथ कहना चाहूंगा कि उनकी जो फिल्में थी उनमें आजाद कोहिनूर बहुत कामयाब रही। आज इन दो सितारों का जमीन पर मिलन है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि दुनिया के खूबसूरत ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी को समर्पित है कार्यक्रम। उनकी फिल्मों में संवाद अदायगी, अभिनय और ऐसा तालमेल था कि उनकी आवाज में खास खनक और रूहानी दर्द छिपा हुआ था जो साधारण संवादों को भी असरदार बना देती थी। वो केवल मुंह से संवाद नहीं करती बोलती बल्कि उनका पूरा जो शरीर था, उनकी आंखें अर्थों का बयां करती थी। और प्रतिभा के बारे में लिखते हैं कि उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो कोई अभिनय नहीं बल्कि अपने दिल की बातों को साझा कर रही हैं। फिल्म बैजू बावरा में कौन थे मीना कुमारी के साथ।

भारत भूषण मीना कुमारी के साथ थे श्रोताओ, और इसकी इस फिल्म के जो गीत थे वो भी बहुत मकबूल हुए थे। वैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि मीना कुमारी की किसी एक फिल्म को अगर आप चुनना चाहें जो आपको सबसे अच्छी लगती है, तो उस फिल्म का नाम आपको बताना है जो आपको सबसे अच्छी लगती है। एक श्रोता ने लिखा है कि मीना कुमारी भले ही ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर हुई, लेकिन उनकी कॉमेडी भी बहुत अच्छी थी। तब हालांकि उन्हें कॉमिक रोल करने का बहुत कम मौका मिला। जी हां, मीना कुमारी कॉमेडी रोल में भी बहुत अच्छी लगती थी, और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें उनका किरदार बहुत ही चुलबुला है, खासकर उनकी जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हैं। तो उनकी कलर फिल्में भी हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में भी हैं। वो उनकी कौन सी जो फिल्में हैं वो आपको ज्यादा अच्छी लगती हैं, यानी मीना कुमारी किन फिल्मों में ज्यादा अच्छी लगती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में ज्यादा सुंदर लगती हैं आपको या कलर में? और आपको कोई एक फिल्म बतानी है

मीना कुमारी जी बड़ी ही खूबसूरत लगती हैं इस गीत में, यानी इस गजल में। श्रोताओं, नगमा शेर की ये सौगात उन्होंने किसके लिए पेश की फिल्म में, ये आपको बताना है। और ये भी आपको बताना है कि मीना कुमारी की आखिरी फिल्म कौन सी थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मीना कुमारी जी को समर्पित ये कार्यक्रम उनसे जुड़ी सत्य घटना का जिक्र करना चाहूंगा, जरूरी हो गया है, जिससे मीना कुमारी जी की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बात फिल्म पाकिजा की शूटिंग के दिनों की है। मीना जी और कमाल अमरोही जी की कार का मध्य प्रदेश के शिवपुरी के जंगलों

में पेट्रोल खत्म हो गया, तो कुछ इन्होंने जो है वो इनकी बातें लिखी है उस समय की, जो शायद ये वाकया इनके साथ हुआ होगा। और अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं उसमें ये बताना है आपको कि ये गीत एक और गायक की आवाज में है, ये फिल्म कौन सी है और वो आवाज कौन सी है, मीना कुमारी जी की आखिरी फिल्म कौन सी है।

इस गीत को मोहम्मद रफी साहब ने भी गाया है श्रोताओं, और आप सुन रहे थे भीगीरात फिल्म का ये गीत। हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा था कि मीना कुमारी जी को तो मुस्कुराते हुए कम ही देखा है, तो फिर आप इस गीत के बारे में क्या कहेंगे जो आपने सुना अभी अभी? कितनी प्यारी लगती हैं मीना कुमारी जी इस गीत में, ये आप जब इसका पिक्चराइजेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो मीना कुमारी की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में ज्यादा अच्छी लगती हैं, जिनमें उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है, तो वो अपने चेहरे के भावों से भी जबरदस्त एक्टिंग करती थी, ऐसा लगता था जैसे वो किरदार को जी रही हूं।

कोहिनूर फिल्म के इस गीत की झलक आपने सुनी श्रोताओ, और ये गीत किस फिल्म का है इसकी भी एक झलक आपको सुनवा देते हैं।

खूबसूरत फिल्मों के अलावा श्रोताओं, भाभी की चूड़ियां, जिंदगी और ख्वाब, प्यार का सागर, आजाद, बहाना, चिराग कहां, रोशनी कहां, यहूदी की लड़की, मिस मैरी, शारदा, फूल और पत्थर, ये और फिल्में थी।

हमारी श्रोता ने लिखा है कि साहब बीवी और गुलाम एक बहुत ही सराहनीय मार्मिक भावपूर्ण फिल्म है, जहां तक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के शौकीन लोग हैं इसे बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ, इसमें बहुत सुंदर लगती है मीना कुमारी। सिने जगत की मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी के गीत आज शामिल थे सुरीला सफर कार्यक्रम में। श्रोताओं, आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरीला सफर ये कार्यक्रम अब यहीं सम्पन्न

दोस्तों, त्रिवेणी की धाराएं आज मिल रही हैं बारिश की बूंदों पर। थोड़ी खुशी, थोड़ा गम अपने आगोश में समेटे बारिश जब आती है तो गर्मी से निजात दिलाती है, नहीं आती तो परेशानियों का पहाड़।

ठेल देती है धरती पर। लोग बूंद बूंद के लिए तरस उठते हैं। हर मौसम में छिपा होता है थोड़ा न थोड़ा कहर। ये प्रतीक है इंसानों का। हर इंसान में खामियां और अच्छाइयां होती हैं। स्वीकार कीजिए अच्छाइयां, दूर फेंकिए बुराइयां। बरसात के मौसम की खूबियों से खुशी पाइए, इसके कहर से बचने का उपाय सोचिए, तभी बरसात के मौसम की खूबसूरती को आप महसूस कर पाएंगे।

मखमल की चादर सी बिछ जाती है जब होती है बरसात। पानी से नहाए पेड़ पौधे हरे रंग की पोशाक पहनकर झूमने लगते हैं। क्या आपने सोचा है, अगर बारिश न हो तो जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं का क्या हो, जिनका जीवन यापन ही पेड़ पौधों और जलाशयों से होता है। अगर बारिश नहीं हो तो नदी तालाब सूख जाते हैं, जंगल के पशु पक्षी प्यासे ही दम तोड़ने लगते हैं। अब आप सोचेंगे, हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम पेड़ पौधों को जिंदा रख सकते हैं, नए पेड़ पौधों की नई पीढ़ी तैयार कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण हमारी तरह स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ पर्यावरण से संतुलित बारिश होगी। हम बरसात के गीत यूं गाएंगे।

बरसात के सुहाने मौसम का गुणगान करना और बारिश की खूबसूरती पर फिदा होना सिर्फ इतना काफी नहीं है, हम सबकी एक जरूरी जिम्मेदारी है बारिश के पानी को इकट्ठा कर संग्रह करना। वर्षा जल के संग्रहण के अंतर्गत घरों की छतों पर पड़ने वाले वर्षा जल को एकत्रीकरण के लिए बनी टंकियों से जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा पत्थर से विशेष तरह की नालियां बनाकर जल संग्रहण किया जाता है। खोद कर बनाए गए तालाबों का निर्माण, पत्थरों और सीमेंट से किनारा बनाकर बीच में गड्ढा खोद कर जल संग्रहण और भी बहुत सारे तरीके इजाद किए जा चुके हैं। चलिए खुद से पूछें, वर्षा जल के संग्रहण में हमारा अपना कितना योगदान है।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और

0: औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र की स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: का उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 ईयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
3: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2,738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में 90 करोड़ रुपए रहा, ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई, इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक रिपोर्ट।
4: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की

0: तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतुहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से एक से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा और खोर्धा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केंवझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माहे में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की

0: बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी, विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले चार दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था। इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। यह हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: आप सुन रहे थे फिल्म यहूदी में लता मंगेशकर और सखियों को शैलेंद्र के बोल थे शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

पत्रकार शकील बदायूं नी मौसकार हेमंत कुमार गीता दत्त की आवाज में साहब बीबी और गुलाम फिल्म का गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

फिल्म अर्धांगिनी में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला वसंत देसाई ने। और अब आपकी नजर कर रहे हैं दिल एक मंदिर फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल हैं शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: अलबेला फिल्म का गीत था लता मंगेशकर, चितलकर और साथियों की आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के लिखे और सी राम चंद्र के सुरबत के इस गीत के साथ ही श्रोताओं आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की,
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम मनचाहे गीत, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। वक्त दोपहर का, बारिशों की रिमझिम इन हल्की ठंडी फुहारों के साथ साथ लीजिए। आपके रेडियो सेट पर शुरू हो रहा है प्रोग्राम। श्रोताओं, आप ही के पसंदीदा गीतों का प्रोग्राम मन चाहे गीत, तो सुनिए प्रोग्राम। देखिए कहीं आपकी पसंद का कोई गीत तो नहीं। आज सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

सावन की ठंडी ठंडी फुहारों की तरह ये गीत हैं श्रोताओ, जो बंद हैं आपकी चिट्ठियों में, और उन्हीं में से ये गीत हमने आपको सुनवाया। दो रास्ते फिल्म का ये गीत था, जो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे। इस गीत को पसंद किया मालीवेस बीड शहर से किशोर उबाले, मंगला उबाले, और इस गीत में आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ से। श्रोताओं, आयलर नगर केतगांव से इसी गीत को पसंद किया भाऊ साहब नवथर, अक्षय चंदन, जय कुमार चंदन, सुचिता चंदन, और बसमत रोड परवणी से रणजीत कारेगांवकर, कंचन सृष्टि, समरजीत कारेगांवकर की ये फरमाइश थी। शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, पैरी पार्वती और राधा चंद्राकर की फरमाइश आपने सुनी।

राहुल देव बर्मन की तर्ज, गुलजार के बोल, किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, फिल्म आंधी में आप सुन रहे थे ये गीत आंधी का। और बागपत उत्तर प्रदेश से इस गीत को पसंद किया संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया ने। वारुंगा फाटा जिला हिंगोली से वैष्णवी, अश्विनी, कुंडलिक और पांडु रंग की ये फरमाइश थी। श्रीकांत श्रीवास्तव, श्रीमती प्रमिला श्रीवास्तव, ये दो नाम हैं पीरनगर गाजीपुर के। और इसी गीत को सुनना चाहा बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव शशिकला, सुमेध कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल ने। और इसी गीत के लिए कानपुर उत्तर प्रदेश से फरमाइश आई अहमद और मान सिंह की। ये फरमाइश है ईदगाह कॉलोनी कानपुर उत्तर प्रदेश से। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मनचाही गीत।

मजरा सुल्तानपुरी के लिखे गीत की धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मोहम्मद रफी की आवाज में मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म के इस गीत को पसंद किया। न्यू मार्केट टीटी नगर भोपाल से अजय और शीतल ने और जीसीएफ स्टेट परेल लाइन से ये चिट्ठी आई है। इनके नाम हैं सुरेश राजपूत, सुमित, शानू, अभय राजपूत, मन्नत राजपूत, पुष्पा सुदेशना और निमो की ये फरमाइश है। शीतलानगर दुर्ग से शिव और भगवान चंद्राकर और नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केरव, ज्योति रानी और गुरमंत की ये फरमाइश थी।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत मेरे हमसफर। इस फिल्म का ये गीत है लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल हैं कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।

कालीगांव जाफराबाद से इस गीत को सुनना चाहते थे श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत संचित मोताला से कुमार प्रथमेश प्रणाली, कड़ा रोड से कुमारी सानवी देशमुख की ये फरमाइश थी और कुमार सरवत देशमुख भी यहीं से। विमल निकेतन अकोले की ये फरमाइश है। महेंद्र नागेश, पारस जयेश, ऋषभ संयम, सिद्धांत जैन और साक्षी जैन और इनके परिवार के सभी सदस्य मछली गोदाम कौदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ, प्रियंका, पूजा और ऋतु की फरमाइश आपने सुनी।

दो कलियां फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, सहल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। विनायक नगर निजामाबाद से इस गीत को सुनना चाहा ज्योति श्रीहरी, राजकमल, विनोद कुमार, रामानंद और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा, पूनम वर्मा ने। मोहाली पंजाब से ये पत्र आया है। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल की ये

0: लेकिन हम तो जानते हैं श्रोताओं के, हमारे श्रोताओं की नजरें कभी खफा नहीं हो सकती। मनचाहे गीत कार्यक्रम में आपके ढेरों पत्र आए और इसी तरह से आप पत्र लिखते रहिए, हमें रहता है आपके पत्रों का इंतजार। तो मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को कार्यक्रम मनचाहे गीत से।
1: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 0152240168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
2: मधुप शर्मा के निर्देशन में विविध भारती के स्टूडियो में 1966 में रिकॉर्ड किया गया था। आइए सुने नाटक विवाह का प्रस्ताव।

0: माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ दस्तक देकर ही अंदर चला आया।
1: और हम भी तुम्हें यूं ही बाहर नहीं जाने देंगे। आओ बैठो आइवन लोमोव।
0: धन्यवाद।
1: आइवन, तुमने तो हमें भुला ही दिया।
0: जी, एक उलझन के कारण मैं इधर आ नहीं पाया, इसके लिए बहुत लज्जित हूँ। लेकिन विश्वास कीजिए, आपकी याद सदा मेरे साथ रही।
1: ये तुम्हारा स्नेह है जो तुम हमें अपना समझते हो। मगर आइवन, आज खैर तो है। ये फर का नया कोट, ये रंग बिरंगी कराकली टोपी और ये सफेद दस्ताने, आज तुम जा कहाँ रहे हो?
0: जी कहीं भी तो नहीं। बात यह है कि मैं आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लाया हूँ।
1: अच्छा,
0: अब आपसे कैसे कहूँ?
1: तो और कौन कहेगा?
0: ये भी ठीक है, और कौन कहेगा? जी मैं ही कहूँगा, मैं ही कहूँगा। लेकिन थोड़ा पानी पिलवा दीजिए। हाँ, पहले मुझे
1: अभी लो।
0: मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। डरता हूं अगर आपने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया तो मेरा क्या होगा?
1: पानी।
0: धन्यवाद।
1: अब ये मुझसे कुछ रुपया उधार मांगेगा और मैं इसे अंगूठा दिखा

0: दिखा दूंगा।
1: देखिए, मैंने कई बार देखा है, महसूस किया है कि इस दुनिया में जितना आपको मेरा ख्याल रहता है, किसी को नहीं रहता। मैं आपके इस अपार स्नेह के योग्य तो नहीं हूं।
2: आइवन, आज तो तुम्हारी बातें भी तुम्हारी पोशाक की तरह बिल्कुल नहीं है।
1: जी जी जी, ये बात नहीं है।
2: तो वो बात क्या है?
1: वो बात ये है।
2: हाँ,
1: अभी कहता हूँ।
2: कहो।
1: बस मैं कह नहीं जा रहा हूँ।
2: अच्छा,
1: जहाँ हालत तक तो आ गई है
2: तो जबान पर ले आओ।
1: अच्छा,
2: शाबाश।
1: अपनी बेटी नथालिया का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए।
2: आइवन, मेरे प्यारे आइवन, एक बार फिर कहो
1: जी।
2: कहीं मेरे कानों ने वो तो नहीं सुन लिया जो पिछले कई वर्षों से मेरे दिल में था? कहो ना आइवन।
1: फिर किस मुंह से कहूँ? कहाँ आप इतने बड़े जमींदार और कहाँ मैं आपका एक पड़ोसी छोटा सा जागीरदार।
2: ऐसा न कहो आइवन, ऐसा न कहो। जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, लेकिन तुम पहले मेरे गले से लग जाओ। मैंने सदा तुम्हें अपनी बेटी नितालिया की तरह चाहा। अरे, मैं अभी तक यहीं क्यों खड़ा हूँ? आइवन, तुमने देखा, मारे खुशी के मैं ये भी भूल गया कि मुझे नितालिया को तुम्हारे आने की खबर करनी चाहिए।
1: तो क्या नितालिया मुझे पसंद कर लेगी?
2: क्या कहते हो आइवन, तुम जैसे स्वस्थ सुंदर और नए नए कोट पहनने वाले गुलगुले जवान को भला कौन पसंद नहीं करेगा? मैं अभी नितालिया को भेजता हूं।
1: जी। चोबोकॉप चले गए, अब नितालिया आएगी।
2: ये क्या?
1: अरे, मैं तो सिर से पांव तक कांप रहा हूं। अरे बाप, मेरा सारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हुआ जा रहा है।
2: ये क्या?
1: मेरे होंठ कांप रहे हैं, मेरी मेरी भाई आंख फड़क रही है।
3: अरे, यहाँ तो आइवन लोमो विराजमान है।
1: आपको आपको आश्चर्य हुआ कुमारी नितालिया?
3: जी हाँ।
1: क्या?
3: आप पर नहीं, बाबा की बात पर।
1: बाबा की बात पर?
3: जी हाँ, बाबा बोले कोई मटर खरीदने आया है।
1: ओह।
3: और मैं जल्दी में इन मैले कपड़ों में ही यहाँ चली आई। अंदर आंगन में मटर की फलियों में से दाने निकाल रही थी।
1: जी।
3: आपके लिए कुछ खाने को लाऊं?
1: जी जी जी, आप कष्ट न करें, मैंने अभी खाना खाया है। आप कृपया बैठ जाएं तो।
3: लीजिए, बैठ गई।
1: जी।
3: आज तो आप अपने घर से खूब बन ठन कर निकले हैं।
1: जी।
3: सच, इन नए कपड़ों में तो आप देखने में बहुत भले लगते हैं।
1: कुमारी नितालिया।
3: जी।
1: मेरी मेरी मेरी आपसे प्रार्थना है।
3: कहिए।
1: जी, मैं आज बहुत ठंड पड़ रही है,
3: आपके लिए कंबल लाऊं?
1: जी नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता था।
3: बात क्या है? आप इस तरह घबरा क्यों रही हैं?
1: देखिए कुमारी मिथालिया, मैं आपके बाबा को तब से जानता हूँ जब आप अभी पैदा भी नहीं हुई थी, और ये तो आप भी जानती हैं कि आज मैं जिस जागीर का मालिक हूँ वो मुझे मेरे नाना नानी से मिली थी। मेरा मतलब है, मैं कहना ये चाहता था कि मेरे नाना नानी भी आपके बाबा को बहुत चाहते थे, और आज भी हमारे घरों के आपसी संबंध बड़े अच्छे हैं। देखिए ना, आपके घर की दीवार मेरे घर की दीवार के साथ लगती है, आपके खेतों के साथ मेरे खेत हैं, आपकी सफेदा जमीन के किनारे मेरा चेरी का बगीचा खड़ा है।
3: क्षमा कीजिए
1: जी,
3: क्या वो चेरी का बगीचा आपका है?
1: जी हाँ, क्यों?
3: यूं नहीं, सोच कर बताइए।
1: आप भी कमाल करती हैं, भला इसे सोचने की कौन सी बात है? और फिर क्या मेरे सोचने पर मेरा वो बगीचा किसी दूसरे का बन जाएगा?
3: लेकिन जो बगीचा हो ही दूसरे का, वो आपका कैसे बन सकता है?
1: मैं समझा नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
3: इसलिए कि वो बागीचा हमारा है।
1: अजी, मैं चेरी को उस बागीचे का जिक्र कर रहा हूँ जो आज तक कभी हरा नहीं हुआ, जिसके एक सिरे पर आपकी सफेदा जमीन है और दूसरे सिरे पर खाई है।
3: जी हाँ, मैं भी उसी बागीचे के लिए कह रही हूँ कि वो हमारा है।
1: कमाल है, ये तो मैं आज ही सुन रहा हूँ कि वो बागीचा आपका है।
3: और मैंने भी आज पहली बार सुना कि वो आपका है।
1: लेकिन मेरे बगीचे पर आप अपना कब्जा कैसे जता सकती हैं?
3: अरे, मगर वो बागीचा आपका कब से हुआ?
1: जब से मैंने होश संभाला।
3: फिर जब से आपने होश संभाला है, आप झूठ को सच समझ रहे हैं।
1: जी नहीं, आप अब सच को झूठ समझ रही हैं। देखिए कुमारी नितालिया, मेरे पास ऐसे कागजात हैं जिनमें यह साफ साफ लिखा है कि मेरी नानी की दादी ने वो बागीचा आपके दादा के काश्तकारों को बिना पट्टा लिखवाए खेती करने के लिए दिया था, और आपके दादा 40 साल तक हमारी उस जमीन की कमाई खाते रहे, और फिर आप ही की तरह जब आपके दादा ने भी हमारी उस जमीन का मालिक बनने की कोशिश की तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी।
3: देखिए,

0: नहीं हूँ जो मैं आपकी इस मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास कर लूं।
1: मैं जानता हूँ कुमारी निताली, आप इतनी बुद्धिमान भी नहीं है जो किसी दूसरे की संपत्ति पर अपना हक जताना छोड़ देंगी।
0: आइवन, इस प्रशंसा के योग्य केवल आप हैं।
1: जी,
0: आपका मुंह बंद करने के लिए मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि वो सूखा सड़ा बागीचा जिसकी कीमत 300 रूबल से किसी भी हालत में ज्यादा नहीं है, मैं आपको भेंट कर सकती
1: हूँ। कुमारी निताली, मैं आपकी उदारता का कायल हूँ, लेकिन आपको मेरी ही संपत्ति मुझे भेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। वो बगीचा तो मैं आपको भेंट कर सकता हूँ, मगर अब प्रश्न सिद्धांत का है, न्याय का है।
0: अन्याय भी ये है कि न्याय आप कर रहे हैं। 300 साल से जो बागीचा हमारे अधिकार में चला आ रहा है, आज उसे आप अपना बता रहे हैं।
1: फिर वही बात, आप किसी दूसरे की सुनती भी तो नहीं है। कुमारी निकाल गया, हुआ यूं था कि आपके परदादा के काश्तकारों ने मेरी नानी की दादी को मकान बनाने के लिए ईंटें पकाकर दी थी, इसलिए कुछ बख्शीश के तौर पर मेरी नानी की दादी ने उन्हें
0: फिर वही दादी की नानी, नाना के दादा। अब मैं आपसे और कितनी बार कहूं कि वो बागीचा हमारा है, हमारा
1: जी
0: है।
1: नहीं जी, नहीं जी, नहीं, वो मेरा है। आप सुनिए तो, वो हुआ यूं था।
0: आइवन, अगर आप लगातार 2 दिन तक इसी तरह बहस करते रहेंगे और अपने घर से एक बढ़िया कोट पहनकर आते रहेंगे तो भी ये बागीचा हमारा ही रहेगा।
1: देखा है ना सीना जोरी, कुमारी निकालिया, मैंने आज तक कभी किसी की संपत्ति पर अपना हक नहीं जताया, मैंने आज तक कभी किसी की जमीन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश नहीं की।
0: इसीलिए आप अपनी ईमानदारी का सिला हमसे वसूल करना चाहते हैं?
1: ओ, मेरे गले में कांटे उगाए हैं। ठहरिए, जरा पानी पी लूं तो बताता हूँ आपको। मैं फिर कहता हूँ कि वो बागीचा मेरा है, मेरा है।
0: ये चीख आपकी है, मगर बागीचा हमारा है।
1: जी नहीं, वो मेरा है।
0: वो बगीचा हमारा है और मैं आज ही अपने कारिंदों को वहाँ की सारी घास काटने के लिए भेजती हूँ।
1: क्या?
0: हाँ, मेरे आदमी अभी वहाँ पहुँच जाएंगे।
1: तो कान खोल कर सुन लीजिए, अगर मेरी धरती पर किसी ने कदम रखा तो मैं उसकी खाल में भूस भरवा दूंगा।
0: इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने अंजाम से वाकिफ हैं?
1: मैं कहता हूँ इन बातों में कुछ नहीं रखा। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो बागीचा मेरा है, मेरा है, मेरा है।
0: आइवन, अगर ये घर मेरा ना होता तो आप इससे भी कहीं ज्यादा ऊंची आवाज में चीख सकते थे, चिल्ला सकते थे, दहाड़ सकते थे।
1: कुमारी निताली, कुमारी निताली, अगर मुझे दिल का रोग ना होता, अगर मेरे पुट्ठों में दर्द ना होता तो आज मैं आपको बता देता कि किसी की संपत्ति पर आंख रखने का क्या परिणाम होता है। देखिए, अब भी भलाई इसी में है कि सीधी तरह से मान लीजिए कि वो बागीचा मेरा है।
0: नहीं, हमारा है।
1: जी नहीं, मेरा है।
0: हमारा है।
1: मैं कहता हूँ मेरा है।
2: जी क्या हो रहा है
0: बाबा? आप जरा इनकी समझ में ये बिठाइए कि हमारा वो चेरी का बगीचा किसका है?
2: हमारा है और किसका?
1: आप अपनी बेटी की बोली में बोल तो रहे हैं, मगर कुछ पता भी है कि मेरी नानी की दादी ने यह बगीचा आपके दादा के काश्तकारों को थोड़ी सी मुद्दत के लिए ऐसे ही खेती करने के लिए दिया था और फिर 40 वर्ष तक वे अपना पेट और आपके दादा का घर भरते रहे।
2: आइवन, तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि उन काश्तकारों ने तुम्हारी दादी को उस बगीचे के पट्टे की सारी रकम चुका दी थी। विश्वास न हो तो गांव के पटवारी से या तहसीलदार की कचहरी से जाकर मालूम कर लो कि उस जमीन का लगान आज तक कौन भरता रहा।
1: फिर तो आप सरकार को भी धोखा देते रहे।
2: धोखा? हाँ, अपनी जमीन का लगान तुमसे सरकारी खजाने में भरवा के हम तुम्हें अवश्य धोखा दे सकते थे,
0: लेकिन हमने ऐसा भी नहीं किया।
1: मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता कि वो बागीचा मेरा है और मेरे पास इसका सबूत है।
2: नहीं आइवन, तुम ये साबित नहीं कर सकते।
1: क्यों नहीं कर सकता?
2: आइवन, तुम इस भ्रम को अपने दिल से निकाल दो कि हम तुम्हारा वो बगीचा हड़प कर जाना चाहते हैं। और अगर तुमने यूं ही चिल्लपों मचाकर यह साबित करने की कोशिश की कि वो बगीचा तुम्हारा है तो मैं उसे तुम्हारे हवाले करने की बजाय अपने किसी काश्तकार को यूं ही दे।
1: जी हाँ, जी हाँ, क्यों नहीं। बेटी भेंट करने की बात कहती है और बाप किसी और को दे डालने की धमकी देता है। मैं पूछता हूँ, किसी दूसरे की संपत्ति को आप इस तरह कैसे लुटा सकते हैं? क्या अधिकार है आपको?
2: ये तो मैं ही जानता हूँ मुझे अधिकार है या नहीं, लेकिन तुम अपनी जबान को काबू में रखो। मैं ऊंची आवाज सुनने का आदी नहीं।
1: तो हो जाएंगे, अब आपका वास्ता मुझसे पड़ा है।
2: आइवन, यूं ही आवेश में मत आओ।
1: वाह वाह, आप तो पड़ोसी होने के नाते मेरा बागीचा हड़प कर जाएं और मैं आवेश में भी नहीं।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तुम चुप हो जाओ।
1: मैं तो जैसे आपके इस आदेश की प्रतीक्षा में ही था। मैं कह देता हूँ, आप मेरे पड़ोसी नहीं है, मेरे पड़ोस में रहने वाले डाकू है।
2: क्या कहा?
0: बाबा, बाबा, इन्होंने आपको डाकू कहा?
2: अब मैं इसे क्या कहूँ?
1: जो मैंने आपको कहा है आप वही अपनी बेटी से भी कहिए।
0: बाबा, आप कुछ कहने के बजाय कुछ कीजिए।
2: मैं कुछ करूँ?
0: हाँ।
2: लेकिन मैं क्या करूँ?
0: आप अपने कारिंदों से कहिए कि वो बागीचे की सारी घास खोद लाए।
1: खोद लाए? कुमारी निकालिया, घास खोद लाना इतना आसान नहीं है।
2: इस बारे में आप अधिकार से बात कर सकते हैं।
1: आप मेरी यूँ खिलना उड़ाइए, मैं अब इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा।
0: और जब इंसाफ होगा आप अदालत का दरवाजा तोड़ डालेंगे।
2: क्योंकि तुम इंसाफ उसे मानते हो जो इंसाफ के साथ खुद बड़ी बेइंसाफी।
1: हाँ, इसका फैसला अदालत

0: नहीं होगा।
1: आइवन, मैं तुम्हारी मुकदमेबाजी की लत से वाकिफ हूँ और मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पुरखों की सारी जिंदगियां अदालतों में ही।
0: देखे, मेरे पुरखों का अपमान मत कीजिए, उनकी ईमानदारी के चर्चे आज भी लोगों की जबान पर हैं। हाँ, आप अपने चचा की ईमानदारी का डंका जरूर बजाइए, जो गबन के अपराध में आज भी जेल में आटा पीस रहे
1: हैं। तुम्हारा तो दिमाग चल गया।
2: इनके घराने में ठीक किसका था?
1: हाँ, इसका दादा संकी।
0: दादा संकी था, आपकी माँ का भी तो ऊंट की तरह कोहान निकला हुआ था। मेरा दिल पानी।
1: अरे तुम्हारा तो बाप पत्तेबाज था, क्रॉसवर्ड पजल भरा करता था।
2: आपकी नानी के मुंह में जबान नहीं ततैया मिस थी और वह हर किसी को काटने को दौड़ती थी।
0: मेरी बहन ठंक था जनजान लगे और आप मीठी जबान से हर किसी का गला काट रहे हैं। और दिल को, और ये कौन नहीं जानता कि चुनाव से पहले मुझे कुछ नहीं सुझाई दे रहा, मेरी टोपी कहाँ है?
1: अरे तो मक्का, अरे भी,
0: लेकिन आपसे कोई मुकाबला नहीं है। ओ, मेरा दिल, यही मेरी टोपी, अब दरवाजा किधर है? मेरी टांग सुन हो गई।
1: घसीट कर ले जाओ अपने आप को यहाँ से।
0: हाँ, जा।
1: इतना और सुनते जाओ, हमारे घर फिर कभी पांव रखा तो हाथ से टांग से हाथ धो बैठोगे। हाँ,
2: और अब यहाँ से सीधे अदालत में ही जाना। हाँ,
1: चला गया कमीना कहीं का।
2: हमें इस रीच पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे सदा चौकन्ना रहना चाहिए।
1: और आस्तीन के सांप का हमें सर कुचल देना चाहिए।
2: हाँ, नहीं तो ये हमारी संपत्ति पर कुंडली मार कर बैठ जाएगा।
1: निर्लज्ज का दुस्साहस तो देखो।
3: बोला, आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ।
2: कैसा प्रस्ताव?
1: अरे ब्याह का प्रस्ताव, कमीना जलील गुंडा कहीं का मेरी बेटी से ब्याह करना चाहता था।
2: पहले क्यों नहीं बताया?
1: अरे मैं क्या बताता, तुमने खुद नहीं देखा कि वो रीच का बच्चा कैसा छैला बनकर आया?
2: वो मुझसे ब्याह करना चाहते थे।
0: अरे अरे क्या हुआ बेटी नितालिया, क्या हुआ?
2: बाबा बाबा, उन्हें बुला लाइए, अभी बुला लाइए।
0: क्या, अब उसे मैं बुलाने जाऊं?
2: हाँ बाबा, अभी जाइए, अभी जाइए बाबा। ओह, मेरा सर चकरा रहा है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है।
1: अरे मगर बेटी, अभी हमने उसे यहाँ से इतने शानदार स्वागत से निकाला और अब वो दोबारा यहाँ आने के लिए कभी नहीं मानेगा।
2: बाबा, आप अभी जाकर उन्हें किसी भी तरह मना लाइए, मैं उनके
1: अरे बेटी नितालिया, होश में आओ, ये क्या पागलपन है? हे भगवान, अब मैं कहाँ डूबने जाऊं?
2: इससे पहले उन्हें बुला लाइए।
1: जाता हूँ बाबा, जाता हूँ, जा रहा हूँ।
2: आज उन्होंने फर का कैसा बढ़िया कोट पहन रखा था, फिर भी हमने उनका ऐसा सम्मान किया, कौन जाने अब वो आएंगे भी या नहीं।
1: नितालिया बेटी, हेलो, अब तुम अच्छी हो जाओ, वो आ रहा है। कम वक्त भी सीढ़ियों पर ही था, मगर अब मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, अब मैं तुम्हारे मामले में कभी नहीं बोलूंगा, तुम जानो और वो जाने।
2: वो कब आएंगे?
1: अरे भाई, उसके पर नहीं, पैदल आ रहा है।
2: आप उन्हें उठा कर क्यों नहीं ले आए?
1: ओ भगवान, तुम एक अच्छे भले आदमी को बेटी का बाप क्यों बना देते हो? मेरी तो मिट्टी खराब हो गई।
2: कैसे?
1: तुम्हारे कारण पहले मैंने उसे जली कटी सुनाई, उसे अपमानित किया और फिर उसे खड़े खड़े अपने घर से बाहर निकाल दिया, और अब
2: क्या मेरे कारण?
1: और नहीं तो क्या?
2: बाबा, अब आप मेरे साथ वैसा व्यवहार ना कीजिए।
1: अच्छा बाबा, अच्छा, सारा दोष मेरा ही था। एक बेटी का बाप निर्दोष हो ही कैसे सकता है, और फिर वो भी अपनी बेटी की नजर में। लो, वो आ गया और मैं अपने कमरे में जा रहा हूं।
0: मेरा दिल बड़े शोरों से धड़क रहा है
2: और मेरे दिल को बड़ा चैन मिला है आपको यहाँ अपने पास देखकर।
0: वो बगीचा मेरा है।
2: जी हाँ, वो बगीचा सचमुच आप ही का है। आपके जाने के बाद मुझे याद आया,
0: मेरी टांगें सुन्न हो गई हैं, लेकिन वो बागीचा मेरी नानी की दादी से पहले भी हमारा था।
2: जी हाँ जी हाँ, हमसे भूल हो गई, आप कृपया क्षमा करते।
0: बात असूल की थी, सिद्धांत की थी, नहीं तो आप जाने सूखा हुआ बगीचा जो कभी हरा नहीं हुआ चीज ही क्या है।
2: आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, अब आप कोई और बात कीजिए।
0: वो तो ठीक है, लेकिन देखिए ना, इसके अतिरिक्त मेरे पास ऐसे कई प्रमाण पत्र हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि मेरी नानी की दादी ने आपके दादा के काश्तकारों को।
2: जाने दीजिए, मैं अपनी भूल पर पहले ही बहुत लज्जित हूँ। ये बात कैसे चलाऊं? आप शिकार खेलने के लिए कब जा रहे हैं?
0: मैं फसल की कटाई के बाद मैं मुर्गाबी का शिकार खेलने जाऊंगा, लेकिन अब मैं क्या शिकार खेलूंगा?
2: क्यों?
0: अपने डब्बू को तो आपने देख ही रखा है ना, उस बेजबान की अब टांग भी टूट गई है।
2: ये तो बहुत बुरा हुआ। मगर उसकी टांग टूट कैसे गई?
0: ठीक से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे डब्बू की टांग किसी कुत्ते ने ही तोड़ी है, क्योंकि कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है। और मेरे डब्बू की टांग क्या टूटी, मुझे यूं लगता है जैसे मेरी ही कमर टूट गई हो। मैंने उसे बड़े लाल प्यार से पाला था, और अब जब मुझे उसकी जरूरत थी वह बेचारा अपाहिज हो गया। भाग्य पर किसी का जोर नहीं चलता।
2: डब्बू आपने लिया किससे था?
0: अजी, ये पहले मेरो नोब के पास रहता था, तब ये अभी ढंग से भौंकना भी नहीं सीख पाया था कि इत्तफाक से इस पर मेरी नजर पड़ गई, और मैं इस पर अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो गया। उधर मेरो नोब इससे बिछुड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने मेरो नोब के सामने 125 रूबल का ढेर लगा दिया तो वो कुछ ना कह सका।
2: 125 रूबल?
0: हाँ, आपको अचंभा हुआ?
2: जी हाँ, इतने में तो हाथी आ जाता।
0: कुमारी निथालिया, मैं इसे हाथी का बच्चा ही समझ कर लाया था।
2: तब आपने कुत्ते के नहीं अपनी समझ के दाम चुकाए थे, नहीं तो मेरे बाबा मेरे लिए कालू 50 रूबल में लाए थे। और हमारा कालू आपके डब्बू से 1000 गुना अच्छा है।
0: मुझे तो इस पर भी संदेह है कि आपको 1000 तक गिनती आती है, नहीं तो आप अपने कालू का मेरे डब्बू से कभी मुकाबला नहीं करती।
2: मुकाबला हो ही कैसे सकता है, शेर का भेड़ से क्या मुकाबला।
0: जी
2: आइवन, हमारा कालू अभी बच्चा है। हाँ। एक बुरा कुत्ता बनने में उसे कुछ समय लगेगा, लेकिन अब भी हमारे सारे प्रांत में ऐसा कोई कुत्ता नहीं जो जीदारी और फुर्ती में हमारे कालू का सामना कर सके।
0: तो सुन लीजिए कुमारी निकालिया, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कालू का जबड़ा बहुत छोटा है, और ऐसे कुत्ते बच्चों की गेंद भी उठाकर नहीं ला सकते।
2: जबड़ा छोटा है?
0: जी,
2: ये बात भी मैंने आज पहली बार सुनी है।
0: विश्वास कीजिए, आपके कालू का निचला जबड़ा उसके ऊपर के जबड़े की अपेक्षा बहुत छोटा है।
2: क्या आपने उसे कभी नाप कर देखा है?
0: मैं अब नाप कर दिखा सकता हूँ, आप उससे अपनी टांग पर कटवाइए। वैसे मैं ये मानता हूँ कि ऐसे कुत्ते जिनके जबड़े छोटे होते हैं वे दौड़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन शिकार पर उनकी पकड़ अच्छी नहीं होती।
2: जरा ये भी फरमाइए, आपका वो लंगड़ा खाज का मारा डब्बू
0: जी
2: किस राजघराने में से है, स्कूल का दीपक है?
0: आपको जब जरूरत होगी तो मैं आपको उसका गोत्र तक बता दूंगा, उसकी जन्म कुंडली भी दिखा दूंगा। अभी तो इतना ही सहन कर लीजिए कि डब्बू उस किस्म का कुत्ता है जो अपने मालिक के लिए आर्थिक संकट की स्थिति में समुद्र से मोती निकाल कर ले आते हैं, और आपका वो कालू घर वालों को काटे और चोर के आने पर दुम दबा कर भागे।
2: स्वामी भक्ति की ऐसी परिभाषा केवल आप ही कर सकते हैं, मगर हमारा कालू ऐसा नहीं है।
0: ना ऐसा नहीं है तो ऐसा वैसा होगा?
2: आप होंगे। होंगे क्या, आप हैं
0: जी।
2: भला ये भी कोई बात है, पहले हमारे बगीचों को अपना बताया और अब अपने खाज मारे लंगड़े डब्बू को हमारे कालू से बढ़िया बता रहे हैं।
0: अच्छे को तो अच्छा कहा ही जाएगा।
2: लेकिन आप ऐसा कह नहीं रहे, आपका दिल मानता है कि हमारा कालू कुत्तों का बेताज बादशाह है, लेकिन आप फिर भी अपने लंगड़े की शान बघारे चले जा रहे हैं।
0: यही बात तो मैं अपने डब्बू और आपके बारे में भी तो कह सकता हूँ।
2: लेकिन सच क्या है?
0: आप ही कहिए, क्या आपके कुत्ते का जबड़ा छोटा नहीं?
2: कहाँ छोटा है?
0: छोटा है।
2: नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मेरा बस चले तो मैं आपके डब्बू को कमेटी वालों से गोली लगवा।
0: और मेरा बस चले तो मैं वही गोली। फिर डूबने लगा।
2: आपको कुत्तों के बारे में इतना ही पता नहीं है कि
0: ओह मेरा दिमाग फट रहा।

0: आप चुप हो जाइए।
1: जब तक आप ये ना मानेंगे कि हमारा कलू आपके डब्बू से हजार गुना बढ़िया है, मैं कभी चुप नहीं
0: हूँ। अगर यही बात है तो बेशक चिल्लाइए, चीखिए, लेकिन मैं आपके उस मरियल कुत्ते की शक्ल के मेमने को कुत्ता नहीं कहूंगा। अगर वो आपकी संगत में कुछ दिन और रह गया तो वो दिन दूर नहीं जब वो बावला हो जाएगा। ओ मेरा कंधा, मेरी आंखें, गणपति, गणपति, गणपति।
1: और आपका कुत्ता तो जैसे टांग तोड़वाकर अमर हो गया है और अब उसे कुछ होगा ही नहीं।
0: ओ मैं कहता हूँ खामोश हो जाइए, दुख से मेरा दिल फटा जा रहा है।
1: अब मैं चुप नहीं हूँ।
2: अरे अरे अरे, ये फिर क्या हो रहा है?
1: बाबा बाबा, आप सच सच कहिए, हमारा कालू अच्छा है या इनका लंगड़ा?
0: पहले आप ये बताइए, आपके कालू का जबड़ा छोटा है या नहीं? पक्षपात किए बिना कहिएगा कि कालू का जबड़ा छोटा है या नहीं।
2: है, लेकिन फिर क्या हुआ पता है? हमारे कालू जैसा बढ़िया कुत्ता सारे प्रांत में नहीं।
0: मेरे डब्बू को छोड़कर आप ऐसा दावा जरूर कर सकते हैं?
2: तुम्हारा डब्बू भी बड़ा गुणवान है। उसके कान खड़े और शरीर गठीला है, पिछली टांगे पतली लंबी सुडोल है, लेकिन उसमें दो ऐसी त्रुटियां हैं जिसके कारण उसे कुत्ता कहना एक अच्छी नस्ल के कुत्ते का अपमान करना।
0: देखिए देखिए देखिए, मुझे दिल की बीमारी है, वास्तविकता को झुटलाने की कोशिश न कीजिए। कुत्तों की वार्षिक दौड़ में मेरा डब्बू राजा साहब के कुत्ते के बराबर रहा था और आपका वो कालू दौड़ दौड़ कर पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया।
2: तो बेचारा और क्या करता, दौड़ शुरू होने से पहले राजा साहब के कारिंदे ने उसे हंटर जो मारा था।
0: अरे काश वो उसे गोली मार देता।
2: आइवन, ये मत भूलो कि तुम्हें दिल की बीमारी है। हाँ। और मुझे गुस्सा बहुत आता है। और गुस्से की हालत में मैं बुरा भला बल्कि
0: आप अपने कुत्ते की हिमायत में मुझे धमका रहे हैं। अरे मेरा दिल फिर बड़ा जोर तोड़ने लगा। अरे अरे मेरा दिल, अरे मेरा दिल,
1: अरे मेरा दिल, अरे मेरा दिल, अरे मेरा दिल। इस दिल से ये जंगल में शिकार खेलने जाएंगे बाबा। अजी आप, मैं कह रही हूँ रसोई घर में बैठकर मक्खियाँ मारा कीजिए।
2: मक्खियाँ उड़ाने के लिए कहो बेटी, इनका दिल बड़ा कमजोर है। आइवन, मैं तुम्हें जंगल में जाकर शिकार खेलने से रोकता नहीं हूँ। क्या पता कोई जानवर तुम्हारा शिकार बनने से पहले तुम्हें ही अपना शिकार बना डाले।
0: अरे शिकारी को जानवर अपना शिकार बना ले और जानवर को अपना शिकार मैं बना लूं, ऐसा भी हो सकता है अगर किसी रात आप मेरे साथ जंगल में शिकार खेलने चले।
2: आइवन, मुझसे ऐसी बातें कहते तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
0: जब आप मुझसे ऐसी बातें बड़े गर्व से कहते हैं तो मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए?
2: तुम्हारा तो सर फट
0: गया। देरी कितनी लगती है, लेकिन कारण भी तो बताइए।
2: एक मूर्ख क्या,
0: और जो स्वयं न समझ सके और दूसरों को समझा न सके उससे तो आप कुछ कहेंगे नहीं।
2: मैं कहता हूँ जहर उगलने से बाज आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा।
0: आप क्या सिर फाड़ेंगे, गलियों में बच्चे तक जानते हैं। अरे मेरी जान, आपकी पत्नी भरे बाजार में आपको पीट दिया करती थी। अरे मुझे टांग दो।
2: और तुम भी तो अपनी उस नौकरानी से छिपते फिरते हो।
0: मेरी टांग आ गई, मेरा दिल टूट गया। डॉक्टर, डॉक्टर,
2: कमीना, बेशर्म, गधा।
1: घोड़े पर सीढ़ी लगाए और स्वयं को शिकारी कहलवाए। पापा, पापा जरा देखिए तो इन्हें हुआ क्या है। आइवन, आइवन, बाबा आइवन चले गए।
3: क्या निताली, निताली, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो, तो मेरा दिल फिट नहीं रहा। बेटी तो मेरा एक काम करो।
1: क्या बाबा?
3: मुझे मेरा पिस्तौल ला दो।
1: जाने दीजिए बाबा, अब आप मरे को क्या मारेंगे?
3: अरे बेटी, मैं पिस्तौल अपने लिए मंगवा रहा हूँ।
1: अपने लिए?
3: हाँ, मैं आत्महत्या कर लूंगा।
1: नहीं नहीं नहीं बाबा, नहीं।
3: अरे पिस्तौल नहीं तो मुझे चाकू ही ला दो, मैं अपना गला काट लूंगा।
2: हाँ तो ना,
3: अरे आइवन तो अभी जिंदा है। आइवन
1: जिंदा है।
3: लो लो, पानी पी लो, पानी पी लो।
2: मैं कहाँ हूँ?
4: तुम जहन्नुम में हो जो तुम्हारे आने से पहले जन्नत थी। अपने घर से उठ के बैठो और नितालिया से ब्याह कर लो।
2: हाँ। क्या?
4: हाँ बाबा, हाँ, नितालिया ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है और वो तुम्हें बहुत चाहती है।
2: क्या सच?
4: चुप चुप। नितालिया बेटी, लाओ अपना हाथ इधर लाओ।
1: बाबा
4: आइवन
2: जी, ये
4: नितालिया का हाथ मैं तुम्हारे हाथ।

0: हाथ में देता है और अब तुम लोग मेरा पीछा छोड़ो।
1: ओ बाबा, मैं आपका किस्मत से शुक्रिया अदा करूं बाबा, मैं बिल्कुल अच्छा हो गया।
0: अच्छा?
1: जी हाँ। तो वो बात क्या थी? मुझे कुछ कुछ तो याद आ रही है
2: जी। मैं बता। मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
0: और मेरा भी जी का जंजाल कटा।
1: हाँ याद आ गई। ये आपको मानना पड़ेगा कि मेरा डब्बू आपके कालू से कई गुना बढ़िया है।
2: ये कई गुना घटिया है
1: जी। नहीं,
2: ये आपको मानना पड़ेगा।
1: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
2: मैं कहती हूँ घटिया है
1: जी। नहीं, मैं कहता हूँ बढ़िया है। आश्रम
0: की खुशी है तो अभी से।
1: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
2: बढ़िया नहीं है, घटिया है।
1: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
0: तुम लोग
1: जी है, मैं ही यहाँ पे।

अभी आप सुन रहे थे एंटन चेखव की रूसी कहानी द प्रपोजल का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर विवाह का प्रस्ताव। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे कामिनी कौशल, विनोद शर्मा और कमलाकर दाते। ये नाटक मधुप शर्मा के निर्देशन में विविध भारती के स्टूडियो में सन 1966 में रिकॉर्ड किया गया था। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज हम लेकर के आए हैं संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से एक मुलाकात।
2: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
3: तक प्रोग्रामिंग हो जाती है तो वो ऑलरेडी बज चुका है, अब उसको सुन के लोगों को बजाना है। समझ गए
4: जी।
3: हमारे वक्त ऐसा नहीं होता था
4: जी।
3: हमारे वक्त क्या, जैसे अभी गाना शुरू हुआ वो जैसे गोरी चोरी चोरी कहाँ जाए पता, तेरा टाका बीड़ा हमको है पता, कैसे आंखें लड़ी कैसे बात बड़ी, कैसे चुभा तुझे कुछ हुआ तुझे, हमको ना बनाना रे हमसे ना छुपाना रे, गोरी चोरी चोरी मेरी नींद गई मेरा चैन गया, कब जब होश ना था कुछ बात हुई, हाय मैं ये जैसे गया।
4: हाँ।
3: अब आंखों की बनी तनम को

0: कहां लाली गई। अब ये जो आता है
1: हाँ।
0: यहां से क्या होता है, हल्का सा टेम्पो बढ़ जाता है जब लाइफ होता है ना, धिंता का धिंता का। तो आज अगर हम लोगों ने जो लाइफ म्यूजिक बजाए हुए हैं उनको अगर आप क्लिक में लोगे वो हिला हुआ लगेगा, क्लिक में आ नहीं था। तो ये जो टेक्निक थी हमारी, तो जैसे वो गया, अगर किसी ने बढ़ाया रिदम तो बजाते बजाते एक जोश आता है ना अंदर से,
1: बिल्कुल।
0: तो जैसे आपने बजाया बजाया तो जैसे ही जोश आया तो कभी कभी कोई ओवर जोश हो जाता था, अरे कट कट कट कट कट दोबारा लेते हैं, तो इस तरीके से किसी ना किसी की हो जाती थी। और अक्सर क्या है कि जैसे कुछ फ्रेज लोग भूल जाते थे
1: जी,
0: तो हमारे वक्त जो लाइव म्यूजिशियन होते थे उसमें हल्का सा उतार चढ़ाव रहता था, टेम्पो की बात कर रहा हूं। आज क्या क्लिक के ऊपर है, वो हिलता नहीं है, इसीलिए आज जो सिंगर है ना वो बहुत बंधा हुआ गाता है। तो हम लोग क्या करते हैं आजकल, एक एक से दो बार एक्स्ट्रा रखते हैं उस फॉर द सिंगर, क्योंकि जैसे मैंने गाया वो गाएगा नहीं तो उसको थोड़ी जगह चाहिए कि सांस लेने के लिए या फील डालने के लिए, तो हम एक्स्ट्रा दो बार रख लेते हैं। फिर उसका जितना उसने गाया हमको जहां तक उसका चाहिए चाहिए, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बार हुआ वो हम कट करके वापस ज्वाइंट कर देते हैं। आज ये फैसिलिटी है, तो उसमें गाने में हम लोग ये कोशिश रखते हैं कि बार की, अमूमन हर आदमी को ये टेक्निक नहीं पता,
1: नहीं आती है। जी जी जी
0: जी
1: तो कोई एक गाना कितने दिनों में रिकॉर्ड हो जाता था उन दिनों 90s की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक गाने को रिकॉर्डिंग करने में आपको कितना दिन लगता था,
0: एक
1: या
0: दिन।
1: एक कलाकार कितना समय लेता था एक गाने की रिकॉर्डिंग?
0: एक दिन।
1: अच्छा,
0: एक दिन, एक मैं एक दिन में दो दो गाने किए मैंने। मैं एक फिल्म कर रहा था वो एक दिन में विथ सिंगर के, पहला गाना जब किया तो उसमें मोहम्मद अजीज जी और अलका याग्निक जी विथ कोरस ऑर्केस्ट्रा, मतलब कम से कम 100-125 म्यूजिशियन कोरस के साथ में, और सिंगर अपने रूम में, तो अलका जी और अपना ये मोहम्मद अजीज, वो 11:30-11 बजे के रिकॉर्डिंग करके 3:30 बजे 3:30-3 बजे तक उनका पैकअप हो गया। 4 बजे दूसरी शिफ्ट में आशा जी, अमित कुमार, वो भी लाइव 10:30 तक उनका भी पैकअप हो गया। तो कभी कभी हमने दो भी गाने किए हैं। और जब थोड़ा जब सक्सेस आ गई तो एक गाना दो दिन में भी किए हैं।
1: हाँ जी
0: तो वो ऐसा नहीं है, वो दो दिन में तो इसलिए हुआ क्योंकि एक दिन में पहले दिन फुल ऑर्केस्ट्रा हो गया, दूसरे दिन ये हो गया, क्योंकि बाद में टेक्नो जो साउंड आया ना ये थोड़ा टाइम लेने लग गया। क्योंकि देखिए जब आप कोई काम करते हैं तो आपको एक बात बता दें कि आपको वो उस चाल में चलना पड़ेगा साथ में। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोगों ने जितने भी गाने किए हैं अफलातून के या जो भी प्रोग्रामिंग होते थे, उसके साथ साथ हमारा ऑर्केस्ट्रा भी होता था
1: जी,
0: लाइव ऑर्केस्ट्रा भी, तो हम लोग पहले ट्रैक ले लेते थे, फिर ट्रैक ओपन करके इनके वॉइस जो कोरस, मतलब जितने ऑर्केस्ट्रा है कोरस है उनमें हेडफोन में उनको आता था, जो हमारा कीबोर्ड का जो प्रोग्रामिंग का है। अब जैसे आप देखिए मेरा गाना था ओले ओले, अब अफलातून ये 98 के करीब के गाने हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो हम लोगों ने उस वक्त से भी मतलब मॉडर्न थे हम लोग, जो आज भी हिट है।
1: तो अभिजीत साहब की आवाज में ये गाना रिकॉर्ड हुआ था?
0: हाँ, ये पहले किसी और के था, और अभिजीत आया था एक गाने की, एक लाइन गाने के लिए, लगी लगी है ये दिल की लगी ना समझो इसे दिल लगी। देखिए जब सक्सेस होना होता तो ईश्वर की कृपा होती है, उसने गाया और उसकी वॉइस क्वालिटी, और नो डाउट मेहनती लड़का तो था ही वो,
1: बिल्कुल।
0: उसने जी जान तोड़ के वो गाने को गाया ओले ओले गाने के बाद। अब वो गाना क्या हो गया कि मैं और पेमिला जी, मतलब मिसेस चोपड़ा,
1: पेमिला जी
0: तो अक्सर हम लोग जब भी बातचीत होए वो बोले नहीं वो सिंगर ठीक है, मैं बोला नहीं जी ये ठीक है, अभिजीत ठीक है, तो बोले नहीं दिलीप जी ये कुछ लाउड नहीं लग रहा। आखिर मैंने बोला सैफ की जो वॉइस का टोन है वो इसका टोन ज्यादा बेटर है,
1: मिलता है।
0: फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं की। तो एक बार हम लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे इतने में यश जी आ गए, यश जी आते हम दोनों चुप हो गए, तो हम दोनों को देखते यश जी समझ गए कि कुछ बात कर रहे थे, चुप हो गए। हाँ भाई क्या बात हो रही थी आपस में? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसे ही बात है। नहीं तो यश जी ने बोला, बोलो नहीं नहीं बोलो तानसेन क्या बात है? मैं बोला कुछ नहीं, बहन जी बोल रही है कि वो फलाना सिंगर है, और मैं बोला आप क्या चाह रहे हो? मैं बोला अभिजीत ज्यादा ठीक लगा। तो यश जी ने मेरी तरफ और प्रेम जी की तरफ देख के बोला, देखो प्रेम हम डायरेक्शन डिपार्टमेंट के हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं, ये हमारा काम है, म्यूजिक का हमारा नहीं है, म्यूजिक का

0: में मिल जाएगा का गाना इन्होंने बनाया है, तो ही वेरी इज नो वेरी वेल के इसमें कौन सा सिंगर है। अगर तानसेन बोल रहा है कि अभिजीत सही है तो अभिजीत सही है, वो हमको इसमें आपको बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए।
1: बहुत
0: तानसेन
1: बढ़िया,
0: जी अभिजीत का ही रखेंगे, इस तरीके से वो अभिजीत का रहेगा।
1: क्या बात, और बहुत शानदार गाना गाया उसने,
0: नहीं, बहुत अच्छा
1: आवाज
0: गाया,
1: में जो सैफ अली साहब की आवाज
0: सूट
1: थी
0: हुई, और
1: बिल्कुल स्वीट हुई।
0: नहीं, और अभिजीत ने मेहनत भी की।

0: क्या होता है, ऐसे ही कोई नहीं स्टार बन जाता,
1: जी
0: कुछ तो काबिलियत होती है।
1: जी
0: और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से लता दीदी का, उन्होंने आएगा आने वाले से कई पहले गाने गाए थे, पर जैसे उनका महल का गाना आया, आएगा, तो दीदी को लाइमलाइट में आना था आई।
1: जी।
0: तो आज इसी तरीके से सिंगर की जो जिंदगी है, कोई ना कोई गाना बना देता है।
1: बस उस
0: जी
1: पल का इंतजार होता है,
0: हाँ
1: जैसे आपकी जिंदगी बनी सुरमा भोपाली से, आईना से,
0: हाँ मगर
1: मतलब वो एक।
0: पहचान बनी ओले ओले से।
1: चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
0: एक गाना मुझे आर्य बर्मन जी का, मतलब एक गाना था चिंगारी कोई भर के,
1: हाँ, अमर प्रेम का।
0: अमर प्रेम का एक गाना है।

0: ये गाना मुझे दिल को इसलिए छूता है कि उसकी जो लय है, चिंगारी कोई, वो इतना लय, दबी हुई लय में गाना है। मगर जो बख्शी साहब ने लिखा, जो किशोर दा ने गाया और जो कंपोज हुआ, मैं समझ रहा हूं कि बस ये आइडियल चीजें हैं, ये हमारी स्कूल है। इसी गाने के हिसाब से मेरा टेम्पो मैंने रखा था, मेरा हम तुमसे ना कुछ कह पाए, हमने भी यहीं से एक टेम्पो लिया था। तो मैं चाहूंगा कि ये चिंगारी गाना आप सुनाएं।
1: जी बिल्कुल, सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: दिलीप जी, आपने जैसा कि कहा कि आर डी बर्मन साहब का ये गीत या किशोरदा की आवाज या आनंद बख्शी के बोल, क्या इन सभी लोगों से मिलना आपका हुआ कभी?
1: नहीं, किशोरदा के साथ तो ऐसा है, मेरा मुलाकात, किशोरदा उस वक्त जिंदा थे, और
0: और आर डी बर्मन साहब से या
1: आर डी जी के साथ तो इसने काफी काम किया। किशोरदा का तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक फिल्म थी हमारी, अमित जी गा रहे थे, अमित कुमार।
0: अमित कुमार?
1: तो अमित कुमार क्या किया, हमको नीचे बिठा के काफी देर तक आए नहीं। तो दादा उस वक्त दो बार घूमे, दादा घूमे तो मैं खड़ा होकर उनके पैर छूने के, बोले नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। सेन साहब के लड़के बहुत मतलब वो जो उनका स्टाइल है, अमित नहीं आया, अमित नहीं आया, इतने में अमित नहीं जाएगा। तो उनको बोला, देखो अमित, ये नॉर्मल संगीतकार नहीं है, ये बहुत बड़ा खानदान है, इनको वेट नहीं कराने का, टाइम से रखो। टाइम दिया तो टाइम, अभी इतनी देर से बैठे हैं नहीं है, आइंदा ध्यान रखना। वो मेरी मिट्टी, और हमारा एक गाना गाने वाले थे सुरमा भोपाली, मगर वो किसी कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं गा पाए, तो फिर वो गाना मोहम्मद अजीज ने गाया। तो ये जो लीजेंड लोग हुए ऐसे ही नहीं हुए। और गाना जब कोई चलता है, मैंने कहा ना कि सिंगर जो होता है वही उसको लेके चलता है, तो जितना अच्छा कंपोजिशन, जितनी अच्छी लिखावट थी, उतनी अच्छी फील भी इस गाने में, जो मुझे तो अच्छी लगी, शायद ऑडियंस को भी लगती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऐसे गाने हैं जिन्हें कभी भुलाया ही नहीं
1: और
0: जा
1: उसके
0: सकता।
1: बाद में मैं एक किस्सा सुनाऊं आपको, बख्शी साहब के साथ जब मैं काम करने लगा, पहली फिल्म उन्होंने की मेरे साथ तू चोर में सिपाही,
0: जी
1: तो जिसका वो गाना था, हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर, वो पिक्चर मेरी चली। फिर उसके बाद में एक पिक्चर थी हमारी भीष्मा, तो उसमें गाना उनका, बाकी गाने तो चले मगर एक गाना उनका बहुत चला, वो मेरे सीने में दिल मेरा डोले के पिंजरे में पोपट बोले। क्योंकि मैं देखिए जिन जिन लोगों के साथ मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं, कैफी आजमी साहब के साथ मैंने पिक्चर की थी जाना ना दिल से दूर,
0: जी
1: और नीरज साहब के साथ में एक पिक्चर की जाना ना दिल से दूर, विजय आनंद जी की, जो देवानंद जी की लास्ट पिक्चर थी एज ए हीरो, वो
0: हाँ
1: किसी कारण रिलीज नहीं हो पाई। विजय आनंद जी की भी लास्ट पिक्चर थी वो, और जिसमें नीरज साहब के गाने थे, कैफी आजमी साहब के गाने थे, एक गाना था उसमें, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया,
0: बहुत सुंदर
1: था
0: गाना।
1: कदम कदम पर इम्तहान, हर इम्तहान से गुजर गया। ये कैफी साहब का लिखा हुआ था, और नीरज साहब का लिखा हुआ था, जा

0: मेरे नूर।
1: क्या बात है।
0: इसका अंतरा सुनिए आप। आंखें बरसे बदरा बरसे, अग्नि ना कोई बुझाए,
1: वाह, वाह सुनो।
0: हाय।

जाना। तो ये बहुत भाग्यशाली रहा। फिर मैंने इनके साथ, जावेद अख्तर साहब के साथ फिल्म की, अर्जुन पंडित, जिसका एक गाना हमारा काफी पॉपुलर हुआ, हर कदम पर कोई कातिल है कहाँ जाए कोई। फिर असद भोपाली साहब के तो साथ की मैंने, सुरमा भोपाली, माया गोविंद जी के साथ एक मैंने काफी काम किए।

0: में एक हमारी पहली सीरियल है जिसको टैप टोन में नंबर वन का अवार्ड भी मिला है, वो थी फिल्म रमेश सिप्पी जी की किस्मत।
1: किस्मत।
0: हंसना है कभी रोना है, खोना है कभी पाना है, किस्मत का तो यही फसाना है।
1: गीतकार माया गोविंद के
0: माया
1: साथ आपने
0: गोविंद के
1: काम
0: साथ
1: किया है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम महिला गीतकार हैं, तो
0: नहीं,
1: माया
0: उनमें एक
1: गोविंद,
0: माया जी के अलावा एक रानी मलिक जी थी,
1: रानी मलिक थी जी।
0: बहुत अच्छी राइटर थी, काफी गाने उनके हिट हुए, मगर उनका एक गाना मेरे साथ काफी बड़ा हिट रहा, वो गाना था फिल्म मेहरबान का, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते
1: बहुत सुंदर गाना।
0: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। ये सोनू निगम जी का एज ए सिंगर फिल्म में खुद का गाया हुआ गाना पहला गाना था। इससे
1: अच्छा।
0: पहले उन्होंने अताउला के गाए थे, अच्छा जैसे ला दी रे तूने, रफी साहब के वर्जन गाए थे, मतलब एक होता है ना कि जिस गाने की मोहर लगे कि पहला गाना एज ए सिंगर
1: वो ये
0: वो
1: था।
0: ये था।
1: हाँ, तो क्या अनुभव रहा सोनू निगम के साथ काम करने का? आज तो वो इतने बड़े कलाकार के रूप में है, वो पहला गीत गाते समय क्या उनका वो रहा
0: नहीं वो
1: होगा?
0: गीत दरअसल उसका था भी नहीं, जब ये क्योंकि सोनू जी वहां काम करते थे और बच्चे ही थे, तो गुलशन जी को वो बोलते थे कि यार एक बार मुझे दिलीप सैन समीर सैन के यहाँ साथ में गाना है। तो गुलशन जी आए मेरे पास, बोला यार दिलीप जी एक काम करो, ये गाना जो बन रहा है ये सोनू से गवा लो। मैं कहा सर मिथुन चक्रवर्ती है, आयशा जुल का, मिथुन जी की चेहरे पे ये आवाज़ थोड़ी पतली लगेगी, मैं जाता हूँ शब्बीर या मोहम्मद अजीज कोई हो। नहीं नहीं नहीं नहीं आप सोनू से गवाइए, बेचना तो मुझे ही है। सोनू ने गाया, सोनू ने इतना अच्छा गाया, और सोनू के अंदर एक बात बहुत अच्छी है, वर्सेटाइल सिंगर तो है ही वो, मगर उसके अंदर एक कोई कुदरत की ऐसा जादू है कि उसको अगर बोल दो ना कि इसके अंदर ये भाव चाहिए तो भाव वो पैदा कर देता था। तो सोनू जी में बात तो है, तभी तो देखा आज सुपरस्टार है वो।
1: जी। तो एक गाना सुन लेते हैं, और कौन सा गाना?
0: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना इसी पिक्चर में धीरे

0: इतना गहरा अनुभव आपका रहा है, इतने सारे कलाकारों के साथ, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सभी के साथ आपने काम किया है और बहुत सफल गाने आपने दिए हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपकी चॉइस या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की चॉइस अलग रही हो और आपको एडजस्ट करना पड़ा हो और कोई फिर एक बहुत ही शानदार गीत निकल कर आया हो?
1: नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत नसीब वाला रहा हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे काम पे के साथ साथ मेरी बातों पे बहुत भरोसा करते थे, और उनको ये लगता था कि ये आदमी कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा।
0: जी
1: फिल्म लाइन के अंदर जो बाकी डिपार्टमेंट हैं उनमें 19-20 चल जाता है
0: जी जी
1: कि आप शाहरुख खान लग रहे हो, आप फलाने लग रहे हो, आप बहुत अच्छा गीत लिख रहे हो, ये कर रहे हो, बट सिंगर आप किसी को नहीं बोल सकते। सिंगर जब तक आप सुर में नहीं होंगे तब तक आप यहां दिल में नहीं लगोगे।
0: सही क्या
1: दुनिया में अगर कोई सुकून की चीज है जो बगैर पैसे के मिलती है वो है संगीत, और वो है गाना। अगर आपके मिजाज का गाना अगर आपको मिल जाता है, आप गाते हैं तो हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो सुनने को भी अगर आपको मिल जाता है तो भी आपको सुकून मिलता है, तो
0: जी।
1: इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। तो ऐसा, क्योंकि जो मेरा डिपार्टमेंट है राइटर के लिए जो मुझे देते गए, मैं आज भी किसी को नहीं बोलता हूं कि फलाना राइटर है या फलाना। सिंगर के लिए जब मेरे पास कोई बात आती है तो मैं जरूर कह देता हूं कि भाई मुझे सिंगर वो दो जो मुझे समझ सके और मैं उसे समझ सकूं, क्योंकि मेरी कोई जाति दोस्ती या दुश्मनी तो होती नहीं सिंगरों से। मैं सुन लेता हूं, हाँ इस बच्चे में ये टैलेंट है, अच्छा कोई 19-20 होता भी है सिंगर तो हम उसको सपोर्ट करके बाकायदा वहां तक पहुंचाते। क्योंकि
0: तो दिलीप सेन साहब, जब आज के समय में तो ऐसा हम सुन ही रहे हैं कि ऑटो ट्यून जो टेक्निक आ गई है वहां थोड़ा सा आवाज 19-20 को ठीक कर दिया जाता है, लेकिन जिस समय आप संगीतकार बने थे, जब कड़ी मेहनत का जमाना था, रियाज का जमाना था, क्या कभी कोई कलाकार की आवाज 19-20 हो जाती थी? क्योंकि आपने तो बहुत सारे
1: नहीं,
0: कलाकारों के साथ काम किया है।
1: मैं बहुत नसीब वाला रहा हूं कि देखिए, कुमार सानू, उदित नारायण, अभिजीत, सोनू निगम, सुनिधि, अपना जसविंदर नेरुला, ऋचा शर्मा, अपना
0: अनुराधा
1: अनुराधा
0: पौडवाल जी
1: जी,
0: हैं, अलका याग्निक,
1: अलका जी, साधना सरगम जी, कविता जी, ये पंकज उदास जी, और मना अपना पंकज के अलावा मेरे साथ विनोद राठौड़ जी, मुकेश जी, नितिन मुकेश है, मोहम्मद अजीज है, शब्बीर जी, अनवर, इवन अपना शंकर महादेवन, अपना ये क्या बोलते हैं सुखविंदर, बाली ब्रह्म भट्ट,
0: अरे क्या
1: जॉली
0: बात।
1: मुखर्जी, ये जितने सिंगर मुझे जिस वक्त मिले, प्रमिला जैन, अपना सुषमा श्रेष्ठा जो,
0: पूर्णिमा के नाम से
1: पूर्णिमा
0: हैं।
1: जी, और कोई सिंगर छूट नहीं जाए भाई, किसी को बुरा ना लग जाए, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट श्वेता सेठी, ये जितने अलीशा चिनोई, मुझे जितने भी सिंगर मिले या जिनके साथ काम करने का मौका मिला, वो चित्रा जी और हरिहरन जी, ये इन्होंने मुझे हद से ज्यादा प्यार दिया, और मेरी गरिमा को या मेरी पोस्ट को एक रिस्पेक्ट दी जो मैं

0: आता था वो उस वक्त वैसा ही करते थे, चाहे वो कुमार सानू जी रहे हो, सोनू जी रहे हो, क्योंकि नो डाउट जब ये कोई भी गाना बनता है तो वो नया होता है, शब्द भी नए होते हैं, धुन भी नई होती है। अब सिंगर क्या होता है कि सिंगर जब आता है तो ये लोगों की एक बड़प्पन ये रहा है कि जब ये मेरे पास आते हैं तो ये सिर्फ मेरे लिए ही आते हैं, सुरेश वाडेकर जी हुए, फिर वो उस दिन दूसरा कोई काम नहीं लेते हैं।
1: जी
0: वो इसलिए नहीं लेते कि भाई दिलीप सेन के यहाँ कितना टाइम लग जाए, और ऐसा नहीं कि मैं सिंगर को कोई तंग करता हूँ,
1: नहीं, वो
0: उनको
1: बात नहीं है, वो
0: वो उनको
1: रिस्पेक्ट
0: पता है कि एक ड्यू रिस्पेक्ट
1: और
0: कि
1: कला
0: यार
1: के
0: वहां
1: प्रति
0: जाएंगे तो वो भागने का काम नहीं
1: और
0: करना है,
1: कला के प्रति समर्पण।
0: समर्पण के नहीं यार। वो जब तक दिलीप सेन समीर सेन मुतमिन नहीं होंगे, जब तक वो परफेक्ट नहीं बोलेंगे, हम उनके यहां से दूसरा गाना गाने जाएंगे नहीं।
1: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
0: जी बिल्कुल, सुनिए।
1: कौन सा गाना?
0: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है जो दीदी ने मेरे दिल से गाया था, होठों पे बस तेरा नाम है,
1: तुझे चाहना मेरा काम
0: काम
1: है,
0: है जी।
1: फिल्म ये दिल लगी का गीत, बहुत सुंदर गीत है
0: जी
1: दिलीप
0: जी
1: सेन
0: जी
1: साहब
0: जी
1: ये,
0: जी
1: तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: ये उनके शिष्यों में गिने जाते हैं।
1: जी, तानसेन के शिष्यों
0: हाँ,
1: में गिने
0: शिष्यों में।
1: जाते थे तो। और आपके पिता जमालसेन साहब भी जाने माने संगीतकार रहे, और आपके घराने की जो विरासत के कारण आपके गानों में एक जो इंडियन क्लासिकल बेस और पक्के सुरों की जो गहरी समझ दिखाई देती है आपके गीतों में, आपके संगीत रचनाओं में। लेकिन साथ ही हमने देखा कि आपके कुछ गानों में देसी तरीका भी अपनाया गया है, जहां पर टेबल पर धुन थपथपाते हुए भी गीत कुछ आए
0: हाँ
1: हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसे है?
0: नहीं देखिए, एक एक चीज याद रखिएगा, फोक जो है, अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि फोक कहते हैं किसको है।
1: जी
0: फोक कहते हैं आमद को, एक चीज आमद होती है। तो इसी तरीके से हमारी जो माताएं बहनें उस जमाने में, आज से 100 200 साल पहले, दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरणत भवन सु आयो विनायक, करवे न सीती विन धरी, मारा दिलीप सेन जीव धारिया जी। वो इस
1: बिल्कुल
0: तरीके से करके ज्वाइंट करती दे रहती थी। तो वहां से ये फोक ट्यूने निकली।
1: शुरुआत।
0: जैसे रेशमा जी के लिए कहते हैं कि रेशमा जी ने फोक से ही शुरुआत की, और वो भी राजस्थान से हैं।
1: जी
0: मेहंदी हसन साहब भी राजस्थान से हैं।
1: बिल्कुल
0: तो जितने भी लोग राजस्थान के कल्चर में पैदा, क्योंकि राजस्थान की जो मिट्टी है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, इनका सबका एक अपना कल्चर है। और फोक जो है, फोक हमारी आत्मा है, क्योंकि हर जगह राग तो चलती नहीं है, तो फोक ही होता है। मगर फोक कहीं ना कहीं, फोक में क्या होता है कि उतार चढ़ाव नहीं होता, वो एक ही ट्यून होती है, वो एक ही रहता, जैसे सा है तो उसी सा में चला जाएगा वो। फिर उसको हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं, ये थोड़ा ऊपर नीचे करके कर लो, तो हम लोग करते हैं। तो हम लोग ने भी जैसे कि
1: कई गीतों में आपने ही प्रयोग किया।
0: नहीं, पर मैंने एक, मैं बहुत अविनाश करके हैं, गुजरात के बहुत बड़े संगीतकार हुए हैं
1: जी
0: जिनका काफी हिट गाने हिट हुए हैं। उनका एक गाना था,

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

0: आपकी पांचवी पीढ़ी फिल्मी दुनिया में कदम रख रही है और आपको दादा साहब फाल्के जनरेशन पुरस्कार 2012 में
1: जी
0: मिला।
1: हाँ,
0: इसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
1: देखिए दादा साहब फाल्के के लिए मैं क्या बोलूँगा, पूरी दुनिया जानती है कि पितामह रहे हैं
0: जी
1: जिनकी वजह से आज हम सब रोटी खा रहे हैं। उनके नाम का अगर आपको कोई छोटा सा पर्चा भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चार जनरेशन को मिला था, मतलब जमाल सेन से सोहेल सेन तक
0: अच्छा।
1: चार पीढ़ी को के एक सम्मान मिला कि भाई इतना लंबा मतलब
0: सफर।
1: सफर जो कपूर खानदान का रहा है या सेन परिवार का
0: जी
1: संगीत
0: जी
1: में रहा है।
0: जी जी
1: और पांचवी पीढ़ी में अभी मेरा पड़पोता समर जो सोहेल का बेटा है।
0: अरे वाह, मतलब सोहेल तो आ ही गए हैं सोहेल सेन के।

0: बेटे भी आ
1: बेटे
0: गए
1: भी आने
0: हैं
1: वाले हैं अभी जल्द। जी
0: जी, तो बहुत ही शुभकामनाएं हैं आपको और
1: धन्यवाद जी,
0: आपके
1: धन्यवाद।
0: परिवार को। और नए गायकों, नए संगीतकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए मैं इतना ही कहूंगा, जितने जो लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर मेरा उन लोगों से एक ही कहना है कि देखिए इंस्पायर होना कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी को देख के और उसकी चीज की तारीफ करके आप उस जैसा मत बनो, उसके साथ कोई मिलती जुलती सी चीज अगर आप बनाते हो तो उसमें क्यों आपकी अलग एक तारीफ बनती है। और हमें अपना जो हिंदुस्तानी संगीत है उसको खोना नहीं है, जो
0: जी
1: आज लुप्त होते जा रहा है। मगर मुझे उम्मीद है कि शायद ये नई जनरेशन जो आ रही है, हमें थोड़ा संगीत सीखना चाहिए, संगीत की मालूमात रखनी चाहिए, शायरी की मालूमात रखनी चाहिए,
0: जी
1: कविताओं की मालूमात रखनी
0: भाषा
1: चाहिए,
0: की
1: भाषाएं में जिनमें देखिए कविताएं आनी चाहिए, शायरी उर्दू। जरूरी नहीं है कि आप उर्दू पढ़ें, मगर कम से कम जैर जबर तो हो, आप तलफ्फुज तो सही करा सकें। तो ये जो चीजें हैं सिंगर के लिए भी जरूरी है, म्यूजिक डायरेक्टर के लिए भी जरूरी है। आप जरूरी नहीं है कि 100 राग हैं या 50 राग हैं या बेसिक 2-4-5, क्योंकि आजकल भैरवी, यमन कल्याण, भोपाली या पहाड़ी या समझो शिवरंजनी, इस टाइप के जो 4-5 रागे हैं वो थोड़ा बहुत उसका अनुभव हो। कॉर्ड से गाना बनाइए, मगर कम से कम आप अपनी मेलोडी को मत जाने दीजिए, जो आपकी धरोहर है
0: उसे रखिए।
1: उसे आप कायम रखिए। क्यों? कि आज हमारा हिंदुस्तान जो हमारी सभ्यता से ही पहचाना जाता है,
0: जी,
1: हमारी संस्कृति से हमारा हिंदुस्तान पहचाना जाता है, हमारी पूजा पाठ से, हमारी इबादत से हिंदुस्तान पहचाना जाता है, क्योंकि हम अनेकता में एकता में पहचाने जाते हैं कि हमारे सर्वधर्म सम्मान है। हम हर
0: जी
1: धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, हर
0: करते
1: संगीत की हम रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारे यहाँ जितने प्रांत है उतना ही हमारा अलग अनूठा संगीत है,
0: जी
1: प्यारा संगीत है। आप किसी भी प्रांत का संगीत ले लीजिए, आपका दिल खुश होगा, पूरा प्यारा सा गुलदस्ता है हमारा संगीत का।
0: बिल्कुल सही कहा। बस जाते जाते एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं।
1: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है, मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
0: जी बिल्कुल, सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: दिलीप सेन साहब, जाते जाते कि आप एक शास्त्रीय बंदिश हमें अगर सुना दें तो हमारे श्रोता भी खुश
1: मैं
0: हो जाएंगे।
1: आपको एक वो चीज सुनाने जा रहा हूं कि जो आज तक शायद आप लोगों ने नहीं सुनी हो।
0: जी
1: शिव तांडव तो आपने सुना ही है, जैसे कि जटा कटा जटा टज प्रभावता वितस्थले वीरो विलंब विलंब भुतंग तुंग मार जटा टवि गल जुल प्रभाव वितस्थले, ये शिव तांडव हो गया।
0: जी
1: कि हनुमान तांडव जो है कि हनुमंत के लपेट दिल अंगूर की झपेट दिल दुष्ट को दपेट चर पेट चकल न बजे न कचा रहते तो होता तो कटाकट की रिसे ने पटा पट पटी पटी पाट कभी गुह की लकार की लजू है जी लकार पड़ी भीड़ भी लगा कटे रखे थे निंदा तहे तेज को कुमार करी को बेसुमार वीर लखन कुमार झुकी जारी की रवान प्यारे सीताराम को उजारू रघुवंश को अनियारो जन पेजे महागुरु रण को रघुकुल मंडल प्रचंड बैठी दंड मुंडे दंड न उमण न सुखन न खल को भूपत तो को ना वेलो अल बेलो ना रेलो रूप लेलो चल राके सनी कर को आन सकते की रहते उमंडी खले खानी झंडी पति सो कमंडी कुल खानी दिने कर को, ये इस तरीके से पूरा हनुमान तांडव है जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, जो मेरी आवाज में रिकॉर्ड है। और इसी से ये जो रैप बना है, तो बोलते हैं ना लोग परदेश का है, कहीं का नहीं है, हमारी छंद है। आज से 10,000-20,000 साल पहले के ये छंद है जो हम डांस में यूज करते हैं। इसे तूने मुझे देखा नहीं, मैंने तुझे देखा नहीं, चाय भी पिलाऊंगा खाना भी खिलाऊंगा, चले मेरे साथ तेरे बाप को मिलाऊंगा।
0: अच्छा,
1: तो इससे आप कुछ भी रैप वगैरह बना सकते हैं। तो ये रहा और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के, इसलिए आपके पूरे परिवार को, आकाशवाणी को, विविध भारती को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, नमस्कार।
0: बहुत खूब, और आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार,
1: धन्यवाद।
2: तो ये था संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय,
0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
3: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
3: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है, कॉमिक क्रिएटर।
4: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम। श्रोताओं, हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5 बजे। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

दोस्त ऐसा मिले कि बेजुबा की जुबा बन जाए, समझेंगे तुझे बाद में ए दोस्त, इससे पहले बेहतर है कि खुद को भी समझ ले। इस तरह ना हो खफा हमसे ए दोस्त कि दुआ सलाम भी रह जाए। जब आता है तस्वर सामने तेरा तो दिल को अजीब सा सुकून मिलता है ए दोस्त। जी हाँ श्रोताओं, FM 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी, और आज की युवाणी में आपका दोस्त हम सफ़र है 30 मिनट के लिए, आपका रेडियो फ्रेंड RJ महावीर कार्यक्रम युवाणी के साथ, और स्पेशल सेगमेंट होगा फ़ोन करे गीत सुने। बात करते हैं आज की बात की श्रोताओं, आज है 1 अगस्त और आज का दिन है विशेष सभी के लिए, स्पेशल बात करता हूँ भारतीयों के लिए। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये बात कहने वाले थे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिनकी आज पुण्यतिथि है। शत नमन करते हैं उनको और भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं उन महापुरुषों को। धन्य है भारत भूमि जहाँ पर ऐसे महान वीर ने जन्म लिया और स्वराज्य के लिए, अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।

विजयी भवन।

बिल्कुल विजय भव रहेंगे हमारे भारतीय लोग, भारतीय महान आज़ादी के दीवाने जिन्होंने अपना जीवन इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। बात करते हैं स्पेशल सेगमेंट की, फ़ोन करें गीत सुने की, और पहला हमारे पास फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं मुकेश, इन्होंने फिल्म आनंद के नगमे की फरमाइश भेजी है, तो इनको सुनाएंगे इनकी पसंद का फिल्म आनंद का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म आनंद का नगमा, जिसे पसंद किया था फरमाइश के रूप में नागौर से मुकेश ने। बात करते हैं अगली फरमाइश की, जो आई है गांव इनाड़ा से भीकम चंद पाराशर और उनके मित्र। इन्होंने फिल्म करहिया की फरमाइश भेजी है, तो उनको सुनाते हैं इनकी पसंद का फिल्म करहिया का ये गीत।

अगली फरमाइश पहुंचे नागौर से लिखने वाले हैं नियाज पेंडर और उनके मित्र। इन्होंने फिल्म हातिम ताई के गीत की फरमाइश भेजी है, तो सुनाते हैं इनको इनकी पसंद का फिल्म हातिम ताई का ये गीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अगली फरमाइश आई है नागौर से ही, लिखने वाला कृष्णा है और इन्होंने फिल्म याराना के नगमे की फरमाइश भेजी है, तो सुनाते हैं इनको इनकी पसंद का फिल्म याराना का ये गीत।

अगली फरमाइश हमारे पास पहुंची है, लिखने वाले नागौर से हैं रामनिवास सांगवा और उनके सभी मित्र। इन्होंने फिल्म पगला कहीं का नगमा सुनने की फरमाइश भेजी है। आइए सुनाते हैं इनको फिल्म पगला कहीं का ये गीत।

अगली फरमाइश हमारे पास पहुंची है गांव रायधनु नागौर से लिखने वाले हुकमाराम हुकमाराम और उनके सभी मित्र। इन्होंने फिल्म बेटा के नगमे की फरमाइश भेजी है और नागौर से ही नागौर बाड़ीकुआ नागौर से कविता और उनके परिवारजनों ने फिल्म बेटा के गीत की फरमाइश भेजी है। तो आइए सुनाते हैं इन सभी को इनकी पसंद का ये गीत।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अगली फरमाइश में हमारे पास फरमाइश आई है अजमेरी गेट नागौर से लिखने वाले इकबाल खान और इनके मित्र, इन्होंने फिल्म शोले की नगमे की फरमाइश भेजी है। आइए सुनाते हैं इनको, इनकी पसंद का ये गीत।

छोड़ेंगे। बिल्कुल, आपकी और हमारी दोस्ती इसी प्रकार बनी रहेगी। और कुछ समयाभाव के कारण कुछ श्रोताओं के नाम हम फरमाइश में नहीं भेज सके और न ही उनकी पसंद का नगमा सुना पाए जिनके नाम कुछ इस तरह से है। अनर हुसैन नागौर से, मेहता सिटी से रामगोपाल खंडेलवाल, शास्त्री नगर नागौर से कुंभाराम चावला और उनके सभी मित्र, तो क्षमा चाहेंगे और अगली बार आपकी फरमाइश जरूर पूरी होगी। समय कह रहा है कि अब यहीं रुकें, फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। दीजिए अनुमति आपके रेडियो फ्रेंड आरजे महावीर को फिर मिलेंगे। करते हैं नमस्कार।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: खास तो देखो अपनी बहना बहुत खुश हो जो वेला है नी, क्योंकि देखो आपा बना है मन भावना गीत जो को सुना दियो। तो बिना देखो बाता चल रही ही सावन सोमवार व्रत रही। तो बिना आवन वाला सोमवार सगला लोग जगह भी सावन सोमवार व्रत करें नी, बना सोमवार व्रत शुरू हो जाए और ई महीना में लोग शिव भक्ति में रम जाए। मीना कर लुगाया सगला ही शिव जी ने प्रसन्न करने वास्ते काचो दूध बेलपत्र धतूरा चढ़ावना है मंदिर माए पहुँच जावे है नी। और घना ही तो देखो शिव जी रे दर्शन ने ये महीना माए हरिद्वार भी जावे। तो घना ही परसरा महादेव और मैंने देखो था ना ठा है कि भाई अपने हरिद्वार रमायने तो इतनी भीड़ उमड़े जगह कहीं क्यों लोग दूर दूर गंगा जी माए नहावना जावे। और घना ही तो देखो शिव भक्त कहीं है बटे कावड़िया माए गंगा जी रो जल लेवन हजारों री संख्या में हरिद्वार पहुँचे और गंगा जी लेवन आपरे घरे जावे। और यहाँ नहीं देखो ई महीना रमायना झूमता गावता कद महीनों बीते ठाई नहीं लगे और महीना बीतता बीतता ही राखी रो तुहार भी आ जावे।

बिना देखो आपा कई बार देखा कि आपने घर में जितना न्यू जन्म लेवे तो आप अभी ने मारो दूध नहीं पिलावा, और आपने पुराना ख्याला विचारा रे अनुसार बिना कोई घुट्टी दे देवा, जीरो टाबरा स्ट्रेस स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। क्योंकि देखो पूरा 9 महीना तक टाबर आपरी मारे गर्भ में मारे खान पानों ही आपरो पोषण कर रही हो, और जब भी रो जन्म हो जावे तो बाहर रे वातावरण और चीजाओं बीरी पाचन क्रिया तालमेल नहीं बिठा पावे, और बाहर रो ऊपरी आहार जन्म लेवता ही देवनु कई प्रकार रा संक्रमणों ग्रस्त हो जावे, और इरी तकलीफ देखो मेरे साथ साथ है आपने सब नहीं उठावनी पड़े। इन वास्ते देखो टाबर रे जन्म लेवता ही आपने बिना कोई ऊपरी आहार नहीं देवता हुआ सबू पहला मारे स्तनु निकलने वालों पीलो गाढ़ो दूध पिलाणो, जिन्हें की देखो आपा खीस पी के वहाँ जीरो की देखो अपनो टावरियो हमेशा निरोगो स्वस्थ रहे, और इरो सबो बड़ो कारण ओ भी है बेना कि माँ रे स्तनु निकलने वालों पहलो दूध में प्राकृतिक रूपों एंटीबायोटिक तत्व होवे, जिया की देखो प्रकृति जगह की प्रकृति री देन होवे, और बानो स्तन पानो टाबर रो रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी उड़ी रहे, और टाबर रा संक्रमण बचाव हुए और वो कम बीमार पड़े। कई बार तो बहना देखो आपा देखा कि अपनी घनी बहना पहलो निकलने वालों गाढ़ो दूध ने गंदो मान कर टावर ने पिलावे ही नहीं और बिना फेंक देवे, तो अपनी जकी बहना देखो एडो करे नहीं बाने एडो आपने टावरिया ने ये प्राकृतिक वनतानु बेकाइया वंचित कर देवे। क्योंकि देखो बीरा ए बेकाइया निरोगा स्वस्थ जीवन पर बाया बाने शंका बना देवे, इस वास्ते देखो अपने टावरिया ने जन्म लेवता ही सबों पहला मारे स्तनु निकलने वालों गाढ़ो दूध पिलावनो और बिने स्वस्थ जीवन लो अमृत देवनो, जीरो कहीं है कि आपनो टाबर हमेशा निरोगो जीवन जी और स्वस्थ रहे, और यही बना देखो मारो दूध शिशु वास्थ बहुत ही निरोगो हुए, और 6 महीना तक टाबर आपके शरीर की सगला पोषक तत्व की आवश्यकता आपने मारे दूध ही पूरा कर लिया करें। इन वास्ते देखो सगली बहन टाबर ने स्तनपान 6 महीना तक तो लगातार जरूरी करवानो, और 6 महीना बाद टाबर ने स्तनपान ने साथ साथ ऊपरी आहार भी देवनो शुरू कर देवनो, जीरो देखो बढ़ता टाबर शरीर ने और अधिक पोषण मिल सके। क्योंकि देखो जिया जिया टाबर शरीरों विकास हुए नहीं बिना देखो घना ही पोषण की आवश्यकता होवे, और पछे मारे दूध उबीरी पूर्ति पूरी नहीं हो पावे, है नी। इस वास्ते देखो टाबर जब 6 महीना रो हो जावे तो बिना उबली दाल रो पानी चावल रो पानी नारियल पानी देवनो, और आ मात्रा बिना देखो 1 चम्मच जितनी थोड़ी थोड़ी शुरू करनी, और जब टाबर ने पूरी तरीके वो पचन लाग जावे तो भी मात्रा ने धीरे धीरे बढ़ावता रहना, है नी। तो बिना देखो बाता हाल आप आगे भी करा ला, पर अब आ रहा है साथ सुन ले मैं एक प्यारो सो गीत।

बढ़िहारी अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है, शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का युवा अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कर्नाटक के मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार सदैव ऊंचे रहे और उन्होंने शास्त्रों का आत्मसात किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैसूरु भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है।
1: मैसूरु भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर, यहाँ की परंपराएं और उत्सव, मैसूरु का दशहरा, यहाँ के भव्य महल, इसका संगीत और साहित्य, भारत की विरासत इस शहर के कण कण में रची बसी है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा कचरा निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अपशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि 31 जुलाई तक कचरा निस्तारण स्थल पर लगभग 99 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का निपटान किया जा चुका है और शेष अपशिष्ट को इस वर्ष 15 अक्टूबर तक निपटाने की उम्मीद है। श्री लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई जाए।

0: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। सिक्किम में नाथूला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में प्रीति पवार ने 54 किलो और जैस्मिन ने 57 किलो में स्वर्ण पदक जीते। 55 किलो में जादुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। इसके अलावा सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉट पुट F57 वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। शुभम जोयाल को रजत पदक मिला। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण, 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.7 MHz पर श्रोताओं, ये है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। यह फिल्म संगीत की पहली पेशकश अरिजीत सिंह के स्वर में फिल्म जब हैरी मेट सेजल से।

लीजिए सुनिए फिल्म संगीत की अगली और आखिरी पेशकश अरिजीत सिंह के स्वर में फिल्म क्रिएचर 3D से। FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं RJ महावीर के साथ फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह को फिल्म क्रिएचर 3D में, और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6:20 हुए हैं, लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर, जिसमें आज के कलाकार थे रामचंद्र गोयल और अनिल नागौरी और साथी। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 6:30 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात होंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उड़ान योजना ने आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उदयपुर से राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की। पर्यावरण संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बताया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन, कई मुकाबलों में पदक जीते। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में विमानन क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना ने आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है। श्री मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में बने नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि साल 2014 से देश में 74 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या बढ़कर 166 हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार में छोटे शहरों के लोग भी हवाई सफर कर रहे हैं।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के माय भारत पोर्टल के जरिए इस देशव्यापी अभियान का आयोजन किया जा रहा है। 10,000 से ज्यादा स्थानों को जोड़ते हुए यह अभियान नशे के सेवन के खिलाफ सामूहिक संकल्प की एकजुटता को मजबूत करता है। इसमें सामाजिक आध्यात्मिक संगठन, युवा क्लब, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक संघ और गैर सरकारी संगठनों के स्वयंसेवक अपने अपने स्थानों से जुड़ेंगे। 100 सप्ताह के इस अभियान के दौरान पदयात्रा, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक और खेल आयोजन तथा अन्य गतिविधियां होंगी। इन सभी के जरिए नशा मुक्ति का संदेश दिया जाएगा। ये अभियान युवा पीढ़ी को नशे के खिलाफ मजबूती से खड़े होने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी है, इसमें हर नागरिक की भागीदारी होनी चाहिए। आज उदयपुर में राज्य स्तरीय वन महोत्सव को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने को लेकर सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे।
2: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी, आज वो एक जन आंदोलन बन गया है। और आपके माध्यम से मैं राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूँ कि वो एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं, हमारी माँ की स्मृतियों को भी सजोएं, आने वाली प्रकृति, आने वाले पीढ़ी को भी हम ये बताएं कि उनको हम फल भी दे करके जा रहे हैं, छाया भी दे करके जा रहे हैं और पर्यावरण को सुरक्षित कर

0: के भी जा रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कालका माता नर्सरी परिसर से इस अभियान की शुरुआत की। गौरतलब है कि मिशन हरियालो राजस्थान के तहत इस साल मॉनसून में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इस मिशन के तहत अब तक 20 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। अरावली संरक्षण के लिए 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक में वृक्षारोपण किया जाएगा। वहीं उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और बांसवाड़ा में चंदन वन की स्थापना की जाएगी। प्रदेश भर में आज स्तनपान सप्ताह की शुरुआत हुई। इसके तहत 7 अगस्त तक लोगों में स्तनपान के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी। इस दौरान प्रसूताओं, धात्री माताओं और उनके परिजनों को स्तनपान का महत्व बताया जाएगा। अलवर के मदर मिल्क बैंक में स्तनपान सप्ताह के दौरान वर्कशॉप, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और रैली सहित अन्य आयोजन होंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज प्रदेश में सुरक्षित मातृत्व सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को समय पर बेहतर इलाज के लिए रेफरल परिवहन तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सुरक्षित प्रसव और जननी एक्सप्रेस सेवाओं के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश सहित परिपत्र जारी करने को कहा। जयपुर स्थित स्वास्थ्य भवन से वीसी के जरिए हुई इस बैठक से मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य, अस्पताल अधीक्षक, सीएमएचओ और अन्य अधिकारी जुड़े। मुख्य सचिव ने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में एनीमिया और हाइपरटेंशन के लिए एसओपी जारी करने को कहा, जिससे प्रदेश भर में एक समान उपचार प्रोटोकॉल की पालना हो सके। राज्य में कर चोरी और अपात्र कर लाभ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से कई जिलों में आज सर्वे की कार्रवाई की गई। राजसमंद, बाड़मेर, प्रतापगढ़, जैसलमेर और जयपुर सहित कई जिलों में एक साथ जांच की। इसमें कई मामलों में कर कानूनों के उल्लंघन और कम टैक्स दिखाने और देने जैसी गड़बड़ियां सामने आई हैं। इन मामलों में दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जा रही है। विभाग ने कहा है कि राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। श्री बागड़े ने SKRAU में ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय ने पिछले 40 वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। करीब 28,000 से अधिक विद्यार्थियों ने कृषि प्रशिक्षण किया है। श्री बागड़े ने कहा कि विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से सशक्त बनाना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है।
2: राजस्थान में अभी जो नीट का निकाल लगा उसमें राजस्थान ने अच्छी प्रगति की, लेकिन इससे और भी करने की जरूरत है। और माध्यमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक, हमारे जूनियर कॉलेज, यहाँ के जो छात्र छात्राएं परीक्षा देती है, अभ्यास करती है, उन्हीं के लिए उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए सभी शिक्षकों ने, अध्यापकों ने, यूनिवर्सिटी और स्कूल वालों ने कोशिश करना है।
1: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि SKRAU को इंडिया AI मिशन से कृषि आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मंजूरी मिली है। इस पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे क्षेत्र के किसानों और कृषि शोधार्थियों को फायदा मिलेगा। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 में केंद्र सरकार और MCC ने वन टाइम फिजिकल रिपोर्टिंग और ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन की नई व्यवस्था शुरू की है। इसमें छात्र घर बैठे ही फ्रीज और फ्लोट विकल्प ऑनलाइन चुन सकेंगे। विद्यार्थियों को कॉलेज के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नीट यूजी काउंसलिंग को लेकर आज चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल ने राज्य के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के नोडल अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सत्यापन निर्धारित समय सीमा में पूरा करना होगा। देरी होने पर संबंधित सीट स्वतः ही निरस्त हो सकती है। श्री गोयल ने प्रवेश शुल्क की जानकारी पोर्टल पर तत्काल अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। ऑल इंडिया कैटरर्स फेडरेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर से कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सीतापुरा स्थित JECC में हो रहे इस सम्मेलन को आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने संबोधित किया। श्री देवनानी ने इस मौके पर प्रदर्शनी

0: का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के पारंपरिक व्यंजन यहाँ की पहचान और संस्कृति हैं। कैटरिंग उद्योग के लोग इसे देश दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कैटरिंग और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े लोगों से स्वाद के साथ साफ सफाई, आधुनिक तकनीक और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन T-127 दो शावकों के साथ नजर आई है। इससे वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटकों में उत्साह है। हमारे संवाददाता ने बताया कि शावकों की सुरक्षा के लिए कैमरा ट्रैप और फील्ड पेट्रोलिंग के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है।
1: रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से आज एक बार फिर खुशखबरी मिली है। बाघिन T-127 दो शावकों के साथ जोन नंबर 7 में नजर आई है। बाघिन T-127 लक्ष्मी T-8 लाडली की बेटी है, जो करीब 6 वर्ष की है तथा पहली बार मां बनी है। यह बाघिन जोन नंबर 6 और 7 में विचरण करती है। बाघिन के साथ नए शावक देखे जाने के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर है। बाघिन के क्षेत्र में लगातार निगरानी और प्रभावी गश्त के निर्देश दिए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने जेवलिन थ्रो, ट्रिपल जंप, जूडो और मुक्केबाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पदक हासिल किए हैं। महिला मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मिन लंबोरिया ने स्वर्ण, नीरज चोपड़ा ने रजत, यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया सहित विभिन्न नेताओं ने देश का गौरव बढ़ाने पर इन खिलाड़ियों की मेहनत और शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज और कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी की जीत के लिए भी प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। उनका मुकाबला आज इंग्लैंड की चेंटेल रीड से होगा। 8 गोल्ड, 15 सिल्वर और 7 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में भारत फिलहाल 6 स्थान पर बना हुआ है। फ्रेंडशिप डे यानी मैत्री दिवस कल मनाया जाएगा। देश भर में अगस्त के पहले रविवार को ये दिन मनाया जाता है। मैत्री दिवस दोस्ती को समर्पित है। इस दिन लोग एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड, उपहार और कार्ड का आदान प्रदान करते हैं। ये दिन एक दूसरे से जुड़ने, मित्रों के आभार व्यक्त करने के साथ ही आत्मीय और खुशनुमा माहौल प्रदान करता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उड़ान योजना ने आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उदयपुर से राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की। पर्यावरण संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बताया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन, कई मुकाबलों में पदक जीते। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बीकानेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। पिछले महीने बीकानेर जिले में पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण गतिविधियां रहीं। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत व्यापक पौधरोपण हुआ, नशा मुक्ति अभियान को गति मिली, स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू हुईं और विभिन्न विभागों ने जन सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। प्रस्तुत हैं बीकानेर जिले की प्रमुख गतिविधियां। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत राजकीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय में औषधीय पौधों के वृक्षारोपण का विशेष कार्यक्रम हुआ। महाविद्यालय परिसर में पारिजात, अर्जुन, बिल्व, करंज, मीठा नीम और खेजड़ी सहित अनेक औषधीय पौधे लगाए गए। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने इन पौधों के औषधीय महत्व और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका की जानकारी दी और अधिक से अधिक पौधरोपण करने का आह्वान किया। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने की तैयारियां जिले में शुरू हो गई हैं। जिला कलेक्टर निशांत जैन ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ध्वजारोहण, मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुरक्षा, पेयजल, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की तथा विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत जिले के वरिष्ठ नागरिकों को भी बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। देवस्थान विभाग के अनुसार बीकानेर जिले के 205 वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के ठहरने, सुरक्षा, अन्य आवश्यक सुविधाओं का बंदोबस्त किया गया है। दहेज प्रतिषेध दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों ने दहेज नहीं लेने और नहीं देने की शपथ ली। इस अवसर पर दहेज प्रथा के विरुद्ध जागरूकता का संदेश दिया गया। विभाग की ओर से सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और छात्रावासों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय नार्को समन्वय समिति की बैठक में नशे की रोकथाम और जन जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि नशे के खिलाफ प्रशासन, समाज, शिक्षण संस्थानों और आमजन की संयुक्त भागीदारी जरूरी है। बैठक में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई, जागरूकता अभियान और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। पुलिस विभाग ने बताया कि ऑपरेशन नीलकंठ के तहत नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है तथा सूचना देने के लिए विशेष हेल्पलाइन भी चलाई जा रही है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों और आगंतुकों की सुविधा के लिए अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं कुलानुशासक कार्यालय का शुभारंभ किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर अभ्यागत केंद्र भी शुरू किया गया है। इससे विद्यार्थियों, अभिभावकों और अन्य आगंतुकों को आवश्यक सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगी। जिले में जन्म और मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेद सिंह रत्नू ने सभी सरकारी अस्पतालों में जन्म और मृत्यु का शत प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम में हेल्प डेस्क स्थापित करने, वृद्धजनों और महिलाओं को प्राथमिकता से सहायता उपलब्ध कराने तथा पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया। जिला कलेक्टर ने बीते दिनों छतरगढ़ क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न सरकारी संस्थानों और ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रावास, अस्पताल, पशु चिकित्सालय, अन्नपूर्णा रसोई और अन्य कार्यालयों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आमजन से जुड़े कार्यों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। ग्रामीण सेवा शिविर में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए और ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने पर बल दिया गया। इसी के साथ बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो उड़ान योजना जनता सारू हवाई सफर किफायती बनायो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उदयपुर राज्य स्तर रा वन महोत्सव री शुरुआत कीनी। पर्यावरण बचावण न सगळा री भेळी जिम्मेदारी बतायो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े विद्यार्थियों ने दिमागी तौर मजबूत बनावण माथे जोर दीनो। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलना माए भारत रा खिलाड़ियों रो चोखो खेल रो दर्शाव। 30 तमगा सागे फिलहाल छठी ठौड़ माथे। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि देश में विमानन हलको तेजियों बधरियो है। वह कहो कि उड़ान योजना जनता सारू हवाई सफर न किफायती बना दिनो है। वह आज आंध्र प्रदेश रा भोगपुरम माई बनाई जानुआ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रा उद्घाटन रे मौके बोल रहा है। श्री मोदी कहो कि साल 2014 माई देश माई 74 हवाई अड्डा है, जारी तादाद अब बेधर 166 वैकी है। वह कहो कि एनडीए रा राज माई नाना शहरां री जनताई हवाई सफर कर रही है।
2: एक समय था जब हवाई उड़ाने सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान री वर्चुअल तरीकों शुरुआत करण रो कार्यक्रम है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय रा माई भारत पोर्टल रे जरिए वो अभियान आखा देश में चलायो जावेला। 10,000 बत्ती ठोड़ा न जोड़ता थका वो अभियान नशो करण रे खिलाफ भेड़ा संकल्प न मजबूत करेला। 100 सप्ताह रा ई अभियान रे दौरान हर दीतवार ने पदयात्रा ध्यान सत्र सांस्कृतिक और खेल आयोजन सागे न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखर नशो नीकरण रो संदेश दियो जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि पर्यावरण ने बचावण री सगला री भेली जिम्मेदारी है, जिनमाए हर रहवासी री भागीदारी वे होनी चाहिए। वे आज उदयपुर माए राज्य स्तर रा वन महोत्सव कार्यक्रम माए बोल रहा है। श्री शर्मा कहो कि आवती पीढ़ियां सारू सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण बनायो राखण बाबत सगला ने मिलर कोशिश करनी वेला।
3: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी, आज वो एक जन आंदोलन बन गया है। और आपके माध्यम से मैं राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूँ कि वो एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं, हमारी माँ की स्मृतियों को भी सजोएं, आने वाली प्रकृति आने वाले पीढ़ी को भी हम ये बताएं कि उनको हम फल भी दे करके जा रहे हैं, छाया भी दे करके जा रहे हैं और पर्यावरण को सुरक्षित करके भी जा रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री पौधों रो पर कालका माता नर्सरी परिसर इनरी शुरुआत किन्नी। ध्यान जोग है कि मिशन हरियाणो राजस्थान रा तेत ई चौमासा माय 10 करोड़ पौधा रोपणो तय करीचियो है। ई मिशन रा तेत हाल ताई 20 करोड़ बत्ता पौधा रोप दिया चिया है। अरावली री डूंगरिया ने बचावण सारू 30,000 हेक्टेयर बत्ता हल्का माय पौधा रोपया जावेला, जदके उदयपुर प्रतापगढ़ सिरोही और बांसवाड़ा माय चंदन वन बनाया जावेला। प्रदेश में आज स्तनपान सप्ताह शुरू हुयो। इन तेत बच्चा ने मारो दूध पावन रे बारा माए 7 अगस्त ताई जाग जगाई जावेला। इन दौरान नुवी मायड़ा दूध पावन वाली मायड़ा अरवाना परिवार वाला ने स्तनपान रा महत्व री जानकारी दी जावेला। इस सप्ताह रे दौरान अलवर रा मदर मिल्क बैंक माए वर्कशॉप सवाल जवाब री होड़ और रैली समेत न्यारा न्यारा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। प्रदेश माए हिफाजत सागे मां बनवाऊं जुड़ी सेवाओं रो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जायजो लीनो। वे आस वाली लुगाइया ने टेम सर बेहतर इलाज सारू रेफरल परिवहन तंत्र ने मजबूत बनावन रा हुक्म दीना। मुख्य सचिव हिफाजत सागे जापो करावण और जननी एक्सप्रेस सेवा सारू एकदम साफ दिशा निर्देश समेत सर्कुलर जारी करण बाबत कहो। जयपुर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए मेडिकल कॉलेज रा प्रिंसिपल अस्पताल रा सुप्रिंटेंडेंट सीएमएचओ और दूजा अहलकारा सागे बातचीत करता था का मुख्य सचिव घनी जोखिम वाली आस वाली लुगाइया माए खून री कमी और हाइपर टेंशन नु जुड़ी SOP जारी करन रा हुकम ई दीना। राज्य में कर चोरी और अपात्र कर लाभ रे खिलाफ चलाया जा रहा अभियान रा तहत वाणिज्य कर विभाग री ओरू आज राजसमंद, बाड़मेर, प्रतापगढ़, जैसलमेर और जयपुर समेत कई जिला में सर्वे री कार्रवाई करी जी। इन दौरान कई मामला में कर कानून नी मानबा और टैक्स री कम जिम्मेदारी बतावन से री की गड़बड़िया सामी आई। आम मामला में कागजात री और जाँच करी जा रही है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज बीकानेर रास्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय रा स्थापना दिवस समारोह में शामिल थिया। वे वठे ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र रो उद्घाटन कीनो। ई मौके राज्यपाल कहो के ओ विश्वविद्यालय लारा 40 साल में 28,000 विद्यार्थियों ने खेतीबाड़ी री सिखावण दीनी। श्री बागड़े कहो के विद्यार्थियों ने दिमागी तौर मजबूत बनावनो आज रा भगत री सब मोटी जरूरत है।
4: राजस्थान में अभी जो नीट का निकाल लगा उसमें राजस्थान ने अच्छी प्रगति की, लेकिन इससे और भी करने की जरूरत है। और माध्यमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक, हमारे जूनियर कॉलेज, यहाँ के जो छात्र छात्राएं परीक्षा देती है, अभ्यास करती है, उन्हीं के लिए

0: उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए सभी शिक्षकों ने, अध्यापकों ने, यूनिवर्सिटी और स्कूल वालों ने कोशिश करना है।
1: ई मौके केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो के SKRAU ने इंडिया AI मिशन खेतीबाड़ी में जुड़ियो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने री मंजूरी दीनी है। ओ सेंटर खोलन सारू करीब 20 करोड़ रुपए रो खर्चो आवेला। नीट UG काउंसलिंग 2026 माए केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एक दफा जावन और ऑनलाइन तरीकों कागजात रो सत्यापन करावन री नई व्यवस्था शुरू कीनी है। इन तहत विद्यार्थी घर बैठियाई फ्रीज और फ्लॉट विकल्प ऑनलाइन तरीकों चुन सकेला। नीट UG काउंसलिंग रे बारे में आज चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल प्रदेश रा सगला मेडिकल और डेंटल कॉलेजों रा नोडल अहलकारा साग मीटिंग कीनी। वे कागजात रो ऑनलाइन सत्यापन ते मियाद माय पूरो करन रा हुकम दीना। ऑल इंडिया कैटरर्स फेडरेशन रो राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर माय राख्यो चार रियो है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इनरो उद्घाटन कीनो। ई मौके वे एक प्रदर्शनी री शुरुआती कीनी। कार्यक्रम में देवनानी कहो कि राजस्थान रा पारंपरिक व्यंजन अठरी पिछाण है और कैटरिंग उद्योग रा लोग इन्हें देश दुनिया ताई पुगावन रो काम कर रहा है। वे कैटरिंग एंड मेहमान नवाजियों जुड़िया लोगों स्वाद सागे साफ सफाई नई तकनीक और पर्यावरण ने बचावन माथे खास ध्यान देवन बाबत कहो। श्री देवनानी कहो कि प्लास्टिक कम काम लेवन और भोजन री बर्बादी रोकण सारू सगला ने मिलर कोशिश करनी वेला। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन T127 दो बच्चा सागर नजर आई है। माणा खबर नवीस बतायो कि बाघिन रा बच्चा री हिफाजत सारू कैमरा ट्रैप और फील्ड पेट्रोलिंग रे जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है।
2: रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से आज एक बार फिर खुशखबरी मिली है। बाघिन T127 दो शावकों के साथ जोन नंबर 7 में नजर आई है। बाघिन T127 लक्ष्मी T8 लाडली की बेटी है जो करीब 6 वर्ष की है तथा पहली बार मां बनी है। यह बाघिन जोन नंबर 6 और 7 में विचरण करती है। बाघिन के साथ नए शावक देखे जाने के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर है। बाघिन के क्षेत्र में लगातार निगरानी और प्रभावी गश्त के निर्देश दिए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार,
1: सवाई माधोपुर। अरब खबर राष्ट्रमंडल खेलना। स्कॉटलैंड रा ग्लासगो में चल रहा राष्ट्रमंडल खेलना में भारत रा खिलाड़ी भाला फेंक, तीन दफा कूद, जूडो और मुक्केबाजी री होड़ा में तमगा जीतिया है। महिलाओं री मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मीन लंबोरिया सोनारा, रजत चौपड़ा चांदीरो और यशवीर सिंह कांसारो तमगो जीतियो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत न्यारा न्यारा नेता देश रो माथो ऊंचो करण वाला आंख खिलाड़ियां री मेहनत और शानदार खेल री सराहना कीनी है। इन बीच भारत री मुक्केबाज और कोटारी बेटी अरुंधति चौधरी रो आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड री चेंट्रल रीड मुकाबलो फैला। सोनारा 8, चांदीरा 15 और कांसारा 7 तमगा सागे पदक तालिका में भारत फिलहाल छठी ठौड़ माथे है। काम धंधा सारू काम ली जावन वाली रसोई गैस री टंकी रो मोल करीब 200 रुपया कम करती उचियो है। तेल कंपनियां रा इन फैसला रेस्तरां, होटल, ढाबा और खान पीन री चीजा रा कारोबारियां ने फायदो मिलेला। तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रे मुजब गैस री टंकियां रो नुओ मोल आज लागू फेंक्यो है। वस्तु और सेवा कर GST री मद माए लारला महीना 2,11,200 करोड़ रुपयों बत्ती रकम भेड़ी करी जी। लारला साल जुलाई महीना रा 1,83,065 करोड़ रुपया रे मुकाबले आ 15% बत्ती बढ़ोतरी है। माली साल 2026-27 सारू काल ताई 5,90,00,000 बत्ती आयकर रिटर्न दाखिल करी ची। इन सारू आयकर विभाग री ओरों सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए रिटर्न दाखिल करन वाला रो धन्यवाद करी चियो। प्रदेश रा कई हलका माय आज ही मैं बरसियो। बांसवाड़ा, पाली और भीलवाड़ा माय चोखो मैं व्यो, जतक भरतपुर और बाड़मेर माय छाटो छिड़को फियो। आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो उड़ान योजना जनता सारू हवाई सफर किफायती बनायो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उदयपुर राज्य स्तर रा वन महोत्सव री शुरुआत कीनी। पर्यावरण बचावण ने सगला री भेली जिम्मेदारी बतायो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े विद्यार्थियों ने दिमागी तौर मजबूत बनावण माथे जोर तीनो। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत रा खिलाड़ियों रो चोखा खेल रो दर्शाव। 30 तमगा सागे फिलहाल छठी ठौड़ माथे। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
3: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 7 बजे हैं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाड़ा सगला श्रोतावा ने आशा था भाई का घना घना राम राम सा, और प्रभु भाई आपने भी मारा घना घना राम राम।
7: बिल्कुल आपने और सुनवा वाला जता भी अपना हितालु श्रोता है जगह दूर दराज गांव ढणी रे मायन बैठ रेडियो सुने है, और आज को तो अपनो विशेष कार्यक्रम है किसान वाणी, तो आप सगला हितालुवा ने घने मानसो थाका भाई प्रभु दयाल वर्मा की तरफ से भी राम राम सा। देखो बिरखा रो दौर चालन लाग रहे है, और अस्यारे मायने ज्या आप रोजना कोई ना कोई कार्यक्रम के माध्यम से बातड़ी आपा किसान वे तक पूगती हुए कि भाई अच्छा टाइम का माए तो एक तो आपने पानी है भी की आपन बचत करनी चाहिए।
6: बिल्कुल,
7: क्या आपने जीवन को जल ने है जो जीवन को आधार बताए गए है, और महापुरुष भी गए कि भाई तीन रतन है जगत में, दाना पानी और बोल, आंखें आगे और क्या देखा खूब टंटोल। यानी कि दाना है, पानी है और बोल है इंसान रा, ए दुनिया का बड़ा जगह रतन है, कीमती वस्तुओं वहां के माए अन्न शामिल किया गया है। तो भाई सोच समझ रहा अपन शब्दों को इस्तेमाल भी सोच समझ रहा करना चाहिए।
6: बिल्कुल सही, बिल्कुल।
7: और अन है बिन भी अपन बचाना चाहिए क्योंकि विश्व अपनी उधर पूर्ति हुए, और पानी को भी अपन बचत करनी चाहिए क्योंकि पानी बचलो तो अपनो जीवन है जो बचलो। पानी पर देखो अपनो पूरो जीवन को निर्माण या कैसे कहा जीवन की उत्पत्ति है जगह भी पानी से हुई, ये वास्ते अपन बिरखा रो टेम है तो अपना जगह भूमिगत जल स्तर है बिन उपलेवा के वास्ते बरसात रो पानी अपन परंपरागत अपनी नाडी है बावड़ी है बांको अपन संरक्षण फूटड़ा टूटड़ा पड़े है तो बन अपन थोड़ा सा ठीक कर बांग मान अपन पानी की बचत।
6: और प्रभु भाई अपना काश्तकार भाई ई बात ने बहुत अच्छी तरह समझे छे, भाई सूखा प्रदेश में भी रह वे राजस्थान छे, पानी की कद कमी हो जावे कद कोई अतो पतो को ना ई ताई ई महत्व ने तो वे अच्छी तरह ही समझे छे। और अब देखो आगे कार्यक्रम किसान वाणी ने आगे बढ़ावे ना आपा,
7: और आगे बढ़ाता था अपने किसान भाई तक जकी जानकारी है भी का वास्ते डॉक्टर महेश कुमार शर्मा जी अपने स्टूडियो में है, तो क्यों ने आशा भाई थे ही बातचीत मसू करो। और किसान भाई ने जगी आज को जो विषय है अपनों किसानों की आमदनी बढ़ावा के वास्ते फल और सब्जियों को प्रसंस्करण ई विषय पर जानकारी आप डॉक्टर साहब से ले।
6: बिल्कुल बिल्कुल सर। किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाला सगला श्रोतावा ने आशा धा भाई का घना घना राम राम सा। श्रोतावा आज अपने साथ स्टूडियो में चे महेश के शर्मा, आप डीन कृषि महाविद्यालय कोटपुतली। सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपको खूब खूब स्वागत चे शर्मा साहब, राम राम सा।
8: राम राम सा।
6: और आज आप यहाँ से बात करेला किसाना की आमदनी बढ़ावा के लिए फल सब्जियां का प्रसंस्करण का बारे में। शर्मा साहब यह बताओ सा कि ज्या की आज को अपनो विषय चे कि किसाना की आमदनी बढ़ावा के लिए वहां की आर्थिक स्थिति ने मजबूत करवा के दिए अगर आप फल और सब्जियां को प्रसंस्करण करा, पर इमें समझ वाली यह बात है कि प्रसंस्करण जो होवे छे वो काई होवे छे।
8: राम राम किसान भाइयों। देखो किसान भाइयों, यो प्रसंस्करण मतलब छे आपा जो बड़का आपने कहावत कहा करेचा कि आम का आम और गुठली का दाम, तो ई के माने कहें छे आपा आजकल देखो किसान भाई कितनी मेहनत सु खेती करे, और खेती करवा के बाद में आपा जी मान लो 100 किलो आपा टमाटर पैदा करे तो भी लगभग 30 किलो टमाटर बेकार जाए सड़ गल जाए, जब सीजन हो तो भी में बहुत प्रोडक्शन होया करे और वो प्रोडक्शन आपने भी के माने करीब करीब मतलब 30-40% खराब हो जाए, तो इन्हें बचावा आट है यो जो वेस्टेज है, एक तो इसको एनवायरमेंट भी खराब हो, किसान भाई ने इनकम भी कम मिले और दूसरा कंज्यूमर ने भी अच्छी क्वालिटी कौन मिले। तो फूड प्रोसेसिंग से मतलब से किसान भाइयों कि जो भी खेती से आपा ने फल एवं सब्जियां का जो प्रोडक्ट खाबा का मिले खाना का रूप में बदलबो या खाना का एक रूप ने दूसरा रूप में बदल खाबो, तो फूड प्रोसेसिंग में कई बातें होया करे जी आपा फूड प्रोसेसिंग में वैल्यू एड कर दिया भी की मतलब जो बाजार मूल्य से मैंने बढ़ा दिया। जी हाँ, बार आप आम की बात करा
6: जी।
8: तो आम जी सीजन में आपा ने मिले 50 रुपए किलो मिल जाए तो भी को पल्प निकाल, और अगर आप सर्दियां के मायने जो आपने फरवरी मार्च अप्रैल महीना में बेचा तो वो आप 200 रुपए का अलग तक भी पल्प बिके, तो इस हिसाब से आप इन्हें प्रोसेसिंग करे और ज्यादा आमदनी कमा सका
6: जी। यानी खेबा को मतलब यही चे काश्त कर पाया कि सीजन का टाइम जो चीज सस्ती चे उन्हें आप ले, अगर ऑफ सीजन में जबकि वह पैदा कोनो है उस टाइम बाजार में अगर बेचोला तो आपने उस चीज को अच्छो दाम मिल जाओ लो, इके लिए आपने वहां सामानों को फलो या सब्जी वहां की प्रोसेसिंग करनी पड़े ली ताकि वहां की जो उम्र चे वह बढ़ जावे। वासा बहुत ही बढ़िया तरीको चे किसाना के लिए हो कि प्रोसेसिंग कर वे आपको जो सामान चे उन्हें उच्च दराम पर बेच सके चे और आपकी आमदनी ने बढ़ा सके चे। अब आपसे यह पूछूं सामना सा कि जहाँ प्रसंस्करण की आप बात कर रहे हैं कि फल और सब्जियां का किसान भाई प्रसंस्करण कर कहीं आपकी आमदनी ने बढ़ा सके चे, तो प्रसंस्करण का तरीका जो चे वे कौन कौन सा चे, सामान्य तरीका से किसान भाई की तरीका से फल और सब्जियां को प्रसंस्करण कर सके चे।
8: देखो किसान भाई जो आप सामान्य तरीका फूड प्रोसेसिंग की बात करा, प्रसंस्करण की बात करा, पर्टिकुलरली फलान सब्जियां की, तो भी मैं आप गर्म कर कुछ हल्का गर्म कर भी उसमें आप जो फल एवं सब्जियां की सतह पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सूक्ष्म जीव पाया जाए जो फलान खराब करे भी उसमें बचा सका। डिब्बाबंदी जिन आप कैनिंग कहवा, डिब्बाबंदी में आप कहें करा कि जो सब्जियां की डिब्बाबंदी करा तो वह आप ब्राइन सोल्यूशन में नमक का 2% घोल में करा और जो फला की डिब्बाबंदी करा कैनिंग करा बी के मायन आप जो शुगर सिरप चीनी को जो चाशनी हुए बी के मायन किया करा, जूस और जूस निकाल भी आप प्रोसेसिंग कर सका। और जूस ना आजकल तो फलां को जूस निकाल जूस ने ऐसा आप फ्रीज में रख डीप फ्रीज कर सका, दूसरों जूस ना आप कंसनट्रेट कर सका बी को पानी ने इवेपोरेट कर गर्म कर वाष्प के बना उड़ा और भी ना आप गाढ़ो कर सका जिम पानी मिला बाद में पिला सका। इसके अलावा भी पाउडर फॉर्म में जूस ने पाउडर का रूप में बना सका है जिसमें भी को बोलूं आयतन कम हो जाए बिना आप मार्केट में बेचवा आसानी रहे जी। हाँ आपने एक गिलास बनाना तो आपने 5 ग्राम ही पाउडर बहुत छे
6: जी,
8: तो यहाँ पाउडर फॉर्म में भी जूस ना आप बना सका बिना पानी ने उडार। इसके अलावा फर्मेंटेशन आप देखो ला अचार बनाओ, कैरी को अचार बनावा है, गोंदा को अचार बनावा आप, लसोड़ा को अचार बनावा, ये सब अचार फर्मेंटेशन द्वारा बनाए जाए और फर्मेंटेशन के बाद में बिना आप तेल से प्रज्वलित करा। इसके अलावा जमना है फ्रीजिंग जी हाँ, पल्प आम को पल्प निकाल लिया बिना आप फ्रीज लो टेम्परेचर पर फ्रीज कर दिया तो वो जम जाए, और फिर जब यहीं कस्टर्ड एप्पल सीताफल को आप पल्प ने निकाल फ्रीजिंग टेम्परेचर पर फ्रीज कर लिया तो वो बिल्कुल ठोस बन जाए, और जी हाँ आप खानो जब इन्हें तो बिना बाहर निकाल कमरा का टेम्परेचर पर रख दो तो वो मेल्ट हो जाए लो और फिर आप इन्हें खा सका। इसके अलावा संशोधित वातावरण पैकेजिंग आजकल यह भी खूब चाल रही हो कि फलाने सब्जियां ने जो एनवायरमेंट चाहे जी मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग को भी सिस्टम चाल गो बी के मायने जी ऑक्सीजन की आप कम कर दिया कंसंट्रेशन CO2।

0: ज्यादा तो वही कमाने भी की जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो श्वसन क्रिया जब कम हो जाए ली और खराब होमा में टाइम लाग लो। पास्टराइजेशन, पास्टराइजेशन में आप कहें कर कि टेम्परेचर दे, स्टीम दे और भी को जो माइक्रोब्स पाए जाए भी की सतह पर फल एवं सब्जियां पर बान आप खत्म कर दिया जिस भी की सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। इसके अलावा भी कुछ और नई नई तकनीक ऐसे हैं जाके द्वारा किसान भाई फल एवं सब्जियां ने प्रोसेस कर और संरक्षित कर सके।
1: शर्मा साहब, आपा किसाना का आय बढ़ावा के लिए फल और सब्जियां का प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं और आप बहुत ही विस्तार से बता भी रहे हो, प्रोसेसिंग को भी आप तरीको बताया कि की तरह से प्रोसेसिंग करी जावे छे। अब आपसे यह जानबो चावला कि प्रसंस्करण का जो मोटा मोटा फायदा छे या आपा यह सोच लेवा की उद्देश्य ने लेर प्रसंस्करण करो जावे छे और मुख्य रूप से इनका फायदा काश्तकार भाइयों ने की तरीका से मिले छे, चाहे किसान छोटो होवे या फिर बड़ो।
0: देखो किसान भाइयों, फला सब्जियों का प्रसंस्करण सबसे बड़ा फायदा तो है कि आपनों जो उत्पादन आप करें वो पूरा को पूरा उत्पादन आप लोग सेफ रहे और आपने भी उसमें ज्यादा पैसा मिले आप बाजार में बेच दिया, पहली बात तो यह होगी। दूसरी बात, जब बाजार में आपने भाव कम रहे हैं, जैसे टमाटर खूब पैदा होगा तो भाव कई बार देखा कि अपन तोड़वा को भाव कौन मिले, तो भी टमाटर ने आप प्रोसेसिंग कर भी को चाहे पल्प बना रख लिया है फ्रीजिंग कर जिन्हें आप फिर जब टमाटर 50 रुपये किलो 100 रुपये किलो होगा तो बेच दिया, अयी भी को सॉस बना सका आप टमाटर केचप बना सका, ये भी का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है जी उत्पाद का आप वैल्यू मतलब भी की प्राइस वैल्यू बढ़ा दिया,
1: कीमत
0: तो
1: बढ़ा दिया,
0: कीमत बढ़ा दिया, इस तरह से आप बाने संरक्षण कर सका। तीसरी बात जो आवे, आप उत्पादन जो भी हुए तो वो आपने अगर बिना आप सड़वा गलवासू बचा लिया तो आप लोग वातावरण भी को मतलब शुद्ध रह लो। और चौथी बात है जो आप मतलब अच्छी क्वालिटी संरक्षण कर कंज्यूमर ने बेचाना तो कंज्यूमर का स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे है और कंज्यूमर की भी की एक्सेप्टेबिलिटी मतलब इन्हें खरीदवा की इच्छा जो रहे वह भी ज्यादा रह ली। और जो सबसे बड़ी किसान भाई फायदा हो लो वो हो लो ई कमाए ने आपा ने किसान भाई ने इनकम जो है, क्योंकि आज को टाइम छे आर्थिक युग छे बिना पैसा काम चालक हो तो किसान भाई ने आमदनी भी ज्यादा हो ली, करीब करीब डबल हो जाए ली। तो यह सब चीजा देख रही आप प्रोसेसिंग को काम करा और किसान भाइयों की आमदनी बढ़ावा के बारे में सोचा।
1: शर्मा साहब, अगर आप बात कर रहे थे शुरुआत में तो आप एक शब्द को उपयोग कर रहे कि कैनिंग, तो कैनिंग की जब बात करा चा या डिब्बा बंदी जी ने आप समझ सका चा सरल शब्द में उनका बारे में या बताओ सा कि जो काश्तकार भाया छे चाहे वो छोटो किसान हो बड़ो किसान हो वो की तरीके से इन्हें कर सके छे, काई की विधि छे, कितो पीसो लागे छे, कितो समय लागे छे, विस्तार से समझाओ सा।
0: देखो किसान भाइयों, जो कैनिंग छे डिब्बाबंदी छे, अब जी आप बात करा सब्जियां में कैनिंग की तो सब्जियां में कैनिंग जनरली मटर में हुआ करे। मटर का पहले आप भी का छिलका ने छिला ला और फिर दाना ने निकालना बाने और बाद दाना ने निकाल अपना भी ने अच्छी तरह से धो लेना, ग्रेडिंग कर लेना, साफ सफाई कर लेना और फिर उनके बाद में बाने थोड़ा हीटिंग थोड़ा साइज कर लेना गुनगुना पानी में और उनके बाद में आप माने डिब्बाबंदी करा ब्राइन सॉल्यूशन में। ब्राइन सॉल्यूशन में नमक को घोल 2% नमक का घोल के माने बान आप डिब्बाबंदी कर और फिर अच्छी तरह पैकिंग कर दिया और पैकिंग कर और फिर बाने आप अच्छी तरह जीवाणु रहित कर और अच्छी तरह मतलब कोल्ड स्टोरेज में रख दिया वहां और जब जरूरत हो मार्केट में जी मटर को सीजन चले गए सर्दियों के बाद में तो गर्मियों के मायने आप भी ने मार्केट में निकाला और अच्छी रेट पर किसान भाई माने बेच सके। आया ही बात करा फला की कैनिंग की, अगर जी हाँ आम की कैनिंग करा आप तो आम में क्या करा कि आम का छिलका ने पहले धोधार अच्छी तरह अच्छी क्वालिटी का आम आप सेलेक्ट करा और फिर वह आम जो सेलेक्ट कर लिया माने छील और फिर बाकी जो पल्प छे बिने टुकड़ा में काट और अच्छी तरह मतलब उन्हें थोड़ो सो हल्को सो भाप दे और फिर आप उन्हें चीनी का घोल के अंदर और डिब्बा के अंदर डाल और अच्छी तरह बंद कर कैनिंग और पास्चराइज कर और फिर इस कोल्ड स्टोरेज में रखा और जब आम को खावा को सीजन फ्रेश आम खावा को सीजन चलो जाए सर्दियां में उन टाइम आप इन्हें खावा के काम में ले सका।
1: यानी खेबा को मतलब यही चे काश्तकार भाया कि साल भर सब्जियां और फलों की उपलब्धता के लिए और ऑफ सीजन में जी टाइम उत्पादन कौन हो वे उ टाइम अच्छी आमदनी लेवा के लिए ये दोनों ही तरीका बहुत बढ़िया छे कि आप प्रसंस्करण कर और कैनिंग कर भी फल और सब्जियां ने रख सको और आपकी आमदनी बढ़ा सको। अब आप निर्जलीकरण की भी बात करें चाह तो आपसे विस्तार से जानबो चावेला काश्तकार भाई ने बताओ सा कि निर्जलीकरण से काई मतलब छे और इका काई फायदा छे और काई तरीका से करी जाओ।
0: जी हां, बथुआ हो चो, पार्लर हो चो,

0: आज हमने धूप में सुखा दिया करेचा, और फिर धूप में सुकार जब ये को सीजन कौन रहे जो पालक को बथुआ को तो भी की सब्जी बनाया करे, पर आजकल वो धूप में सुकापा में जो सबसे बड़ी दिक्कत है भी के मायन का है कि भी को कलर फेड हो जाए छे। अगर डायरेक्ट सनलाइट में सूर्य की धूप में ये हरी पत्तीदार सब्जियां सुखावला तो आप देखा होगा किसान भाई की सब्जियां को जो रंग है वो हरे हो चे, और अगर भी डायरेक्ट आप सूर्य की धूप में सुखा देना तो वो रंग उड़ जाए छे और हल्को पड़ जाए जो देखवा में अच्छो कौन लागे। आजकल जो छे सोलर ड्रायर आ रहा जो सूर्य की उष्मा में एब्जॉर्व कर रहे हैं, आजकल तो लाइट भी जला रहे हैं सोलर से, तो सोलर ड्रायर आवे बाग माया ना पाए सुखा सका हरी पत्तीदार सब्जियां ने और माने सुखा, और फिर जब बाको ऑफ सीजन है या महंगी छह उन टाइम माने आप उपयोग में ले सका। जी करेलो छे, करेलो अभी आप लोग खूब पैदा हो रहे हो, अब ई टाइम ये करेला ने आप थोड़ो अच्छी तरह साफ सुथरो कर छील और नमक का घोल में थोड़ो धो और फिर भी ना आप अगर सोलर ड्रायर में सुखा लिया तो बिना ऑफ सीजन में आवा बेच अच्छा मुनाफो कमा सकते। यही आपने हरी पत्तीदार सब्जियां में चाहे वो भथुओ चाहे चौलाई हो आपने चाहे पालक हो, आज हमने भी आप सोलर ड्रायर में सुखा और ऑफ सीजन में या जब भी बाकी रेट बाजार में ताजा पत्तीदार सब्जियां रेट ज्यादा हो तो आप बाने बेच अच्छो मुनाफो कमा सका। केवल सीधो सीधो एक ही सिस्टम है कि जो भी खावा की चीज है भी में जो पानी रह जाए जी हाँ पत्तीदार सब्जियां या जो भी सब्जियां जब हमें 80 से ले 90 से 95% तक पानी रहे, पत्तीदार सब्जियां में करा तो 90 से 95% तक पानी रहे तो भी पानी ने उड़ावो बस, और जो भी मान ठोस पदार्थ है वो ही आपने बचे रहो पानी बिल्कुल उड़ा दिया जिसो की वो संरक्षित रह सके लंबा टाइम,
1: यानी मॉइस्चर और नमी जो भी उन्हें खत्म करनी
0: इसके अलावा जो भी जी फल का बात करा फल के जी छिलको उतरियो, अब जी नींबू में बात करा नींबू को छिलको उतरियो तो वो छिलका का पीसा है जी हाँ, किसान भाई कहते हैं ना आम का आम गुठली का दाम, तो वह यही बात करूंगा जी आम को पल्प भी आपने निकाल लिया
1: जी।
0: आम की गुठली से स्टार्च निकाल लिया और वो स्टार्च जो वो आपने बहुत इंडस्ट्रीज में काम आया आजकल तो यही नींबू का मान है, नींबू की जो इवन छिलको है बीसो भी बीम तेल निकले बीमें सुगंध निकले बीमें रंग भी निकले नेचुरल, तो ऐसे सब चीजा से और मुनाफा है। जूस का तो पीसो मिली मिल गो, और उनके अलावा जो भी बाय प्रोडक्ट था जो पहले किसान भाई यहीं फेंक देता तो बीसु भी आपने आमदनी मिल रही है आजकल, तो न तो आप लोग एनवायरमेंट खराब है बीसू वातावरण खराब हो पॉल्यूशन कौन है और पीसा भी मिला है डबल मुनाफा हो किसान ने, तो ये सब चीजें कर रहा आजकल मतलब ज्यादा ज्यादा आमदनी कमा सका। जी हाँ नींबू का बीज का मौसमी को बीज बी के माने तेल पाए जाए छे, तो बी को भी तेल निकाल और आजकल मार्केट में बेचो जाए, वो नेचुरल तेल तो बहुत ही महंगा हो जाकर जो सुगंध हो बहुत अच्छी हो जाए क्योंकि आजकल सिंथेटिक ज्यादातर सुगंध रही है मार्केट में आ रही है, नेचुरल तो बहुत महंगी बिके, तो ई हिसाब से अगर किसान भाई काम कर ला तो बहुत ज्यादा आमदनी वह कमा सके।
1: यानी कहबा को मतलब यही है कि थोड़ी सी आपने तकनीक जाननी चाहिए, थोड़ी सी आपने जानकारी रखनी चाहिए, पर हर एक चीज की वैल्यू चाहिए, हर एक चीज की कीमत चाहिए, कोई भी चीज बेकार को ना, चाहे बीज हो छिलको हो अंदर को पल्प हो या कोई भी चीज हो। वासा बहुत ही बढ़िया तरीका से आप जानकारी दे रहे थे श्रोताओं, महेश के शर्मा डीन कृषि महाविद्यालय कोटपुतली अपनी साथ है, और आज आपने बता रहे किसानों की आमदनी बढ़ावा के लिए फल और सब्जियां का प्रसंस्करण का बारे में। शर्मा साहब एक और जो तकनीक छे उको नाम काफी सुनवा में आवे छे स्पंदित विद्युत प्रौद्योगिकी, तो यो काई छे काई तरीको छे ई तकनीक का बारे में भी माका जो काश्तकार भाई छे वाने विस्तार से बताओ ताकि वे जाने इन्हें काम में लेवे और आपकी जी की आमदनी छे उन्हें बढ़ा पावे।
0: स्पंदित विद्युत क्षेत्र प्रौद्योगिकी के बारे में किसान भाई एक नई तकनीक छे ई में काई करांगी पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड होया करे टेक्नोलॉजी एक छे जिसमें हल्की फूड प्रिजर्वेशन तकनीक छे और लिक्विड प्रोडक्ट जिया जूस हो चे हैं दूध हो चे या जो फला की प्यूरी जो पल्प हो चे भी में नुकसानदायक बैक्टीरिया ने खत्म करवाटे एक छोटी सी बिजली की पल्स मतलब बिजली को भी में करंट दियो जाए पल्स दियो जाए भी को इस्तेमाल हो चे और उनकी सेल्फ लाइफ ने बढ़ा दे चे क्योंकि वो जो खराब कर वाला जो बैक्टीरिया या फंगस भी में छा खत्म हो जाए इस बीच साथ ही में ताजापन में कम से कम असर डाले चे और जो या स्पंदित विद्युत क्षेत्र प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है इसको इस्तेमाल और टेस्ट अलग अलग मकसद से किया जाए जी हाँ जूस ने प्रिजर्व करवा हटे या फलां को पानी निकाल बा की बेहतर बनावा हटे सुखावा पहली ट्रीटमेंट के तौर पर भी इन्हें यूज किया जाए या बहुत अच्छी तकनीक है नई तकनीक।
1: शर्मा साहब आप बात कर रहे थे यहाँ बार फल और सब्जियां का बारे में, जो काश्तकार भाई फलां का बगीचा लगावे छे और वहां से आमदनी पावे छे वहां के लिए आपसे पूछना चाहूंगी कि जो अमरूद का प्रसंस्कृत उत्पाद छे वे कशा कशा छे और की तरीका से वहां से और अच्छी वैल्यू यानी कीमत ली जा सके।
0: देखो किसान भाइयों, अमरूद ने जी पहली तो आप खावा चाहे तो ताजा फल नहीं खाया जा है, सीधो अमरूद ने खाया जा।
1: बिल्कुल।
0: पर आजकल अमरूद बहुत पैदा हो रहे जे और देश दुनिया के दूसरी जगह भी आप अभी ने एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो अमरूद ने ताजा तो खा ही सके टेबल पर्पज के रूप में, तो खूब पैदा हो रही है तो आपने भी को प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन भी करना चाहिए। तो अमरूद का गुदा ना आप फ्रीजिंग लो टेम्परेचर पर फ्रीज कर रख सका, और जब ऑफ सीजन हो तो बिना आपा जो रूम टेम्परेचर भी पर निकाल आपा रख दिया तो वो खावा लायक बन जाए। दूसरा आजकल आप देख रहे हो जूस भी पी रहा जो है अमरूद को, बहुत अच्छा लगे टेस्ट में, शादी ब्याह में लोग आजकल दे रहा चाहिए। तो अमरूद को आपा मशीन से जूस निकाल और बिने कंडेंस कर लिया थोड़ो पानी नोडा दिया और कंडेंस कर और फिर बिने लो टेम्परेचर पर कैंड डिब्बा में बंद कर और रख कर लो टेम्परेचर पर रखा जिससे वो खराब कौन हो और जब जरूरत हो तो बिना आपा मार्केट में बेच और अच्छा पैसा कमा सका। इसके अलावा आप आजकल देखो कि भी को लेदर गुआवा लेदर भी बन रहा है, गुआवा लेदर का हो जाए कि भी के मायने गुआवा को जो पल्प है बिने थोड़ा मॉइस्चर ने सुखा और प्रिजर्व कर लिया करे और फिर जब भी जरूरत हो उन्हें आपा अमरूद का पल्प की नहीं मतलब ठोस भी को आप खा सका जहाँ बर्फी हो जाए बया खा सका। तो ये कई अमरूद का प्रोडक्ट आजकल मार्केट में आ रहा है और आप माने बना सके अमरूद।
1: अब जो नींबू और नींबू वर्गीय फल हो वाने की तरह से प्रसंस्कृत करे और कई कई उत्पाद नया बन प्रसंस्करण के बाद बाजार में आ रहे थे जाकि वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा है और काश्तकार भाई ने जागरूकता रखनी चाहिए, नई तकनीक ने अपनानी चाहिए और यहाँ सब्जियां ने और फला ने प्रसंस्कृत करनी चाहिए।
0: नींबू, नींबू तो देखो किसान भाइयों आजकल आप देखो 200 रुपए किलो तक भी बिके, आजकल सस्ते हो गए मना गर्मी के टाइम तो 200 रुपए किलो तक भी।
1: बिल्कुल।
0: तो नींबू तो प्रसंस्कृत करवा को सबसे इम्पोर्टेंट फल है। अभी मैं नींबू के मायने का कहेंगे नींबू का रस ना आप प्रसंस्कृत कर सका और इको ड्रिंक्स बना सका, जूस बना सका नींबू का, लेमन जेस्ट नींबू को बाहरी छिलका में एसेंशियल ऑयल हो तो बीस आप तेज खुशबूदार स्वाद दे वालो तेल निकाल सका, दूसरो जूस को पाउडर बना सका नींबू का जूस को भी अगेन पूरा पानी ना आपा मशीना से ऑपरेट कर दिया सुखा दिया और फिर भी ने आपा पाउडर का फॉर्म में बना लिया और जब भी आपन जरूरत हो तो भी पाउडर में पानी मिलाया और आपा पी सका है। जो आपने तेल दे रहे आपने सुगंध दे रहे आपने कलर दे रहे नेचुरल, तो ये किसान भाई आटे नींबू तो एक वरदान से प्रकृति को और यो बहुत ही अच्छी आमदनी को साधन से किसान भाई की खेती कर और साथ ही साथ किसान भाइयों ये भी एक ध्यान देवा की बात है कि आजकल जो सरकार है आपने चाहे वो केंद्र सरकार से चाहे राज्य सरकार वो ये सब का अगर एफपीओ बना लेना आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना लेना या खुद फार्मर भी इंडिविजुअल फार्मर भी कर सके तो माने ये जो प्रसंस्करण उद्योग लगा बाट है फल एवं सब्जियां का सरकार एक सहायता भी दे रही, सरकारी सहायता मिल रही है तो सरकार भी अच्छा हो कि हमारा किसान भाई की आमदनी ज्यादा से ज्यादा बढ़े और माने ज्यादा से ज्यादा हेल्प करा और बाकी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मतलब सेफ रहे जो कितनी मेहनत से दिन रात मेहनत से पैदा करे और कंज्यूमर ने भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी मिले खावन।
1: शर्मा साहब बहुत ही विस्तार से हर एक चीज ने आप काश्तकार भाई ने बता रहे छो। अब जब अपनी बातचीत समाप्ति की ओर छे तो एक और सवाल मन में आ रहे छे वो आपसे जानबो चाहवला कि फल और सब्जियां का प्रसंस्करण का बारे में आप इतनी देर से बात करी रह छा, काफी सारा फायदा तरीका आप बताया भी, अब कहीं कोई नुकसान भी छे या कहीं सावचेती बरतनी चाहिए जे या भी बताओ।
0: देखो किसान भाई हर चीज आप कहीं भी काम करा लाभ भी हो चाहे तो भी का नुकसान भी हो जाए।
1: बिल्कुल।
0: जी आप खानो ही चाहे खानो अगर आपने जितनी भूख से उतना खावा ला तो वो फायदो है।
1: बिल्कुल।
0: और ज्यादा खा लेना जी अभी ब्याह शादी में गया अगर मिठाई विठाई थोड़ी ज्यादा खा लेना तो वो नुकसान भी कर जाए। तो यही ही आपने फल एवं सब्जियों को प्रसंस्करण भी दोनों चाहिए में भी लाभ तो बहुत ज्यादा चाहिए छे पर कुछ हानि भी छे। लाभ तो आप बात कर ही चुके किसाना ने इनकम अच्छी मिल ली है, पोल्यूशन एटमोसफियर को लो भी को जितना उत्पादन है वो पूरा कंज्यूमर ने मिल लो अच्छी क्वालिटी मिल ली कंज्यूमर ने ये सब खावा ने सब तो फायदा है आमदनी भी किसान भाइया ने खूब मिल ली पर कुछ नुकसान भी है। जी आप बात करें कि कैनिंग सब्जियां की कैनिंग आप करा ब्राइन सोल्यूशन में नमक का घोल में 2% का में तो भी मान कहें कि सोडियम नमक मतलब ज्यादा रहते सोडियम ज्यादा रहते तो वो आपने नमक थोड़ा खावा ज्यादा चल जाए और वो आपने स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हुआ मतलब नुकसान इतना ज्यादा कौन है जितने नुकसान आपने किसान भाई ने भी की मेहनत को रिटर्न नहीं मिले कंज्यूमर अच्छी क्वालिटी नहीं मिले और वातावरण ने भी दूषित करे अगर फल सब्जी सड़ जाए तो नुकसान तो बहुत ही नेग्लिजिबल है बिना आप थोड़ी सावधानी रखकर जी अपना कैनिंग सु टुकड़ा फल का जब निकाल खाया तो बिना आप थोड़ा धोलिया साफ कर लिया जिसको की बुआ जो चीनी की चाश से जब हट जाए यही सब्जियां ने जो नमक का सिरप में आप डिब्बा बंदी करा तो जब भी यूज लिया तो बिना थोड़ा अच्छी तरह धो लिया जिसमें जो ज्यादा नमक है वो निकल जाए। तो थोड़ी बहुत सावधान रख आप जो फल एवं सब्जियां प्रसंस बड़ा नुकसान बच सके आराम से।
1: काश्तकार भाया किसाना की आय बढ़ावा के लिए फल और सब्जियां का प्रसंस्करण इसके बारे में बहुत ही बढ़िया विस्तार से बताया महेश के शर्मा आबडीन कृषि महाविद्यालय कोटपुतली। आज आपने स्टूडियो में आया और आपने जानकारी दिया इत आपको खूब खूब धन्यवाद सर।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
3: पुतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं
3: मतलब
2: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी। अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा
3: पर हम तो सब यही डाले हैं
2: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है
2: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: जी
5: हाँ सर बहन कार्यक्रम के मायने अब अपन थोड़ा सा संगीत की तरफ चला और राजस्थान की मीठी चीज की एक लोक रचना है जो की भाई लोगों तक फूकती करवा।
1: बिल्कुल सर।

0: प्रभु भाई थोड़ो सो गीत आज आपा कम सुना पाया चा उनके लिए माफी चाहवा चा।
1: बिल्कुल माफी चाहवा, लेकिन देखो एक मायने मौसम की बात हो रही है, बिजली चमकवा की बात हो रही है, तो मौसम की क्यों ना थोड़ी सी बात अड़ी कर लिया। तो देखो आज आप जयपुर का अगर तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 33 डिग्री ले 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रेवा को है, और न्यूनतम की अगर आप बात करें तो 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड, और आसमान का मन का बादल है वे छायेड़ा रहे, सिर्फ खटे खटे हल्की सी बारिश है और बिजली चमकवा की पूरी पूरी संभावना है।
0: और अब स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि आज को जी को कार्यक्रम चे किसान वाणी उनको टाइम पूरा होते जा रहे तो श्रोतावा दिराओ आगे आशा ने
1: और प्रभु दयाल ने
0: चालार करा राम राम सा।
2: कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से कार्यक्रम किसान वाणी। श्रोताओं, ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

यह है फिल्म संगीत की पहली पेशकश किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में फिल्म आक्रमण से। आनंद बख्शी के बोलों को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लीजिए, सुनिए अनुपमा देश पांडे और सुरेश वाडेकर के मिले जुले स्वरों में फिल्म चांदनी का गीत।

अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडेकर और अनुपमा देशपांडे को फिल्म चांदनी में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत दिया था शिवहरि ने। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का अगला नगमा फिल्म आशा से।

शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

लीजिए सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू के युगल स्वरों में फिल्म संग्राम का ये गीत। समीर के बलों को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

लीजिए सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण को फिल्म मोहरा में। आनंद बख्शी के बोलों को संगीतबद्ध किया है विजू शाह ने।

अभी आप सुन रहे थे पूर्णिमा और कुमार सानू को फिल्म गोपी किशन में। समीर के बोलों को संगीतबद्ध किया था आनंद विनीत ने। और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। रात्रि के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इस सप्ताह संसद में।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं मुशायरा।
1: मॉनसून सत्र का यह दूसरा सप्ताह था। यह सप्ताह कामकाज के लिहाज से मिला जुला रहा। इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि दोनों सदनों ने लंबी चर्चा के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। सदन ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। इस कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इस हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास और 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। सदन की बैठक 2 बजे शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 5 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। सदन में हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक बार बार बाधित हुई और 4 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 5:15 की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सदन में हंगामा जारी रखा और बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर यही मुद्दा उठाया और मांग की कि गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में बयान दें। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। सदन में हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक शाम 5:15 तक और पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। मंगलवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार के विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक

आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। विधेयक पर देर रात तक चर्चा हुई जिसमें विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया, चर्चा अधूरी रही। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामे के कारण बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और फिर शून्यकाल शुरू करवाया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। सभापति ने हंगामा जारी रहने पर करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने फिर से गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उपसभापति ने सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील की लेकिन सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट पेपर लीक के पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वह माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उसी दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी सदन में पेश किया।
उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले सदन की कार्यवाही बाधित रही। भोजनावकाश के बाद सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक

2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन में विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट यानी बहिर्गमन कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वह सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे प्राप्त होना चाहिए। विधेयक पारित होने के बाद कुछ सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के शोरगोल के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। हंगामे के कारण कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद बैठक शुरू होने पर सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। उच्च सदन ने एक दिन पहले ही विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य, व्यक्ति या विचारधारा के खिलाफ नहीं है। इससे पहले द्रमुक सांसदों ने विधेयक का विरोध किया। उधर राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा। शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा किया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदस्यों ने शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजनावकाश के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल ही में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। विधेयक के समर्थन में भाजपा के ब्रजलाल ने कहा कि विधेयक यह प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को मात्र 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। जदयू के संजय झा ने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह से बढ़ रहा है उसका एक अहम कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास थी, तब इस तरह प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। विधेयक पर हुई लंबी चर्चा के बाद विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिर्फ एनटीए ही नहीं बल्कि यूपीएससी रैंकिंग और रेलवे और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं को भी कवर करता है। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने आसन के निकट पहुंचकर गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर शराबा को देखते हुए कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक
लिए स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। सदन ने

0: चर्चा के ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संसद में हुई इस सप्ताह की कार्यवाही की समीक्षा। श्रोताओं, ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम। हेलो फरमाइश।

0: अपना दिल पेश करूं या अपनी वफा पेश करूं, कुछ समझ में नहीं आता तुझे क्या पेश करूं। तेरे मिलने की खुशी में कोई नगमा छेड़ूं, तेरे मिलने की खुशी में कोई नगमा छेड़ूं, या तेरे दर्द जुदाई का गिला पेश करूं। दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त अहमद अली आपका आपके अपने प्रोग्राम हेलो फरमाइश में। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंदीदा फिल्मी नगमे। तो शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम और लेते हैं प्रोग्राम की पहली कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बजरंग बोल रहा था सर, नागौर से।
0: तो बजरंग जी, आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं?
1: हाँ सर।
0: कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं?
1: प्रोग्राम सर ये अपने फरमाइशी प्रोग्राम आते हैं, सखी सहेली आता है, नाटक आता है, रात को प्रोग्राम आता है फिल्मी, ये हेलो फरमाइश आता है, आपकी फरमाइश आता है, कृषि दर्शन आते हैं।
0: जी जी जी जी।
1: वार्ता आती है डॉक्टर साहब से, वो अच्छी लगती है। कृषि विभाग से जो आते हैं वैज्ञानिक, उनकी वो वार्ता सुनते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, आप हमारे प्रोग्राम ध्यान से सुनते हैं। तो आज आपने फोन किया है, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: गाना मेरे को सुनना है नाजायज फिल्म का, अभी जिंदा हूँ जी लेने दो।
0: तो आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर फिल्म नाजायज का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: लवारपुरा से मोहम्मद हसन।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: औजार बनाता
0: हंस तो जार बनाते हैं।
1: है? हाँ, औजार 5,000 हाथ का काम है। हाँ,
0: आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं?
1: प्रोग्राम सुनते हैं बराबर, जो
0: कौन कौन से सुनते हैं?
1: 5 बजे बात चालू होता है वो सुनते हैं, तो सुबह वाले सुनते हैं। प्रोग्राम
0: अच्छा, कैसा लगते हैं प्रोग्राम आपको?
1: तो अच्छे आते हैं।
0: जी, तो आज आपने फोन किया है, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: डोंट फिल्म का
0: कौन सा?
1: इसका मुझे इंतजार था, वो
0: तो
1: घड़ी आ गई। हाँ
0: बहुत अच्छा गाना है, तो हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर यह गाना।
1: ठीक है।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार
0: नमस्कार। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी। सर बदवासी से बोल रहा हूँ, बबला सर।
0: अच्छा, तो बदवासी में मौसम कैसा है अभी?
1: अभी तालाब पे बैठे हैं, होम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं सब, बारिश
0: अच्छा, और
1: के लिए भगवान को मना रहे हैं।
0: बारिश के लिए दुआ कर रहे हैं।
1: हाँ जी हाँ।
0: अच्छा, तो आज आपने फोन किया है, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: गाना है वो अपना सावन का, रिम जिम बरसता सावन होगा, कैसा सुंदर सपना अपना
0: ठीक
1: जीवन
0: है
1: होगा, रिम जिम बरसता सावन होगा। सावन का महीना लगा है निशाब।
0: जी, तो आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: तो मैं कालू राम बम बोलो टाइल न्यू साहब।
0: हाँ कालू राम जी बोल रहे हैं,
1: तो
0: क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया जोरदार है, बरसात रही, थोड़ी थोड़ी कमी सी महसूस हुए साहब।
0: जी, बरसात की कमी है, देखो दुआ कर रहे हैं बरसात हो और आपके खेतों में हरियाली हो। और आज आपने फोन किया है, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: आपकी पसंद का बढ़िया ताजा गाना सुना दीजिए।
0: ठीक है, तो हम आपको सुनवा रहे हैं हमारी पसंद पर ये गाना।
1: हाँ जी।

0: प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: मुझे पूरा विश्वास है, आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117,85,00,000 रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
2: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 44,55,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किश्त के रूप में 379,35,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 193,95,00,000 रुपए प्रदान

0: किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
2: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
1: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
3: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं जबकि

0: कि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरला में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
2: अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश। अगला कंपटीशन से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल ले आऊंगा। मेडल मैं मेरा अंकल को दे करूंगा और BFI को, साई को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
1: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
0: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5,000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत में दर्द भरे गीत। यह है फिल्म संगीत की पहली पेशकश लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म हीर रांझा से।

FM 103.7 मेगाहर्ट्स पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्द भरे गीत फिल्म संगीत में। ये सुनिए, सुलक्षणा पंडित और मोहम्मद रफ़ीक के स्वर में ये आखिरी पेशकश फिल्म महुआ से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के अंतर्गत दर्द भरे गीत। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब आप सुनेंगे देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म तू झूठी में मैं कार से, आवाज़ अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत प्रीतम का।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म लाल सिंह चड्ढा से, आवाजें अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत प्रीतम का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात

0: हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म भूल भुलैया 2 से। आवाजें अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की थी। गीत के बोल समीर के और संगीत प्रीतम का।
1: तक तड़क भड़क दिल धड़क धड़क गया, अटक अटक ना माना, लट गई रे उलझ गए कैसे कोई हट गया, मन से लिपट अनजाना, वो नील अंग सा रूप रंग ले समाधि प्रेम भंग, अंग अंग फिर मन में दंग और तंग पतंग, संग संग और गाना।

इस धुन को सुनकर सुनने वाले के पांव न थिरके, ऐसा कोई बिरला ही होगा। हिंदी फिल्म संगीत के, खास तौर पर पुरानी फिल्मी गीतों के चाहने वालों में से शायद ही कोई होगा जिसने ये गीत ना सुना हो। जिस फिल्म का ये गीत है उसके निर्माता, निर्देशक और नायक की हम बात करने वाले हैं। इस कलाकार को हम क्या कहें, एक्शन हीरो, रोमांटिक हीरो, कॉमेडियन, ये कलाकार था ही अलबेला। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है भगवान दादा की।

भोली भाली सूरत मगर दिल के सच्चे थे भगवान दादा। पहलवानी के शौक के कारण सभी उन्हें दादा कहकर बुलाते। भगवान दादा का जन्म महाराष्ट्र में 1 अगस्त 1913 को हुआ। वास्तव में उनका नाम था भगवान आबाजी पालव, एक मिल मजदूर का बेटा। भगवान बचपन से ही फिल्मों के सपने देखा करता। हालात से मजबूर भगवान दादा को बहुत जल्द पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मुंबई आकर वो मजदूरी करने लगे और करने लगे तकदीर के बदलने का इंतजार।

मुंबई आकर भगवान दादा जब फिल्मों में काम पाने का प्रयास करने लगे तब मूक फिल्मों का जमाना था। किसी फिल्म निर्माण कंपनी में मजदूरी के साथ साथ वो छोटी छोटी भूमिकाएं भी करने लगे। अपने काम के साथ साथ भगवान दादा फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में पूरी तरह से डूब गए। बतौर अभिनेता उनकी सबसे पहली फिल्म थी क्रिमिनल, जो एक साइलेंट यानी मूक फिल्म थी। 1938 में बनी फिल्म बहादुर किसान का उन्होंने सह निर्देशन किया। 1938 से 1947 तक भगवान दादा लो बजट की स्टंट और एक्शन फिल्में बनाते रहे, जो मजदूर वर्ग में काफी लोकप्रिय थीं। उस दौरान यानी 1941 में एक उल्लेखनीय तमिल फिल्म उन्होंने बनाई वन मोहिनी, जिसमें एम के राधा और श्रीलंका की अभिनेत्री थवमणि देवी ने भूमिकाएं अदा की। 1942 में भगवान दादा ने फिल्म निर्माण कंपनी बनाई जागृति पिक्चर्स। फिल्म निर्माता तो बन गए मगर कमोबेश मुफलिसी का दौर अब भी जारी था।

और लॉटरी लगी, सवा लाख की नहीं बल्कि लाखों की। 1947 की बात है, जागृति पिक्चर्स के लिए चेंबूर्स में जागृति स्टूडियो का इंतजाम किया गया। राज कपूर की सलाह पर भगवान दादा ने एक सामाजिक फिल्म के निर्माण की तैयारी की। नायक तो वो स्वयं थे ही, नायिका के रूप में उस समय की मशहूर अदाकारा गीता बाली को चुना गया। फिल्म के संगीत का जिम्मा उठाया भगवान दादा के जिगरी दोस्त सी रामचंद्र ने। रुपहले पर्दे पर फिल्म आई अलबेला। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और इस फिल्म की अपार सफलता ने भगवान दादा का जीवन बदल कर रख दिया। सी रामचंद्र के संगीत में बंधे गाने बेहद लोकप्रिय हुए। इन गीतों का शोला कुछ ऐसे भड़का कि सुनने वालों के दिल आज तक धड़क रहे हैं।

फिल्म अलबेला के गीतों की एक और खास बात यह है कि जिन गीतों पर नृत्य किया है भगवान दादा ने, उनके साथ डांस करने वाले बाकी कलाकार असल में नर्तक नहीं थे बल्कि स्टंट्समैन थे, जो आमतौर पर भगवान दादा के साथ एक्शन फिल्मों में मारधाड़ वाले दृश्यों में भाग लेते थे। तो अलबेला के ये खासियत भरे बाकी गीत भी सुन लेते हैं।

0: अलबेला की सफलता का स्वाद चखने के बाद उसी टीम के साथ भगवान दादा ने 1953 में फिल्म बनाई झमेला, जिसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। उसके बाद भगवान दादा ने एक और फिल्म बनाई लाबेला, जिसके निर्माण में उन्होंने अपनी ज्यादातर दौलत झोंक दी, मगर यह फिल्म बुरी तरह पिट गई। किस्मत ने उनसे फिर किनारा कर लिया।
1: बदला तो ऐसे बदला है, कुछ रंगे गुल

दिखने लगे। ये फिल्में थी झनक झनक पायल बाजे, चोरी चोरी और मिस बॉम्बे। गरीबी ने अपना रंग कुछ ऐसा बिखेरा कि जुहू बीच पर बना 25 कमरों वाला बंगला बेचना पड़ा। किसी जमाने में हफ्ते के सातों दिन वो अलग अलग मॉडल की कार से जाया करते। वो सातों गाड़ियां बिक गईं। भगवान दादा के सभी सहकारी उन्हें छोड़कर चले गए, सिवाय सी रामचंद्र, ओम प्रकाश और राजेंद्र कृष्ण के। 4 फरवरी 2002, दादर की एक चौल में बने दो कमरों के मकान में ये अलबेला कलाकार भगवान को प्यारा हो गया।

0: अलबेले कलाकार भगवान दादा पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम अभी आपने सुना। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम। श्रोताओं, हम आकाशवाणी नागपुर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 10 बज चुके हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। कल सुबह ठीक 8:51 पर हमारी अगली प्रसारण सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।